0: Let's begin this Tuesday morning with the Congress MP slamming Udayanidhi Stalin's remarks. We have Malikam Tigore there saying that Udayanidhi Stalin's language is absolutely unacceptable. Congress MP is demanding the withdrawal of the remarks made by Udayanidhi Stalin, and the Congress MP is seeking unconditional apology from the former Deputy Chief Minister of the state of Tamil Nadu. Personal jibe has triggered a fresh political row in Tamil Nadu. This is while he was making comments in, jibes which were personal in nature, which hasn't gone down too well, particularly by the Congress party, and they are demanding an apology from Udayanidhi Stalin. There he was making, while speaking on the Kaveri issue, he was talking about, the personal life of the Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay. Now, moving on, after nearly 2 months of consultations, the much-awaited Karnataka cabinet expansion has been overshadowed. And they've been overshadowed basically because of the confusion, that last-minute changes that have come up, and the open dissent. We had Mankal Vaidya's name figured in the first list, only to be dropped in the revised one. Gayatri, the lone woman pick, was named, but never she took the oath, with sources suggesting that she may now be replaced. The fallout has been swift. An MLA has resigned, and protests have erupted over cabinet snubs and senior leader Dinesh Gundu Rao, who has publicly expressed his disappointment. Sources are telling NDTV that even the chief minister and the former chief minister were taken aback by the induction of certain names which appear to have been finalized by the party's Delhi leadership. So the top brass here in Delhi calling those shots.
1: Rajbhavan Hoktaidini list na kalsikottidini. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಹರಿದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ 2004 ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ನನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು.
2: ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಐ ಬೀನ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ಯು ನೋ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡ್ರಾಪ್. Was a bad performer as a minister? Do I have any corruption charges? Was I not working well for the party? I've always been loyal to the party, and whatever party responsibility they've given, I've always tried to do my best. And as district in charge minister of Mangalore, I've done a good job. As health minister, I think I've done a good job.
3: Yes, so much say, mera to ho jayega kyunki bahut log aur dusre log mantri banne ke liye kaabil the, magar nahi mila hai. वो नाराज होते हैं तो पार्टी हाई कमांड देख लेंगे, उसको समाधान करेंगे और कुछ उनको देने के प्रयास करेंगे. कुछ ताना लगता है.
0: Switching tracks now, former poll strategist and Jan Swaraj Party Chief Prashant Kishore, he has become the newest MLA of the Bihar Assembly after breaking the BJP's 30-year winning streak in Bankipur by poll elections, a seat that's been vacated by the BJP President Nitin Naveen. Prashant Kishore defeated his nearest rival, BJP's Neeraj Kumar, by a margin of over 19,000 votes, 19,324 to be precise. Conceding the mandate, the BJP President and the former five-time MLA from Bankipur, Nitin Naveen, said that his party will earnestly introspect the results. Meanwhile, it is Prashant Kishore's win that has sent ripples across the Bihar electorate, with Jan Swaraj emerging as a serious alternative to RJD with a new voter base and marking the first defeat for the BJP since Samrat Chaudhary became the chief minister.
4: बिल्कुल बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है. पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो NDA को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो. तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी के जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए।
5: आरजेडी की सांसद मीसा भारती हमारे साथ हैं। मैडम, बांकीपुर का संदेश क्या है आपके लिए, जो रुझान है और जो अब नतीजे में बदलने वाले?
6: देखिए, मतलब मेरा तो कोई बांकीपुर जो बांकीपुर के जनता का संदेश मुझे यही लग रहा है, जिस हिसाब से जो वोटिंग उन लोगों ने जितना भी किया है, परसेंटेज बहुत कम रहा इस बार, और किसान किशोर को शायद लीड अभी चल रहा है, जैसा टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोग को मिल रहा है, लगता है जनता लोकतंत्र है और जनता मालिक है, जनता कब किसको जिताएगी, कब किसको हराएगी, ये कहना।
5: कारण कैसे देखते हैं, 3-4 दशकों से बीजेपी का गढ़, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और इसके बावजूद बीजेपी की हार, इसके पीछे क्या कारण आपको सीधा नजर आता है?
6: देखिए, कारण बहुत है, लेकिन बहुत जल्दी होगा अभी कारणों को जनता के सामने लाना या टीवी चैनल पे इसको बोलना, क्योंकि अभी काउंटिंग चल ही रहा है, तो एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाए।
7: भाजपा बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी खबर है, और केवल बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। सवाल यह है कि जिस तरीके से भाजपा पिछले दिनों में लगातार जन सरोकार के सवालों पर लाठी और गोली की भाषा में बात कर रही थी, चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर का सवाल हो, या नीट छात्रों पर गोली चलाने का सवाल हो, या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का सवाल हो, इन सवालों पर भाजपा लगातार कार्रवाई की जगह विपक्ष को धमकाने में लगी हुई थी, और आम लोगों के भीतर यह धारणा घर कर गई कि बीजेपी अब देश में तानाशाही थोपना चाहती है। यह जो नाराजगी थी, यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है भाजपा की हार का।
8: बांकीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस एरिया बिहार से अलग इलाका से भिन्न है, विभिन्न है, क्योंकि उधर बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और हॉस्टल्स है, और बीजेपी का मतलब ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन वो स्टूडेंट आंदोलन के बाद ये क्या हो गया ना, इसका मास बेस में बहुत ज़्यादा रोशन हो गया, ये आई ओपनर है बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा जीत है।
9: मेरा शुरू से जब कभी आप लोगों ने सवाल किया, मैं बोलता था कि पटना में इस बार बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हुए थे, और वो चेहरा के रूप में पीके आ गए, तो पीके के लोगों ने मतदान कर दिया।
10: अब आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी, अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया, और जिन जी जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियाँ हैं, जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही शर्मनाक तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय कृत्य किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर अशुभ गैस छोड़े गए, पूरे देश से बीजेपी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने जा रही है, और भाजपा पूरे देश के अंदर अब हर चुनाव हारेगी, हर जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी।
0: Now, for the seventh day in a row, Ranchi has been witnessing an unprecedented agitation by students. Hundreds of job aspirants are on the streets alleging serious irregularities in the JPSC and the JSSC and other recruitment examinations. It's the chief minister of the state, the Hemant Soren government, that has ordered a CID probe into the matter, but the protesters are pressing for a CBI investigation. The cancellation of the 14th JPSC preliminary examination and a fresh test with no breakthrough in sight. Student leader Devendra Nath has now begun an indefinite hunger strike. Support, however, has largely remained symbolic, with the BJP has accused the Congress of selective activism, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students in Jantar Mantar in the national capital are missing from the streets of Ranchi, raising questions against Rahul Gandhi as to what happened to his activism at this point in time.
11: हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की, उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बातों को आप सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने
12: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
11: जी सर, बहुत
13: धन्यवाद
11: सर।
13: आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंड से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं।

0: इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
1: बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है, अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई। तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारी यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपने डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अभी ही चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है। तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
2: लोग आमंत्रित भी करते हैं ऐसे पार्टीज़ को कि आप नैतिक समर्थन दीजिए। कल सीजेपी के लीडर से बात भी हुई थी जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जी से मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई। तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखे हैं और आप लोगों की मांग जायज़ है तो आप लोग डटे रहिए, हमारी जो भी हो सकती है आप लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं।
3: छात्र और विद्यार्थी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इनका ये आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो, हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से जेपीएससी के सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे।
4: अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका का वो वीडियो कॉल अब सबने देखा है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हैं छात्रों के साथ, तो अब आप संतुष्ट हैं? आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे, किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
5: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है और कोई भी सपोर्ट करे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपना हक और अधिकार के लिए। तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है, जैसे जेपीएससी पीटी, एफआरओ, एसीएफ, बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जेएससी, सीजीएल, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है, इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते, मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही यहाँ का है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले। तो मेन एजेंडा और जहां तक कोई हावी होना चाहता है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं, लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे।
4: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है जेएमएम के साथ, और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक, कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है?
6: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता। अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का त्रिपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं, पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूँ कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इससे कोई सरकार के कानों तक कोई जूं नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
5: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको सीबीआई तत्काल जांच दिया जाए कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे।
7: And with that, let's slip into a very short break. Back with what's happening.

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज TOK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
2: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
4: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो to the thick of political action.
5: Now watching NDTV 24/7, the hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
4: When stories have impact,
6: Padmasar Joshi, managing editor and prime-time anchor.
4: The news has influence. The buck stops here with Padma

0: Let's begin this Tuesday morning with the Congress MP slamming Udayanidhi Stalin's remarks. We have Malikam Tigore there saying that Udayanidhi Stalin's language is absolutely unacceptable. Congress MP is demanding the withdrawal of the remarks made by Udayanidhi Stalin, and the Congress MP is seeking unconditional apology from the former Deputy Chief Minister of the state of Tamil Nadu. Personal jive has triggered a fresh political row in Tamil Nadu. This is while he was making comments in, jives which were personal in nature, which hasn't gone down too well, particularly by the Congress party, and they are demanding an apology from Udayanidhi Stalin. There he was making, while speaking of the Kaveri issue, he was talking about, the personal life of the Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay. Now, moving on, after nearly 2 months of consultations, the much-awaited Karnataka cabinet expansion has been overshadowed. And they've been overshadowed basically because of the confusion, that last-minute changes that have come up, and the open dissent. We had Mankal Vaidya's name figured in the first list, only to be dropped in the revised one. Gayatri, the lone woman pick, was named, but never she took the oath, with sources suggesting that she may now be replaced. The fallout has been swift. An MLA has resigned and protests have erupted over cabinet snubs and senior leader Dinesh Gundu Rao, who has publicly expressed his disappointment. Sources are telling NDTV that even the chief minister and the former chief minister were taken aback by the induction of certain names which appear to have been finalized by the party's Delhi leadership. So the top brass here in Delhi calling those shots.
1: Rajbhavan hogta idini list na kalskotidini ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಹರಿದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ 2004 ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ನನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು.
2: ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೇವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಐ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮಿನಿ ಐ ಬೀನ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡ್ರಾಪ್. Was a bad performer as a minister? Do I have any corruption charges? Was I not working well for the party? I've always been loyal to the party, and whatever party responsibility they've given, I've always tried to do my best. And as district in charge minister of Mangalore, I've done a good job. As health minister, I think I've done a good job.
3: Yes, so much. वो नाराज होते हैं तो पार्टी हाईकमांड देख लेंगे, उसको समाधान करेंगे और कुछ उनको देने के प्रयास करेंगे. कुछ स्थान अलग.
0: Switching tracks now, former poll strategist and Jan Swaraj Party Chief Prashant Kishore, he has become the newest MLA of the Bihar Assembly after breaking the BJP's 30-year winning streak in Bankipur by poll elections, a seat that's been vacated by the BJP President Nitin Naveen. Prashant Kishore defeated his nearest rival, BJP's Neeraj Kumar, by a margin of over 19,000 votes, 19,324 to be precise. Conceding the mandate, the BJP President and the former five-time MLA from Bankipur, Nitin Naveen, said that his party will earnestly introspect the results. Meanwhile, it is Prashant Kishore's win that has sent ripples across the Bihar electorate, with Jan Swaraj emerging as a serious alternative to RJD with a new voter base and marking the first defeat for the BJP since Samrat Chaudhary became the chief minister.
4: बिल्कुल बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है. पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो NDA को भाजपा को बहुमत मिला है तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो. तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए।
5: आरजेडी की सांसद मीसा भारती हमारे साथ हैं। मैडम, बांकीपुर का संदेश क्या है आपके लिए, जो रुझान है और जो अब नतीजे में बदलने वाले?
6: देखिए, मतलब मेरा तो कोई बांकीपुर, बांकीपुर के जनता का संदेश मुझे यही लग रहा है, जिस हिसाब से जो वोटिंग उन लोगों ने जितना भी किया है, परसेंटेज बहुत कम रहा इस बार, और किसान किशोर को शायद लीड अभी चल रहा है, जैसा टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोग को मिल रहा है। लगता है जनता लोकतंत्र है और जनता मालिक है, जनता कब किसको जिताएगी, कब किसको हराएगी, ये कहना
5: कारण कैसे देखते हैं? तीन चार दशकों से बीजेपी का गढ़, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और इसके बावजूद बीजेपी की हार, इसके पीछे क्या कारण आपको सीधा नजर आता है?
6: देखिए, कारण बहुत है, लेकिन बहुत जल्दी होगा अभी कारणों को जनता के सामने लाना या टीवी चैनल पे इसको बोलना, क्योंकि अभी काउंटिंग चल ही रहा है, तो एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाए।
7: भाजपा बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी खबर है, और केवल बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। सवाल यह है कि जिस तरीके से भाजपा पिछले दिनों में लगातार जन सरोकार के सवालों पर लाठी और गोली की भाषा में बात कर रही थी, चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर का सवाल हो, या नीट छात्रों पर गोली चलाने का सवाल हो, या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का सवाल हो, इन सवालों पर भाजपा लगातार कार्रवाई की जगह विपक्ष को धमकाने में लगी हुई थी, और आम लोगों के भीतर यह धारणा घर कर गई कि बीजेपी अब देश में तानाशाही थोपना चाहती है। यह जो नाराजगी थी, यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है भाजपा की हार का।
8: बांकीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस एरिया बिहार से अलग इलाका से भिन्न है, विभिन्न है, क्योंकि उधर बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और हॉस्टल्स है, और बीजेपी का मतलब ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन वो स्टूडेंट आंदोलन के बाद ये क्या हो गया ना, इसका मास बेस में बहुत ज़्यादा रोशन हो गया। ये आई ओपनर है बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा जीत है।
9: मेरा शुरू से जब कभी आप लोगों ने सवाल किया, मैं बोलता था कि पटना में इस बार बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हुए थे और वो चेहरा के रूप में पीके आ गए, तो पीके के लोगों ने मतदान कर दिया।
10: अब आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी, अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया, और जिन जी जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियाँ हैं, जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही शर्मनाक तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय कृत्य किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर अशुभ गैस छोड़े गए, पूरे देश से बीजेपी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने जा रही है, और भाजपा पूरे देश के अंदर अब हर चुनाव हारेगी, हर जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी।
0: Now, for the seventh day in a row, Ranchi has been witnessing an unprecedented agitation by students. Hundreds of job aspirants are on the streets alleging serious irregularities in the JPSC and the JSSC and other recruitment examinations. It's the chief minister of the state, the Hemant Soren government, that has ordered a CID probe into the matter, but the protesters are pressing for a CBI investigation. The cancellation of the 14th JPSC preliminary examination and a fresh test with no breakthrough in sight. Student leader Devendra Nath has now begun an indefinite hunger strike. Support, however, has largely remained symbolic, with the BJP has accused the Congress of selective activism, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students in Jantar Mantar in the national capital are missing from the streets of Ranchi, raising questions against Rahul Gandhi as to what happened to his activism at this point in time.
11: हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की, उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड्स हैं मेरे भैया ने
12: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
11: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
13: आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंड से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
14: बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई, तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपने डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना, और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अभी ही चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है, तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
15: लोग आमंत्रित भी करते हैं ऐसे पार्टीज़ को कि आप नैतिक समर्थन दीजिए, कल सीजेपी के लीडर से बात भी हुई थी जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जी से मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई, तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखें और आप लोगों की मांग जायज़ है तो आप लोग डटे रहिए, हमारी जो भी हो सकती है आप लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं।
16: छात्र और विद्यार्थी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और इनका यह आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है, छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो, हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है, और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से जेपीएससी के सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे।
0: अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका का वो वीडियो कॉल अब सबने देखा है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हैं छात्रों के साथ, तो अब आप संतुष्ट हैं, आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे, किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
17: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है, और कोई भी सपोर्ट करे चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है, 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपने अधिकार के लिए, तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है जैसे जेपीएससी पीटी एफआरओ एसीएफ बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जेएससी सीजीएल ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही आपका है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले, तो मेन एजेंडा और जहां तक कोई हावी होना चाहता है ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं, लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे।
0: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है जेएमएम के साथ, और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक, कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है।
18: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता, अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का तिरपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूँ कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इससे कोई कोई सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
19: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको CBI तत्काल जांच दिया जाए कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे।
0: And with that, we're slipping into a very short break. Back with what's happening with Donald Trump putting out an ultimatum to Iran. That and a lot more. Stay with us.
20: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
21: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal.
20: The show that sets the prime time agenda.
21: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
20: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
22: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
23: So many attacks.
22: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
23: It's incredible.
22: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
23: Welcome to Left, Right and Center.
22: Hard facts.
23: War-struck country.
22: Hard questions.
23: In the Ukraine.
22: 30 years of trust.
24: In the Kargil area.
23: North Ukraine.
25: In France. In Italy.
23: At Srinagar.
25: I am Istikrat.
23: Vishnu Shom for NDTV.
22: Vishnu Shom. Only on NDTV. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
26: This location from Tel Aviv.
22: Brought clarity right now, right to complex right issues of national security and international affairs.
27: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
28: The Ayatollah Khamenei is gone.
29: There has been a missile attack right behind.
0: Welcome back. Let's get you the latest. And it is the last chance for Iran to strike a deal, is what Donald Trump is saying. Iran talks are underway at the request of Tehran. Iran must accept, the actions that are being, the demands that are being made. And Trump is saying that the reopening of Hormuz is the first phase, and that is non-negotiable. And Trump has also said that a nuclear deal is to follow after the opening of the strait. He's gone on to say that Saudi Arabia, UAE and Qatar are pushing for talks between the two nations and warning of escalation if the talks fail. So deal or total surrender, these are the two options that Trump has put out in front of Iran's leadership. As far as that ultimatum that's come in a lengthy rant on social media platform claiming that the country had begged for talks before publicly denying that any discussions were even taking place. Listen in.
30: Right now, it's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny it. But they're not denying it now. They just put out a statement, not denying it. But for some reason, they, when they're talking, they don't like saying that they're talking. So I say, wait, we're in talks. Big deal. We're in talks. And they'll sometimes deny it, even though they spend hours and hours together talking. No. The talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack, I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big.
0: Pradeep, my colleague with us. Pradeep, deal or total surrender is an ultimatum by Trump, who keeps walking back, keeps flip-flopping or blinking.
31: Yeah, Divya, a very strong warning coming from the U.S. President Donald Trump. He said in the past also he gave Iran a chance for the negotiation, but every time the things were back to square one. So this was the last chance for the Iran that they should come out with a good document. When he says a good document, he means one, the Strait of Hormuz to be opened, and they want that some positive development so far as denuclearization is concerned. That's what actually he is hinting at. He said that's why he decided to halt his big operation. The operation would have been bigger than what actually had happened during the second Second World War. He said that if this deal fails and they don't succeed in negotiation, then he's going to hit them hard. That's what actually the Donald Trump has said. He said it was basically because of the insistence of three Gulf countries, and also the Iran had been insisting for the negotiation, that he decided to halt his operation. Now it is a chance given to them. Let's see how the things will proceed from here. But this is the last chance they had given to Iran.
0: Right, Pradeep, thank you so much for getting us those details. So Iran threatening U.S. warships in the Strait of Hormuz, that is a reaction that's coming about as far as Iran is concerned. Breaking news coming in with Iran there. They are saying that U.S. warships will be targeted, and Iran has rejected any new shipping corridor as far as the Strait is concerned, and promising to block and force, as far as the route changes are concerned. That is Iran there linking talks to change as far as U.S. behavior is concerned and setting conditions for further engagement. We have Pradeep back with us. Pradeep, take us through, you know, how Iran is reacting. Iran on their side has firstly denied that the talks are even on.
31: See, that Iran has been doing from day one. Whenever the United States President Donald Trump has said that there has been a negotiation with them, every time we have seen that their denial has come from the Iranian side. And every time the conditions remain the same. And this time also Iran is saying that U.S. will have to change its behavior. And when they say the U.S. will have to change its behavior, the first condition is that they will have to lift the naval blockade that has been there, because of which the Iran is suffering economically. And second, they want there should be no hostilities or aggression from the U.S. side. They are saying that some change they have seen, but they haven't seen total change, so they are looking for change in behavior. And the third thing, what is important, is that they do not want the southern corridor to be opened in Strait of Hormuz, because they feel that if that southern corridor is opened, that way they will be reducing, that will be reducing their leverage in the Strait of Hormuz. So they are against the opening of that. They said even if the naval ships are used by the U.S. for doing so, or the warships are used, even then they will not allow the warships will be targeted by Iran. That's what they have been insisting. Let's see how things are really going to unfold. That has irked even United States President Donald Trump. He said, when we are talking, we are talking. But the problem with Iran is that whenever they are talking, they come out with a statement and they keep on denying. I fail to understand why they do so.
0: Let's just listen into what the Iranian side has to say.
1: رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم
2: در تنگه هرمز
1: کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم. مسئله مهمی که الان برای رهبر معظم انقلاب

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
2: Really?
1: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
3: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
4: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: सिनेमा घर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
3: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
6: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन
7: वाचिंग एनी टीवी 24/7 द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन This will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
6: When stories have impact.
8: But the Jhansi,

0: Let's begin with our top story, and that's former poll strategist and Jan Swaraj Party chief Prashant Kishore, who has become the newest MLA of the Bihar Assembly after breaking BJP's 30-year winning streak in Bankipur by poll elections, a seat vacated by BJP President Nitin Naveen. Prashant Kishore defeated his nearest rival, that's BJP's Neeraj Kumar, by a margin of over 19,000 votes, 19,324 to be precise. Conceding the mandate, the BJP President and former five-time MLA from Bankipur, Nitin Naveen said that his party will earnestly introspect the results. Meanwhile, it was Prashant Kishore's win that has sent ripples across the Bihar electorate, and we have the Jan Swaraj emerging as a serious alternative when it comes to Bihar against the RJD with a new voter base and marking the first defeat for the BJP since Samrat Chaudhary became the chief minister.
1: बिल्कुल बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है. पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को भाजपा को बहुमत मिला है तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो. तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी के जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए.
2: आरजेडी की सांसद मीसा भारती हमारे साथ हैं. मैडम, बांकीपुर का संदेश क्या है आपके लिए, जो रुझान है और जो अब नतीजे में बदलने वाले?
3: देखिए, मतलब मेरा तो कोई बांकीपुर जो बांकीपुर के जनता का संदेश मुझे यही लग रहा है, जिस हिसाब से जो वोटिंग उन लोगों ने जितना भी किया है, परसेंटेज बहुत कम रहा इस बार, और प्रशांत किशोर को शायद लीड अभी चल रहा है जैसा टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोग को मिल रहा है. मुझे लगता है जनता लोकतंत्र है और जनता मालिक है, जनता कब किसको जिताएगी, कब किसको हराएगी, ये कहना.
2: कारण कैसे देखते हैं, 3-4 दशकों से बीजेपी का गढ़, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और इसके बावजूद बीजेपी की हार, इसके पीछे क्या कारण आपको सीधा नजर आता है?
3: देखिए, कारण बहुत है, लेकिन बहुत जल्दी होगा अभी कारणों को जनता के सामने लाना या टीवी चैनल्स पे इसको बोलना, क्योंकि अभी काउंटिंग चल ही रहा है, तो एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाए.
4: भाजपा बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी खबर है, और केवल बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है. सवाल यह है कि जिस तरीके से भाजपा पिछले दिनों में लगातार जन सरोकार के सवालों पर लाठी और गोली की भाषा में बात कर रही थी, चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर का सवाल हो, या नीट छात्रों पर गोली चलाने का सवाल हो, या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का सवाल हो, इन सवालों पर भाजपा लगातार कार्रवाई की जगह विपक्ष को धमकाने में लगी हुई थी, और आम लोगों के भीतर यह धारणा घर कर गई कि बीजेपी अब देश में तानाशाही थोपना चाहती है. यह जो नाराजगी थी, यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है भाजपा की हार का.
5: बांकीपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस एरिया बिहार से अलग इलाका से भिन्न है, विभिन्न है, क्योंकि उधर बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और हॉस्टल्स है, और बीजेपी का मतलब ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन वो स्टूडेंट आंदोलन के बाद ये क्या हो गया ना, इसका मास बेस में बहुत ज़्यादा रोशन हो गया. ये आई ओपनर है बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा जीत है.
6: मेरा शुरू से जब कभी आप लोगों ने सवाल किया, मैं बोलता था कि पटना में इस बार बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हुए थे और वो चेहरा के रूप में पीके आ गए, तो पीके के लोगों ने मतदान कर दिया.
7: अब आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी, अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे हैं. अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया, और जिन जी जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियां हैं, जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही सर्वनाश तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीकृत किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, पूरे देश से बीजेपी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है. जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए, समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने जा रही है. भाजपा पूरे देश के अंदर अब हर चुनाव हारेगी, हर जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी.
0: Prabhakar, my colleague joining us to get us more details. Prabhakar, with this new opposition force emerging in the state of Bihar, would you say it's more damaging for the RJD or is it more damaging for the BJP?
8: I see it damaging for both the camps rather. Damaging for BJP for very obvious reasons that they have lost the seat of the national president Nitin Naveen, and also Samrat Chaudhary. He has just completed 100 days as a chief minister in Bihar, and this was the first election which was actually being fought under his leadership. So it has been a big political setback for both Samrat Chaudhary and Nitin Naveen. But more importantly, a big challenge for Tejaswi Yadav, because he was the leader of opposition there in Bihar, and he is the guy who was supposed to be raising the issue concerning people, raise issues to corner government on various topics. Now, Prashant Kishore would be there in the Bihar State Assembly, and when Prashant Kishore enters, he is known as a man who talks with data, who talks with logic. So very soon you will be seeing actually Prashant Kishore taking that stage which Tejaswi Yadav has been occupying, though technically he will still remain the leader of opposition because of the numbers of RJD. But Prashant Kishore is the man who would actually be in the role of the leader of opposition by speaking out in the state assembly, by raising various issues which concerns people.
0: Very latest. So we're talking about, moving on with the two bipoll defeats, two very states, but one uncomfortable question when it comes to the BJP. Has the party's court begun to show signs of fatigue? While the BJP has downplayed the losses in Bankipur and Madhya Pradesh's Dathia, the results have triggered an internal review on everything from candidate selection to organizational strength. Here's a report on why these bipolls are being seen as an early warning sign rather than just isolated setbacks.

0: For the BJP, this is more than just a pullback. It is a warning shot. The party has now lost two seats in states where it is in power, even as it comfortably retained Gujarat's Manjalpur. The usual advantage being in power did not work in Bihar's Bagipur or MP Tatia. In Bagipur, the BJP's vote count dropped by roughly one-third. The party had won the seat by 40,000 votes in the last election. This time, Prashant Kishore turned the BJP's traditional stronghold into his electoral launch pad.
1: Bagipur ka jo aaj mandate aaya hai, ye sirf vidhayak nahi chuna gaya hai. Bagipur ki janta ne bhajpa ke kendriya netritva ko message diya hai ki aap samrat chaudhary ki jagah kisi behtar vyakti ko bihar mein mukhyamantri banaiye, bihar ki bhi chinta kijiye.
0: The BJP's own preliminary assessment points to a drift in its core vote. Party leaders believe the RJD may have transferred a section of its support to Prashant Kishore. The RJD's Rekha Gupta had polled more than 46,000 votes in the previous election. This time, she failed to cross even 15,000. In Bagipur, the BJP also changed its candidate. Party leaders admit this may have sent a message that the party was taking its voters for granted. In Datia too, candidate selection became a problem. The seat had been associated with three-time winner Narottam Mishra. Denied a ticket, Mishra publicly expressed his displeasure and his supporters protested.
2: 16 tarikh se swayam yahi pe dera jamayenge sare karyakartaon ke saath main mere Datia ke mal ko ek ek darwaje par apna sees labaunga ek ek gaon ke andar jaunga.
0: He eventually campaigned for the BJP, but the damage may already have been done. The BJP is reluctant to directly link the Bagipur result to student protests. But the party leaders acknowledge that issues including the NEET paper leak agitation, UGC guidelines and police action have upset sections of its core support base. However, the biggest lesson may be organizational. The BJP has already said it will conduct a booth-wise review of the Bagipur result. The BJP will have to examine who stayed away, who shifted, why did the core vote weaken? And finally, did local leadership fail to energize voters? Two bipoles do not amount to a national trend. But for the BJP, they are an opportunity to course correct. Bureau Report, NDTV.
3: In other news, the Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology sharply questioned Meta over the brief removal of Prime Minister Modi's Facebook video, with committee chairman Nishikant Dubey telling the company that an apology alone was insufficient and calling for greater accountability. During a nearly three-hour meeting attended by representatives of Meta, Google, YouTube, as well as Platform X and Snapchat, MPs also raised wider concerns over content moderation, algorithmic, as well as transparency and foreign influence on digital platforms and compliance with Indian laws. Members reportedly sought a personal apology from Mark Zuckerberg, the CEO of Meta, discussing the company's content control as far as the mechanisms are concerned, and warning that they needed safe harbor protections that could come under scrutiny if such lapses were to reoccur. Now, Meta expressed regret as far as that incident is concerned, describing the removal as an error on their part. Listen in to what Nishikant Dubey had to say.
4: Meta India ne Pradhan Mantri ji ke jo content ko hataya. Ye Meta India pahli baar aisa kaam nahi kar. Unka jo mindset hai, wo desh ko destabilize karne ka hai. Aur jab Bharat ke Pradhan Mantri ka jo hai video utara ja sakta hai. और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा। तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने दो चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए। और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
3: Switching tracks to Ranchi now, that in the state of Jharkhand, it's Ranchi that has been witnessing an unprecedented agitation when it comes to students. Hundreds of job aspirants have taken to the streets alleging serious irregularities in JPSC and JSSC and other recruitment examinations. It's the chief minister and the government of Hemant Soren that has ordered now a CID probe, but the protests are basically demanding a CBI investigation into the matter. As far as the cancellation of the 14th exam is concerned of JPSC and a fresh test with no breakthrough in sight, and we have student leader Devendra Nath there who has begun an indefinite hunger strike. And now, however, there is a largely, when we talk about the support, that somehow remains only symbolic. The BJP has accused the Congress of being selective as far as activism is concerned, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students here in Delhi, in Jantar Mantar, seem to be missing from the streets of Ranchi. Why is Rahul Gandhi quiet on the matter? Why isn't he speaking up, is the question.
5: हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप, सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने
6: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
5: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद
7: सर। आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंड से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
8: जी बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई, तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपने डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना, और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अभी ही चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है, तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
9: लोग आमंत्रित भी करते हैं ऐसे पार्टीज को कि आप नैतिक समर्थन दीजिए, कल सीजेपी के लीडर से बात भी हुई थी जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जी से मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई, तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखें, और आप लोगों की मांग जायज़ है तो आप लोग डटे रहिए, हमारी जो भी हो सकती है आप लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं।
10: छात्र और विद्यार्थी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और इनका ये आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो, हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है, और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से जेपीएससी के सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे।
11: पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीजों को दिखाइए। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यूपीएससी के जो मेंबर है वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं।
12: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। यही डिमांड है, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच। क्यों? बिना सीबीआई जांच के हम मानेंगे नहीं।
13: द रिसेंट डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन झारखंड, द प्रोटेस्ट बाय द एस्पिरेंट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शोज द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वॉन्ट्स टू टेक पोलिटिकल पॉइंट्स by supporting the CJP protest in Delhi and is maintaining a conspicuous silence over the protest by the aspirants in the Jharkhand Public Service Commission irregularities affected students.
3: अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका का वो वीडियो कॉल आप सबने देखा है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हैं छात्रों के साथ। तो अब आप संतुष्ट हैं? आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे? किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
14: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है और कोई भी सपोर्ट करे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपना हक और अधिकार के लिए। तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है, जैसे जेपीएससी पीटी, एफआरओ, एसीएफ, बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जेएससी, सीजीएल, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है, इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते, मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही यहाँ का है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले। तो मेन एजेंडा, और जहां तक कोई हावी होना चाहता है ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं, लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे।
3: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है जेएमएम के साथ और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक? कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है।
15: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता। अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का त्रिपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं, पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूँ कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इससे कोई सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
14: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको सीबीआई तत्काल जांच दिया जाए कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे।
3: Let's just switch tracks to Karnataka now, and it's Congress MLA Gopal Krishna who's expressing anger over the expansion as far as the cabinet in Karnataka goes. Gopal Krishna says it's unfortunate that senior leaders are being overlooked while younger leaders are being given importance and senior leaders are on the other side being humiliated. This is the reality we are witnessing. We are hurt. We have not taken any decision yet. First, we will be seeking the opinion of people. We cannot take any decision without considering their views. The High Command itself has brought us to this level. Do remember that most of the calls have been taken by the High Command here in the National Capital. Then we have Congress MLA TB Jay Chandra saying that this cabinet expansion is being questioned, especially by the voters of the state and the constituencies. People from our community and our region are coming forward and pressing to resign. I'm one of the senior most leaders in Karnataka. It does not feel like a Congress government. Let's listen in.
16: We have been paying now we are expressing our feelings. Bus one to one we are sitting, we are discussing all together also. In remote corners, wherever the people, they are there, we have to go before them also, we have to take the opinion from them also. From whom we got the votes and also we got elected as MLS in this, we are responsible to take the opinion of those people also. The High Command itself has brought us to this level, no. To whom to go again, when there is no High Command? They have not taken.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
3: So many attacks.
2: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
2: Hard facts.
3: War-struck country.
2: Hard questions.
3: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine. In France. In Italy.
5: At Srinagar.
3: I am Iskandar.
6: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom. Only on NDTV.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स
8: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव
2: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी and international affairs.
9: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
10: The Ayatollah Khamenei is gone.
11: There has been a missile attack right behind you.
12: And we need to rush into a shelter.
13: Heading there.
14: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
2: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
15: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली।

0: Welcome back. Now, India's Commonwealth Games campaign in Scotland ended with a rich haul of medals. And today, the champions, of course, we had the champions come back home yesterday to a rousing welcome from boxing to paraathletics and judo. The athletes who flew the tricolour high are now looking ahead to even bigger challenges. NDTV's Vimal Mohan caught up exclusively with the medal winners as they arrived in India. Here's what they had to say about their performances and the emotions of standing on the podium.
1: सेलिब्रेशन
2: तो ये था सर कि पूरी टीम हमारे साथ है और वहाँ पर भी काफी इंडियंस थे, उन लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया।
1: क्या खिलाया?
2: खिलाया इंडियन खाना खिलाया, बस मिठाई की कमी रह रही है अभी।
1: और आपका रील हमने देखा, बहुत अच्छा आपने वहाँ पे जीतने के बाद आपने बनाया।
2: जी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल लेके जीते हैं, तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और अभी ग्रैंड वेलकम, अभी हमारा बाहर होना वेट कर रहे हैं।
1: जस्टिन फ्लैग बियरर बनना कितना बड़ा अचीवमेंट?
2: काफी मतलब मेरे को प्राउड फील हुआ सर, की जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन था उसने मेरे को ये जिम्मेदारी दी।
1: आपके डैड से बात हो रही थी, उनको पता नहीं था शाम तक।
2: अच्छा अच्छा, जी जी सर, काफी अच्छा था सर।
1: कैसा रहा आपके लिए ओवरऑल सफर? कभी सोचा था कि इंडियन टीम 10 में 10 फाइनल पहुंचेगी?
3: बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पूरी इंडियन बॉक्सिंग टीम ने, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए, और हम आगे भी इसको ऐसे ही मेंटेन करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: प्रिया, आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से हम 12वें नंबर से 4वें नंबर पे पहुंचे हैं, तो कैंप में आप लोगों का अलग रुतबा था?
4: हाँ जी बिल्कुल, कोचेज ने बहुत सपोर्ट किया, कैंप में बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती थी, जिसकी वजह से आज भारत चौथे स्थान पर आया।
1: और आपका तो अलग जलवा बना?
5: बस बहुत अच्छा लग रहा है और आगे अभी तो एशियन गेम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं।
1: सचिन, आपको सब आपके मेडल के बारे में सबसे ज्यादा श्योर बोला जा रहा था, हालांकि किसी को उम्मीद नहीं होगी, हालांकि मैं पूछूंगा सर से, कोई नहीं बोल सकता था कि 10 में 7 मेडल मिलेंगे, लेकिन आपके गोल्ड के लोग सबसे ज्यादा श्योर थे?
6: श्योर तो थे ही, क्योंकि हम सभी ने स्टार्टिंग से ही काफी अच्छी ट्रेनिंग की हुई थी, काफी सपोर्ट मिल रहा था सारी हर जगह से।
1: एक नरेंद्र से पूछता फिर यार, मुझे कभी नहीं लगा आप सुपर हैवी वेट में हवा सिंह होते थे, फिर अब आपका कितनी बड़ी बात है, उससे लोग अब मेडल के साथ
7: तैयारी करने गए थे और पहले से ये कर गए थे, लास्ट टाइम से बेस्ट रन जड़ी है और BFI ने और साई ने जो साथ मिलकर काम किया था, पहले बेलफास्ट में कैंप लगाया था, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला था और ट्रेनिंग के बाद फिर हमने जो वहां करके दिखाया, आपने सबने देख लिया, अभी नेक्स्ट टारगेट एशियन गेम है।
1: अजय सर, मैंने आपको बहुत साल से फॉलो किया, लेकिन मैंने आपको इतना खुश, शायद रिजल्ट और भी बड़े हैं, लेकिन ये मतलब 96 साल में दुनिया की कोई टीम नहीं कर सकी।
8: देखिए, ऐतिहासिक बात है कि किसी भी देश ने 96 साल की हिस्ट्री में 7 गोल्ड बॉक्सिंग में किसी भी देश को नहीं मिला,
1: और कोई 10 फाइनल में नहीं पहुंचा,
8: और कोई 10 फाइनल में नहीं पहुंचा।
1: और मुझे आपने एक बहुत अच्छी बात मुझे बोली कि एक दिन में 7 बार राष्ट्रीय गान बजा।
8: हाँ, बहुत देखिए कैसा माहौल बना, बच्चों के लिए भी, क्राउड के लिए भी, और किसी आप विदेश में जाएं और वहां पर आपका बार बार झंडा लहराए और बार बार राष्ट्रगान बजे, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और जितने भी वहां पर एक्सपैट्रिएट इंडियन थे, जो हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने भी कहा कि जी ऐसा दिन हमने हमारी जिंदगी में कभी, ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है आज।
1: ये अच्छा दिन है और कंटिन्यू रहे, एशियन गेम्स में भी, LA में भी रहे, और आप ऐसे ही खुश रहिए, इन लोगों को और बहुत खुश रखिए।
8: थैंक यू सो मच।
1: हमारे साथ लवलीना बोरगोहेन है और ओलंपिक चैंपियन, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, और पहला कॉमनवेल्थ मेडल आया, और प्रमोद सर है, जनरल सेक्रेटरी सर। सबसे पहले लवलीना, आपके लिए पहला मेडल है, पहले ये शुरू हो गया था, कितना बड़ा संतोष है आपको?
9: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं। हाँ। क्योंकि पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल है मेरा, लास्ट 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा मेडल नहीं था, तो ये मेडल मेरे लिए बहुत ज्यादा बहुत मतलब बड़ी बात है कि मैं इस बार मेडल ले पाई। और हाँ, थोड़ा एक अफसोस है कि मैं गोल्ड नहीं ले पाई, बट मैं सिल्वर में भी बहुत ज्यादा
1: नहीं, आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको 2018 यूथ में भी देखा है गुवाहाटी में, और उसके बाद लगातार आप सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट बॉक्सर हैं, तो ओलंपिक्स एक और आ रहा है आगे, वो माइंड में है?
9: जरूर, 28 का ओलंपिक ही मेन टारगेट है, उससे पहले एशियन गेम्स भी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हर एक कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ओलंपिक तो है ही, वो तो मतलब अल्टीमेट गोल है, बट उससे पहले अभी एशियन गेम्स है, उसके लिए ज्यादा।
1: सर प्रमोद सर, क्या वजह है, ये 2 वजह बताइए जिसकी वजह से ये टर्न अराउंड हुआ, आप बोल तो रहे थे लेकिन मुझे भरोसा
10: नहीं। देखो, एक तो हमारा ट्रायल होना, असेसमेंट से ट्रायल में आना हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है।

0: अगर ट्रायल नहीं होते तो शायद हमारी परफॉर्मेंस नहीं आती। दूसरा मैं लवलीना के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा ओलंपिक में फिर से मेडल रिपीट करेंगे। परफॉर्मेंस जो है इनकी इम्प्रूव होती जा रही है, जिस कंडीशन से आई है बहुत अच्छी कंडीशन,
1: रीच
0: इनका सिल्वर भी गोल्ड के बराबर है।
1: तो ये रोहित तो नहीं,
0: नहीं
1: नहीं क्या सेलिब्रेट किया, क्या सेलिब्रेट किया
2: अभी तक तो ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ है,
1: बस तो मीठा खाया होगा अभी तो
0: नहीं, नहीं।
2: अभी ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हुआ नहीं है, बट हाँ मेडल जीतने के बाद ही सेलिब्रेशन तो होता ही है कि
1: क्या किया, डांस किया, रील बनाया, क्या किया?
2: नहीं नहीं ऐसे सेलिब्रेशन नहीं किया। स्वीट वगैरह हाँ थोड़ा सा तो खाया ही है, थोड़ा वेट कंट्रोल।
1: कौन सी मिठाई पसंद है ज्यादा?
2: मिठाई मुझे ब्राउनीज पसंद है।
1: क्या बात। चलो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग, कीप डूइंग वेल।
2: थैंक यू
1: भाई। हमारे साथ छह पैरा चैंपियन है और सबसे बड़ी बात है इन सब ने पोडियम पर एक साथ जगह बनाई, दो दो के पेयर में इन्होंने जगह बनाई है। आप सुमन और आप शुभम ये सोल्जर्स हैं, इनका माइंस में पाव गया था कुछ में, ये सारी कहानी हम बता रहे हैं, एनडीटीवी को भी बता रहे हैं। ये बताया अभी सेलिब्रेट क्या किया आपने और आगे क्या टारगेट है?
3: अभी आगे का टारगेट है अभी एशियन गेम्स, हाँ। और मेन टारगेट है ओलंपिक,
1: हाँ।
3: अभी जैसे अभी मेडल ऐसे मेडल है ओलंपिक उसमें एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी मेडल देश के लिए मेडल लेके दिखाना है।
1: अच्छा पैरा ने जो बदला, पैरा और बॉक्सिंग ने खासकर, उसकी वजह से हम चौथे नंबर पे आए, तो आप लोगों का जो रुतबा है कैंप में बढ़ा?
4: जी सर बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में इतने सारे मेडल्स एक साथ आए तो वही है कि हम थोड़ा पीछे चल गए थे पहले मेडल टैली में, बट वही है कि जैसे ही हमारे मेडल्स एक साथ इतने सारे आए तो फिर इंडिया सीधा फोर्थ नंबर पे पहुंचा तो बहुत खुशी।
1: तो ये सोमन है और ये शुभम है, ये गोल्ड और सिल्वर एक साथ लाए, और दिलीप है और बासिल, ये इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज एक साथ, गोल्ड और सिल्वर एक साथ है। तो ये आप लोगों के लिए मतलब आपस में कॉम्पिटिशन होता था, राइवलरी होती थी, और आप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे थे।
5: हाँ मैं 400 करता हूँ,
1: हाँ, उधर पहली बार इंटरनेशनल बड़ा था 100 मीटर,
5: हाँ पहली बार मैं 100 मीटर किया तो उधर भागते हुए मुझे अच्छा लगा और मेडल गोल्ड मेडल लाया और मैंने गेम रिकॉर्ड किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आपका कंपटीशन था इनसे? आज सत्या सर आपका कंपटीशन था? आई मीन यू वर कम्पीटिंग विद हिम?
6: या
1: यू वर सर फैंटास्टिक रिजल्ट।
6: See, this is all on the teamwork. Yeah. Paralympic Committee of India, Sports Authority of India, again on the government, your corporate, all together your work. हम लोग साथ काम करने के लिए ये रिजल्ट है।
1: ये सोचे तो नहीं होगा सर?
6: नहीं 100% मैं सोचा था,
1: मैंने आपने बताया था
6: 67 मेडल आएगा।
1: आपको उम्मीद थी इतनी?
7: 100% हमें उम्मीद थी, और मैं तो एक बात कहूँ की शर्मिला ने जो परफॉर्मेंस दी,
1: अरे शर्मिला की तो अलग कहानी में,
7: लाजवाब, आपकी एक अलग स्टोरी है जिंदगी में,
1: कमाल की बात। शिल्पा हाउ प्राउड आर यू फीलिंग?
8: यस आई एम सो हैप्पी नाउ।
1: हैप्पी? डिड यू ईट समथिंग स्वीट और समथिंग लाइक दैट?
8: हां यस
6: सर।
1: सर शर्मिला की तो जानदार कहानी है, मतलब ये मैदान पे आ गई, 5-6 साल पहले आई, एक्स हस्बैंड ने बाहर निकाला, वो सब चीज को छोड़ के मतलब इनके चेहरे की स्माइल कमाल है। आप अपने बारे में जो भी बताओ मतलब कमाल है ये,
8: गोल्ड मेडल लेके बोलते।
1: तो अब तो अगली बार आपकी दोनों बेटी और आप भी रहेंगी,
8: नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में तीन गोल्ड मेडल,
1: तीनों माँ बेटियां। और कुछ क्या सेलिब्रेट किया, क्या करना है अभी, घर जाके क्या बनाना है, क्या बेटियां बनाएंगी या बनाएंगी कुछ खाना?
8: मेरी माँ बनाओगी चूरमा।
1: चूरमा और?
8: चूरमा और खीर।
6: बोलो भारत माता की
9: जय।
6: बोलो भारत माता की
9: जय।
1: जूडो की टीम है और चैंपियन है ये, सबसे पहले एनडीटीवी पर आ रही है। अस्मिता ये जादू जूडो का ने कैसे किया?
8: बहुत अच्छा किया है सर।
1: मिठाई खाया आपने? मिठाई बोला था
8: आप? पेस्ट्री खाई थी वो आप?
1: पेस्ट्री खाई। सर कैसे हुआ ये जादू, मतलब हम लोग तो कभी सोचते
10: हैं, लोगों ने बहुत मेहनत की हुई थी, जादू नहीं हुआ है, इनकी मेहनत का फल है ये।
1: हर्ष आपने तो फाइनल 10-0 से जीता है।
11: हाँ जी वो स्कोर मतलब वजारी स्कोर होता है, वो वजारी स्कोर के साथ मैंने अपने फाइनल पार्ट फिनिश करे थे।
1: कभी अच्छा सच बताइए, आप लोगों ने कोई सोचा था कि गोल्ड आएगा 36 साल में तो पहले में? किसने सोचा था? सोचा था गोल्ड?
8: जी सर मैं तो सोच के आई थी कि मुझे गोल्ड लेना है।
1: तो अब आगे क्या टारगेट है?
8: आगे सर एशियन गेम्स है और बाकी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह,
11: जी, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप टारगेट है नेक्स्ट हमारा।
10: अगला ओलंपिक की भी तैयारी शुरू कर रही है।
9: आपको योगी जी ने फॉलो किया है, ट्वीट किया है,
8: जी
9: भी स्तुति भी आपका आती है ना, कुछ बोलिए, मैसेज दीजिए
8: लोगों को। बहुत बहुत थैंक यू, और योगी जी को भी बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने मुझे जॉब दिया है यूपी पुलिस।
9: ये गेम अब पॉपुलर हो जाएगा इंडिया में?
8: जी सर बिल्कुल होगा।
9: आप लोगों को कभी किसी ने छेड़ा तो नहीं?
8: नहीं नहीं नहीं नहीं
9: सर। चलिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट सर।
12: And with that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more on the other side. Don't go anywhere.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
2: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
3: so many attacks,
2: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
2: Hard facts.
3: War struck country.
2: Hard questions.
3: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine. In France. In Italy.
5: At Srinagar.
3: I am Mr. France.
6: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom. Only on NDTV.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स।
8: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव
2: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स।
9: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
10: The Ayatollah Khamenei is gone.
11: There has been a missile attack right behind you.
12: And we need to rush into a shelter.
13: Heading there.
14: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
2: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
15: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
16: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind

0: saying it's speaking to Oman about the Strait of Hormuz. All right, our big focus currently, a brief takedown of the Prime Minister's Facebook video has now snowballed into a larger debate over how powerful digital platforms should be regulated in India. The Parliamentary Standing Committee has pulled up Meta over the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video, with members saying that an apology alone is not enough and demanding greater accountability. In fact, the committee chairman, Nishikant Dubey, has told the company that an apology alone was insufficient and called for greater accountability. You know, during a nearly three-hour meeting attended by representatives of Meta, Google, YouTube, X and Snapchat, the committee also widened the discussion beyond this one incident, raising questions over how social media companies moderate content, how their algorithms work, whether they're transparent enough, and how they comply with the Indian law. As the BJP argued that such incidents raise serious concerns about the functioning of global tech platforms, members reportedly, they sought a personal apology from Meta CEO Mark Zuckerberg. Meta, though, you must note, has expressed regret over this incident, describing the removal as an error. Here are the crucial reactions you need to listen to this morning.
1: Meta India ne Pradhan Mantri ji ke jo content ko hataya. Ye Meta India pahli baar aisa kaam nahi kar raha. Unka jo mindset वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है. और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, तो ये बड़ी सीरियस बात है. हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए.
0: All right, let's turn our attention to the latest information we're tracking currently. If your WhatsApp account suddenly stopped working last night, you were not alone, because several users, including many in India, reported that their WhatsApp accounts had been placed under review, temporarily basically locking them out of the app for up to 24 hours. Many have claimed that they had received no prior warning and insisted that they had not violated the platform's terms of service. WhatsApp, you must note, has now acknowledged the issue, saying its systems are constantly working to identify abusive activity, and at times genuine users may get caught in that process. So the company says that if mistakes were made, they will be corrected as quickly as possible. But Aishwarya Jain is tracking the latest for us. He joins us live at the moment. Aishwarya, break down for us, what exactly are affected users reporting? Are these accounts being suspended? Are they being disabled or simply placed under review? And has WhatsApp indicated whether this was a technical glitch?
2: The WhatsApp spokesperson clearly stated that we are always working to stay ahead of those trying to abuse our services and then ban accounts to keep other users safe. Sometimes we get this wrong, and if we do, we try to fix it as quickly as possible to get people back to chatting. Certainly, that's the response that is coming in. Several users were affected because of disruption that was highlighted around 8 p.m. Yesterday, when users started facing the issue without any prior warning from the Meta Group's messaging app, and it was the WhatsApp screen that displayed a message that account is on hold, it's on review. And certainly, you know, the activity was blocked, the device also being checked as well. But the WhatsApp categorically stated that this is to identify that those who abuse their services have been banned. There were reports by other users to follow to different accounts, and therefore this decision was taken. After reviewing it, the services are back, and several users also posted on the social media stating that without any explanation, their WhatsApp user accounts had been blocked, to which now clarification came in that it was to avoid any such abuse for the users, and it is to safeguard the interest as well of those who are using the WhatsApp services. They try to fix as soon as they got to know. And certainly, it is just to safeguard the interest of the user, is something that WhatsApp stated.
0: All right, as always, Aishwarya, thanks so much for joining us with the lowdown. All right, let's turn our attention now to a result that goes well beyond one assembly seat. Prashant Kishore has pulled off what many believed was the toughest electoral upset in Bihar, defeating the BJP in Bankipur, a constituency the party had held continuously since the year 1995. It is Prashant Kishore's first election as a candidate, the BJP's first defeat in the constituency in three decades, and the first major electoral setback for the BJP since Samraj Chaudhary took over as Chief Minister. Prashant Kishore defeated his nearest rival, BJP's Neeraj Kumar, by a margin of 19,324 votes in his poll debut. Conceding the mandate, BJP President and former five-time MLA from Bankipur, Nitin Nabin, said that his party will earnestly introspect the results. You see, for the BJP, this is a loss in the seat vacated by its own national president, Nitin Nabin. For Jansuraj, it's the first real proof that a political movement can convert public outreach into votes. And Prashant Kishore's win has sent ripples across the Bihar electorate, with Jansuraj emerging as a serious alternative to RJD with a new voter base. Before we get in, all the details with Prabhakar, listen in to these crucial political reactions.
3: Bankipur ka jo chunav hua hai, वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है. पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को भाजपा को बहुमत मिला है तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो. तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी के जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए.
4: आरजेडी की सांसद मीता भारती हमारे साथ हैं. मैडम, बांकीपुर का संदेश क्या है आपके लिए, जो रुझान है और जो अब नतीजे में बदलने वाले?
5: देखिए, मतलब मेरा तो कोई बांकीपुर, जो बांकीपुर के जनता का संदेश मुझे यही लग रहा है, जिस हिसाब से जो वोटिंग उन लोगों ने जितना भी किया है, परसेंटेज बहुत कम रहा इस बार, और प्रशांत किशोर को शायद लीड अभी चल रहा है, जैसा टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोग को मिल रहा है. लगता है जनता लोकतंत्र है और जनता मालिक है, जनता कब किसको जिताएगी, कब किसको हराएगी, ये कहना.
4: कारण कैसे देखते हैं, तीन चार दशकों से बीजेपी का गढ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और इसके बावजूद बीजेपी की हार, इसके पीछे क्या कारण आपको सीधा नजर आता है?
5: देखिए, कारण बहुत है, लेकिन बहुत जल्दी होगा अभी कारणों को जनता के सामने लाना या टीवी चैनल्स पे इसको बोलना, क्योंकि अभी काउंटिंग चल ही रहा है, तो एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाए.
6: भाजपा बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी खबर है, और केवल बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है. सवाल यह है कि जिस तरीके से भाजपा पिछले दिनों में लगातार जन सरोकार के सवालों पर लाठी और गोली की भाषा में बात कर रही थी, चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर का सवाल हो, या नीट छात्रों पर गोली चलाने का सवाल हो, या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का सवाल हो, इन सवालों पर भाजपा लगातार कार्रवाई की जगह विपक्ष को धमकाने में लगी हुई थी, और आम लोगों के भीतर यह धारणा घर कर गई कि बीजेपी अब देश में तानाशाही थोपना चाहती है. यह जो नाराजगी थी, यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है भाजपा की हार का.
7: मुझे लगता है कि यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी, और गए 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहाँ कोई भी दे दे, बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा, अभी दिखने लगा.
8: बांकीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस एरिया बिहार से अलग इलाका से भिन्न है, विभिन्न है, क्योंकि उधर बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और हॉस्टल्स है, और बीजेपी का मतलब ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन उस स्टूडेंट आंदोलन के बाद ये क्या हो गया ना, इसका मास बेस में बहुत ज़्यादा रोशन हो गया. ये आई ओपनर है बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा जीत है.
9: मेरा शुरू से जब कभी आप लोगों ने सवाल किया, मैं बोलता था कि पटना में इस बार बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हुए थे और चेहरा के रूप में पीके आ गए, तो पीके के लोगों ने मतदान कर दिया.
10: अब आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाया. राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जो जी अपना अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया, और जिन जी जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियां हैं, जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही सर्वनाश तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय कृत्य किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर अशुभ गैस छोड़े गए, पूरे देश से बीजेपी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने जा रही है। भाजपा पूरे देश के अंदर अब हर चुनाव हारेगी, हर जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी।
0: ऑलराइट, टू बाइपोल डिफीट्स, टू वेरी डिफरेंट स्टेट्स, बट वन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन फॉर द बीजेपी। हैज द पार्टीज कोर वोट बिगन टू शो साइंस ऑफ फटीग? While the BJP has downplayed the losses in Bihar's Bankipur and Madhya Pradesh's Datia, the results have triggered an internal review on everything from candidate selection to organizational strength. Here's a report on why these bipoles are being seen as an early warning rather than just isolated setbacks.

0: alleging serious irregularities in the JPSC, the JSSC, and other recruitment examinations. The Hemant Soren government has ordered a CID probe, but the protesters are pressing for CBI investigation, cancellation of the 14 JPC prelim exam, and a fresh test too. But with no breakthrough in sight, student leader Devendra Nath Mahato has begun an indefinite hunger strike now. Support, however, though, has largely remained symbolic. The BJP has accused the Congress of selective activism, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students in Delhi are missing from the streets of Ranchi.
1: हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आप सब ने युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने
2: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: जी आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंड से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
4: बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई, तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपने डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना, और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अभी चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है, तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
5: हम लोग आमंत्रित भी करते हैं ऐसे पार्टीज़ को कि आप नैतिक समर्थन दीजिए, कल CJP के लीडर से बात भी हुई थी जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जी से मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई, तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखे हैं, और आप लोगों की मांग जायज़ है तो आप लोग डटे रहिए, हमारी जो भी हो सकती है आप लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं।
6: छात्र और विद्यार्थी JPSC में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और इनका यह आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है, छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो, हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है, और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे JPSC में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से JPSC के सिविल सर्विस की PT परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे।
7: पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है, जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है, इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह हो कि आप लोग इन चीजों को दिखाइए, कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। JPSC के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, JPSC के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं।
8: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं, एक ही डिमांड है CBI जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया, और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। यही डिमांड है CBI जांच, CBI जांच, CBI जांच। क्यों? बिना सीबीआई जांच के हम मानेंगे नहीं।
9: द रिसेंट डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन झारखंड, द प्रोटेस्ट बाय द एस्पिरेंट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शोज द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वांट्स टू टेक पॉलिटिकल पॉइंट्स बाय सपोर्टिंग द सीजेपी प्रोटेस्ट इन दिल्ली एंड is maintaining a conspicuous silence over the protest by the aspirants in the Jharkhand Public Service Commission irregularities affected students.
10: अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका का वो वीडियो कॉल अब सबने देखा है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हैं छात्रों के साथ, तो अब आप संतुष्ट हैं? आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे? किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
11: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है और कोई भी सपोर्ट करे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। आज 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपना हक और अधिकार के लिए। तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है, जैसे जेपीएससी पीटी, एफआरओ, एसीएफ बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जेएसएससी सीजीएल, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है, इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते, मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही यहाँ का है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले। तो मेन एजेंडा और जहां तक कोई हावी होना चाहता है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं, लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे।
10: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है जेएमएम के साथ, और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक, कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है?
12: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता। अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का त्रिपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं, पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूँ कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इससे कोई सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
11: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको सीबीआई तत्काल जांच दिया जाए कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे।
0: Well, we're stepping into a very quick break, but as always, the news and updates continue right here on NDTV 24/7. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
7: so many attacks,
6: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
6: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
7: Welcome to Left, Right, and Center.
6: Hard facts.
7: War-struck country.
6: Hard questions.
7: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
8: In the Kargil area.
7: North Ukraine. In France. In Italy.
9: At Srinagar.
7: In Istanbul.
10: Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom, only on NDTV.
11: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
12: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
13: रियली?
12: फैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम, एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
14: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: from Delhi who is interested in investing in the state, who had met with the Tamil Nadu chief minister, and then they had suddenly had a change of plan. So in order to not miss them, he took the helicopter, and that he has completely used it, and also stated very categorically, in fact vehemently defending himself, stating not a penny of the state exchequer has been wasted because of his usage of the helicopter as well. But on the other side, the LDF, the opposition has went on stating that the chief minister should have been a little more sensitive at a time when Deluge is there attending, inaugurating a jewellery shop, and at the same time, the chief minister having a meal in Malappuram. All this has been also vehemently opposed by the opposition. But the chief minister again said that he has every right to have food, and he did. In fact, he jestingly stated, he didn't know that the previous chief minister fasted throughout the time when Kerala was going under a deluge, and all he did was eating lunch at 3 p.m., which was prepared by the host when he had gone there for an official visit. So all this is what Chief Minister has stated. Nevertheless, the entire argument that has been put forth is using of this helicopter. The Chief Minister has clarified that in fact it has been used within the framework, and there is not a penny that has been spent. But the argument continues at a time when Kerala is going through a huge deluge and many parts of Kerala inundated, like what you see behind me. The main roads are completely blocked, and this time a controversy like this, a political controversy, is definitely stirring and creating more issues in the state.
1: Ashwin, we'll of course keep in touch with you for regular updates. As always, thank you so much. Do stay safe as well. All right, on that note, let's now turn our attention to a result that goes well beyond one assembly seat. Prashant Kishore has pulled off what many believed was the toughest electoral upset in Bihar, defeating the BJP in Bankipur, a constituency the party had held continuously since the year 1995. It is Prashant Kishore's first election as a candidate, the BJP's first defeat in the constituency in three decades, and the first major electoral setback for the BJP since Samrat Chaudhary took over as chief minister. Prashant Kishore, though, defeated his nearest rival, BJP's Neeraj Kumar, by a margin of 19,324 votes on his poll debut. Conceding the mandate, BJP President and former five-time MLA from Bankipur, Nitin Abin, said that his party will earnestly introspect these results. You see, for the BJP, this is a loss in the seat vacated by its own national president, Nitin Abin. For Jansuraj, it's the first real proof that a political movement can convert public outreach into votes. Prashant Kishore's win has sent ripples across the Bihar electorate, with Jansuraj emerging as a serious alternative to RJD with a new voter base. Here are the reactions you cannot ignore.
2: बिल्कुल बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को भाजपा को बहुमत मिला है तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो बिहार के बच्चों का विकास हो यहाँ पढ़ाई हो शिक्षा हो रोजगार हो पलायन बंद हो तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी के जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए बिहार की भी चिंता कीजिए
3: आरजेडी की सांसद मीसा भारती हमारे साथ हैं मैडम बांकीपुर का संदेश क्या है आपके लिए जो रुझान है और जो अब नतीजे में बदलने वाले
4: देखिए मतलब मेरा तो कोई बांकीपुर जो बांकीपुर के जनता का संदेश मुझे यही लग रहा है जिस हिसाब से जो वोटिंग उन लोगों ने जितना भी किया है परसेंटेज बहुत कम रहा इस बार और प्रशांत किशोर को शायद लीड अभी चल रहा है जैसा टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोग को मिल रहा है मुझे लगता है जनता लोकतंत्र है और जनता मालिक है जनता कब किसको जिताएगी कब किसको हराएगी ये कहना
3: कारण कैसे देखते हैं तीन चार दशकों से बीजेपी का गढ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और इसके बावजूद बीजेपी की हार इसके पीछे क्या कारण आपको सीधा नजर आता है
4: देखिए कारण बहुत है लेकिन बहुत जल्दी होगा अभी कारणों को जनता के सामने लाना या टीवी चैनल्स पे इसको बोलना क्योंकि अभी काउंटिंग चल ही रहा है तो एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाए
5: मुझे लगता है कि यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी और गए 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहां कोई भी दे दे बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा, अभी दिखने लगा।
6: मेरा शुरू से जब कभी आप लोगों ने सवाल किया, मैं बोलता था कि पटना में इस बार बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हुए थे और वो चेहरा के रूप में पीके आ गए, तो पीके के लोगों ने मतदान कर दिया।
7: अब आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाया राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी, अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया, और जिन जी जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियां हैं, जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही शर्मनाक तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय कृत्य किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर अशुभ गैस छोड़े गए, पूरे देश से बीजेपी का सुखड़ा साफ होने जा रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने जा रही है। भाजपा पूरे देश के अंदर अब हर चुनाव हारेगी, हर जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी।
1: ऑलराइट, टू बाइपोल डिफीट्स, टू वेरी डिफरेंट स्टेट्स, बट वन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन फॉर द बीजेपी, हैज द बीजेपी'स कोर वोट बिगन टू शो साइंस ऑफ फटीग? बिकॉज व्हाइल द बीजेपी हैज डाउनप्लेड द लॉसेस इन बिहार'स बांकीपुर एंड मध्य प्रदेश'स दातिया, The results have triggered an internal review on everything from candidate selection to organizational strength. In fact, here's a report on why these bipolls are being seen as an early warning rather than just isolated setbacks.

0: For the BJP, this is more than just a bipolar setback. It is a warning shot. The party has now lost two seats in states where it is in power, even as it comfortably retained Gujarat's Manjalpur. The usual advantage of being in power did not work in Bihar's Bagipur or MP's Datia. In Bagipur, the BJP's vote count dropped by roughly one-third. The party had won the seat by over 50,000 votes in the last election. This time, Prashant Kishore turned the BJP's traditional stronghold into his electoral launchpad.
1: Bagipur ka jo aaj mandate aaya hai, ye sirf vidhayak nahi chuna gaya hai. Bagipur ki janta ne bhajpa ke kendriya netritv ko ye message diya hai ki aap Samrat Chaudhary ke jagah kisi behtar vyakti ko Bihar mein mukhyamantri banaiye, Bihar ki bhi chinta kijiye.
0: The BJP's own preliminary assessment points to a drift in its core vote. Party leaders believe the RJD may have transferred a section of its support to Prashant Kishore. The RJD's Rekha Gupta had polled more than 46,000 votes in the previous election. This time, she failed to cross even 15,000. In Bagipur, the BJP also changed its candidate. Party leaders admit this may have sent a message that the party was taking its voters for granted. In Datia too, candidate selection became a problem. The seat had been associated with three-time winner Narottam Mishra. Denied a ticket, Mishra publicly expressed his displeasure and his supporters protested.
2: 16 tarikh se swayam yahi pe dera jamayenge sare karyakartaon ke saath main mere Datia ke malko ek ek darwaje par apna sheesh dabaunga ek ek gaon ke andar jaunga.
0: He eventually campaigned for the BJP, but the damage may already have been done. The BJP is reluctant to directly link the Bagipur result to student protests. But the party leaders acknowledge that issues including the NEET paper leak agitation, UGC guidelines and police action have upset sections of its core support base. However, the biggest lesson may be organizational. The BJP has already said it will conduct a booth-wise review of the Bagipur result. The BJP will have to examine who stayed away, who shifted, why did the core vote weaken? And finally, did local leadership fail to energize voters? Two bipoles do not amount to a national trend. But for the BJP, they are an opportunity to course correct. Bureau Report, NDTV.
3: All right, crucially now, let's turn our attention to Jharkhand. For the seventh day now, Ranchi has been witnessing an unprecedented student protest. Hundreds of job aspirants are on the streets there, alleging serious irregularities in the JPSC, the JSSC and other recruitment examinations. So the Hemant Soren government, they have ordered a CID probe, but the protesters are pressing for a CBI investigation, the cancellation of the 14 JPSC prelim exam and a fresh test. With no breakthrough in sight, student leader Devendranath Mahato has begun an indefinite hunger strike now. Support, however, has largely remained symbolic. The BJP, though, is accusing the Congress of selective activism, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students in Delhi are missing from the streets of Ranchi. We've lined up some crucial reactions for you. Listen.
4: We want your support. क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर मैं यही कहना चाहती हूं कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने
5: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
4: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
6: आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंश से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसीलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं। तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
7: जी बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है, अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई। तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपने डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अभी ही चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है। तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
8: छात्र और विद्यार्थी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इनका ये आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो, हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से जेपीएससी के सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे।
9: पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है और मेरा आप लोगों से आग्रह हो कि आप लोग इन चीजों को दिखाइए। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं।
10: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं, एक ही डिमांड है सीबीआई जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। यही डिमांड है सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच। क्यों? बिना सीबीआई जांच के हम मानेंगे नहीं।
11: द रिसेंट डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन झारखंड, द प्रोटेस्ट बाय द एस्पिरेंट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शोज द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वांट्स टू टेक पॉलिटिकल पॉइंट्स बाय सपोर्टिंग द सीजेपी प्रोटेस्ट इन दिल्ली एंड is maintaining a conspicuous

0: silence over the protest by the aspirants in the Jharkhand Public Service Commission irregularities affected students.
1: अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका का वो वीडियो कॉल आप सबने देखा है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हैं छात्रों के साथ, तो अब आप संतुष्ट हैं? आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे? किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
2: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है, और कोई भी सपोर्ट करे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। आज 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपना हक और अधिकार के लिए। तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है, जैसे जेपीएससी पीटी, एफआरओ, एसीएफ, बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जेएससी, सीजीएल, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है, इसको तत्काल में, तत्काल आंदोलन होते, मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही यहाँ का है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले। तो मेन एजेंडा, और जहां तक कोई हावी होना चाहता है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं, लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे।
1: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है जेएमएम के साथ, और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक, कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है?
3: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम कोई, हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता। अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का त्रिपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं, पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूँ कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इससे कोई कोई सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
2: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको सीबीआई तत्काल जांच दिया जाए कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे।
4: Alright, let's also move on to the other big stories we're tracking. A brief takedown of the Prime Minister's Facebook video has now snowballed into a larger debate over how powerful digital platforms should be regulated in India. The Parliamentary Standing Committee has pulled up Meta over the temporary removal of Prime Minister Modi's video, with members saying that an apology alone is not enough and demanding greater accountability. The committee chairman Nishikant Dubey has told the company that an apology alone was insufficient and he called for greater accountability. In fact, during a nearly 3-hour meeting, which was attended by representatives of Meta, Google, YouTube, X and Snapchat, the committee also widened the discussion beyond this one incident, raising questions over how social media companies moderate content, how their algorithms work, whether they're transparent enough and how they comply with Indian law. The BJP has argued that such incidents raise serious concerns about the functioning of global tech platforms. Members reportedly sought a personal apology from Meta CEO Mark Zuckerberg. Meta, meanwhile, you must note, has expressed regret over this incident, describing the removal as an error. But the committee chairman, Nishikant Dubey, has spoken about reviewing Meta's safe harbor protections under Section 79 of the IT Act. Listen in to his remarks.
5: मेटा इंडिया ने प्रधानमंत्री जी के जो कंटेंट को हटाया, ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही। उनका जो माइंडसेट है वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है, और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा, जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
4: We'll continue to track all the final developments for you as always. Quick break for now, back in a moment.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
2: बैठ सकते हैं आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है?
3: कौन?
2: बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: सिनेमा घर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
4: व्हाट सीम्स सेटल्ड फॉर मी इज अनफिनिश्ड बिजनेस। सो आई रिवाइंड, आई पॉज, आई रिफ्लेक्ट, आई डिग अंटिल व्हाट्स बरीड स्टैंड्स अप to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
5: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
6: So many attacks.
5: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
5: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right and Center.
5: Hard facts.
6: War struck country.
5: Hard questions.
6: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine. In France. In Italy.
7: At Srinagar.
6: I am Mr.
8: Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV.
9: This is the show where we bring you all the hottest happenings from the world of entertainment and lifestyle.
10: Really?
9: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: Bihar Assembly. After breaking the BJP's 30-year winning streak in the Bankipur bi-poll elections, a seat vacated by BJP President Nitin Naveen. Prashant Kishore defeated his nearest rival, BJP's Neeraj Kumar, by a margin of over 19,000 votes. We're talking about 19,324 votes on his poll debut. Conceding the mandate, BJP President and former five-time MLA from Bankipur, Nitin Naveen, said that what his party will earnestly do is introspect as far as the results are concerned. Meanwhile, it is the win of Prashant Kishore that sent ripples across the state. The Jan Swaraj has now emerged as a serious alternative to RJD with a new voter base and marking the first defeat for BJP since Samraj Chaudhary became the chief minister.
1: बिल्कुल बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को भाजपा को बहुमत मिला है तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी के जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए।
2: मुझे लगता है कि यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी और गए 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहां कोई भी दे दे, बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा, अभी दिखने लगा।
3: मेरा शुरू से जब कभी आप लोगों ने सवाल किया मैं बोलता था कि पटना में इस बार बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हुए थे और चेहरा के रूप में पीके आ गए तो पीके के लोगों ने मतदान कर दिया।
4: अब आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी, अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया और जिन जी जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियां हैं जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही सर्वनाक तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय कृत्य किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, पूरे देश से बीजेपी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने जा रही है। भाजपा पूरे देश के अंदर अब हर चुनाव हारेगी, हर जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी।
0: Now, two bipoll defeats and two very different states, but one uncomfortable question for the BJP. Has the party's core vote begun to show signs of fatigue? While the BJP has downplayed the losses in Bihar's Bankipur and also in Madhya Pradesh, the results have triggered an internal review on everything from candidate selection to organizational strength. Here's a report on why these bipolls are being seen as an early warning sign rather than just isolated setbacks.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आतुर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
6: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
5: So many attacks.
4: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
5: It's incredible.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाह मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा, सबका
9: राजा आकर मसाला।
10: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर मसाला।
10: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा, सबका
10: राजा आकर मसाला।
11: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा। सबका
10: राजा आकर मसाला।
11: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
12: Really?
11: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
13: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
14: Just few inches away is POK.
13: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: है, हम लोगों ने भी तो वोट दिया है मोदी जी को, तो ये मोदी जी की जिम्मेवारी है कि बिहार में सबसे काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाए ताकि यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो।
1: विधानसभा में जो आपकी पार्टी का प्रदर्शन रहा था उसके बाद एक तरह से ऑक्सीजन मिल गया जन स्वराज को।
0: देखिए पार्टी का लोकतंत्र है, कभी आप जीतेंगे कोई हार कभी हारेंगे। अभी भाजपा यहाँ हारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा की ताकत कम हो गई। भाजपा का जो अपना विचार है, अपना प्रयास है, वो तो जारी रहेगा। आज जो बाकीपुर में हम लोग की जीत हुई है, अगर मैं 3 साल वो प्रयास नहीं करता तो थोड़ी ना हमको आज बाकीपुर के लोगों ने जिताया होता। तो अगर आप ईमानदारी से समाज में लगकर प्रयास कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको दिखेगा, वो बाकीपुर में कल दिखा है।
1: अब आगे का एजेंडा क्या है प्रशांत किशोर का?
0: आगे का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में एक अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने, बिहार में कि बिहार की जो सरकार है उसका मुख्य मुद्दा अपराध और अपराधी न होकर पढ़ाई शिक्षा और पढ़ाई रोजगार और पलायन को रोकना हो, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, और जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह बने, ये हमारा मुख्य मुद्दा है, इसी पर हम चुनाव लड़े हैं। इसके साथ साथ बाकीपुर में अगले 2 से 3 महीने में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार, मैंने जो वादा किया है लोगों से, विधायक और विधायक विधायकी से जुड़े हुए सारे मामलों में भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको नली गली वगैरह की जो समस्या है, राशन कार्ड पेंशन की समस्या है, वो खत्म, उसमें आपको सुधार दिखेगा। एक वादा मैंने और किया है जो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना चाहता हूँ कि अगले 1 साल में बाकीपुर के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा। अगर नहीं होगा तो उन इलाकों के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। ये इस पर मैं 1 साल में काम करके आपको दिखाऊंगा।
1: विपक्षी एकता के लिए भी काम करने की बात?
0: नहीं, हमारा बिहार फोकस है। मैं बिहार में हम लोग लड़ ही रहे हैं। बिहार में विपक्षी एकता की कोई जरूरत नहीं है। जो बिहार में जरूरत समाज में काम करने की है, बिहार में जरूरत पढ़ाई की है, बिहार में जरूरत रोजगार की है, विपक्षी एकता और समीकरण हम लोग बहुत देख चुके, उसका कोई महत्व नहीं है। बाकीपुर की जनता ने जो विश्वास जताया है और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनके लिए भी मिलकर उनके साथ काम करेंगे, बाकीपुर बेहतर बने, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो, कम हो, खत्म ना हो तो कम से कम कम हो, और साथ ही यहाँ इसको मॉडल विधानसभा के तौर पर हम लोग डेवलप करने की कोशिश करें। और उसमें एक जो पैमाना मैंने रखा है शिक्षा का, कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके, उसके लिए हर संभव अगले 1 साल में प्रयास करेंगे। एक कोई वीडियो चला रहा है कि इन्होंने कहा था कि हम अभी कह रहे हैं कि बाकीपुर बेंगलोर नहीं बन सकता है, पहले कहा था, पहले भी ये नहीं कहा था, पहले ये कहा था कि 20 वर्ष में बाकीपुर बेंगलोर से भी बेहतर बने, ऐसा एक ब्लूप्रिंट अगले 2 साल में बनाएंगे। ब्लूप्रिंट बनाने की बात है, विधायक की क्षमता ये नहीं कि हम बंगलोर बना देंगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं, राजनीतिक तौर पर झूठ नहीं बोलते हैं। हमने जो कहा है कि बिहार बाकीपुर में विधायक और विधायकी से जुड़े मामलों में कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। दूसरी बात मैंने कही है कि यहाँ पर हमारे आचार विचार व्यवहार से लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे देखकर। और तीसरी बात मैंने कही है कि 1 साल के अंदर यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय है, खासकर गरीब इलाकों में, उसको उसमें गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखेगा। अगर नहीं होगा तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। हर हालत में 1 साल में बाकीपुर में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करके दिखाएंगे।
2: All right, so many promises that they're being made by Prashant Kishore, the new MLA of Bankipur. With that, we'll slip into a short break. More news updates on the other side. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: राजा अकबर मसाला।
11: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
12: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा, सबका
10: राजा आकर मसाला।
11: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
12: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
13: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
14: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
15: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
16: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
17: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
18: Aapka parcel phir se hamare ghar pe aaya hai.
6: Kuch to baat hai is dil mein.
19: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
20: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, weekdays at 4 p.m.
21: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
22: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
21: आप कहाँ से हैं?
22: हरियाणा।
21: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
22: डेढ़ महीने पे।
21: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
22: 3 साल।
21: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
22: बहुत।
21: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
22: श्रीनगर तक अलाउड।
21: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
23: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
17: नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
24: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
20: The attack was captured on CCTV. She was stabbed over 20 times within 30 seconds. Investigators say that this was no random act of violence, but the culmination of months of alleged stalking that had already been reported to the police by the mother of two. Ishika Verma reports.
25: A teacher under attack. Inside her own school, she tries to pull away, but the knife keeps coming again and again and again. A school staff member rushes to help. The attacker threatens him too before fleeing. 29-year-old Sandhya never survived this attack. Investigators say she was stabbed more than 20 times.
26: जो डिसीज्ड है वो उससे थोड़ी दूरियां बनाना चाह रही थी, बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जो अमित था वो लगातार उसे पुश कर रहा था और कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश जो है वो कर रहा था।
25: दिस मर्डर इन्वेस्टिगेटर से डिड नॉट कम विदाउट अ वार्निंग। संध्या हैड ऑलरेडी फाइल्ड मोलेस्टेशन कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड अमित एंड एट द पुलिस स्टेशन अमित हैड पब्लिकली अपोलोजाइज्ड एंड नाउ पुलिस बिलीव दैट अमित कमिटेड दिस मर्डर टू अवेंज द अर्लियर कंप्लेंट।
24: द अक्यूज्ड 21-year-old अमित वाज अरेस्टेड विद इन आवर्स। इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव द अटैक वाज एन एक्ट ऑफ रिवेंज आफ्टर संध्या रिजेक्टेड हिज एडवांसेस एंड सॉट पुलिस हेल्प।
27: न्यूली रोड बन रहा है तो डस्ट कई बार डस्टिंग होती रहती है, तो उस चक्कर में लोग कई बार स्वापी वगैरह, हमारे देहात का इलाका है, स्वापी से मुंह ढक लेते हैं बाइक चलाने वाले जो लोग होते हैं, उस टाइप से वो आया। और अमूमन कई बार एक दो बार उसके हस्बैंड भी आए थे, क्योंकि वो भी बाइक से ही जाते हैं, तो वो भी ऐसा करते थे। और उसने आके अपनी पहचान जो बताई, वो बताई, बोलो विक्की आया है, संध्या मैडम से बोलो, संध्या मैडम को बोला, बोलो विक्की आया है, विक्की उसके हस्बैंड का नाम था। तो वो फिर वो उसी हिसाब से बुलाया और उसी हिसाब से वो मेरे ख्याल से विक्की के नाम से वो आ भी गई लड़की।
25: A complaint had already been filed. An apology had already been made. Yet, a teacher was killed inside her school, stabbed over and over again. The murder of Sandhya is once again raising uncomfortable questions about whether stalking complaints are being acted upon before they turn into brutal violence. Bureau Report, NDTV.
20: All right, an absolutely horrifying and frightening murder right here in the National Capital Region. With that, we'll slip into a short break. More on the other side. Stay with us.

0: stadium where the students are agitating against the state government and demanding CBI action and re-exam they want from the government and from the JPSC. They want a re-exam, whole exam they want to should be vanished. So this is the big statement by the chief minister of the state itself. Chief minister said all the action will taken place after the judicial inquiry which is going on by the state government, and also said that the government is with the students. So it is a kind of a message come out from the chief minister itself, and now the all eyes on the students also, that how student will react after the statement of the chief minister Hemant Soren.
1: That's right, Raman, and this is especially, you know, very important given that we've just seen massive student protests in Delhi and then in Jharkhand. The student protest has been underway for over a week now, and finally Chief Minister Hemant Soren, they're making breaking his silence and saying that the students will get justice, that all issues regarding these irregularities that they're raising concerning the JPSC examination will be looked into. So a big statement there from the Chief Minister. So Ranchi has been witnessing unprecedented students agitation, hundreds of job aspirants on the streets alleging serious irregularities in the JPSC and the JSSC and other recruitment examinations. The Hemant Soren government has ordered a CID probe, but protesters are pressing for a CBI investigation and cancellation of the 14th JPSC preliminary examination and a fresh test. A student leader, Navendra Nath Mahato, has begun an indefinite hunger strike as well. So we'll have to see how they react now that the chief minister has spoken out. The BJP has accused the Congress of selective activism, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students in Delhi are missing from the streets of Ranchi.
2: हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप, सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहे, जो भी मांगे डिमांड से मेरे भैया ने
3: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
2: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
4: जी आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंड से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
5: जी बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है, अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई, तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारी यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपने डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना, और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अभी ही चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है, तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
6: हम लोग आमंत्रित भी करते हैं ऐसे पार्टीज़ को कि आप नैतिक समर्थन दीजिए। कल CJP के लीडर से बात भी हुई थी, जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जी से मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई, तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखें, और आप लोगों की मांग जायज़ है तो आप लोग डटे रहिए, हमारी जो भी हो सकती है आप लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं।

0: दीजिए, बांकीपुर की जनता ने उस बात को सुना है, समझा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं और कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने ये विश्वास व्यक्त किया है उनके साथ मिलकर उनके जीवन में बेहतरी आए, उसके लिए प्रयास करेंगे।
1: आपने बोला भी कि हम नाली और गली पर ये चुनाव नहीं लड़े हैं, हमारा लार्जर इशू है और आपने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला किया।
0: नहीं, लार्जर इशू ये है कि बिहार तो बांकीपुर के एक विधायक से नहीं सुधरेगा, बिहार तो तब सुधरेगा जब बिहार में अच्छे आदमी मुख्यमंत्री हों। तो ये जरूर मुद्दा रहा है हम लोगों का, और हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने मैंडेट बीजेपी को दिया है, एनडीए को दिया है, अगले 4 वर्ष भाजपा की ही सरकार रहनी है। तो हम लोग का ये पूरा प्रयास है कि ये दबाव बनाकर रखें, भाजपा के नेतृत्व को ये संदेश देकर देते रहें, और बाकीपुर की जनता ने उसमें अपनी आवाज़ जोड़ी है, अपना सहयोग दिया है। जहाँ भाजपा के नेतृत्व को ये बात बताने का प्रयास है कि आप किसी अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, वो कुशवाहा हो या किसी अन्य जाति का हो, इससे फर्क नहीं है, आदमी अच्छा होना चाहिए ताकि बिहार में पढ़ाई की बात हो, बिहार में रोजगार की बात हो, बिहार में पलायन बंद करने की बात हो। आखिर मोदी जी अगर गुजरात की चिंता कर रहे हैं, मोदी जी अगर यूपी की चिंता कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, तो बिहार भी तो भारत का हिस्सा है, हम लोगों ने भी तो वोट दिया है मोदी जी को। तो ये मोदी जी की जिम्मेवारी है कि बिहार में सबसे काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाए ताकि यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो।
1: विधानसभा में जो आपकी पार्टी का प्रदर्शन रहा था, उसके बाद एक तरह से ऑक्सीजन मिल गया जनसुराज को।
0: देखिए, पार्टी का लोकतंत्र है, कभी आप जीतेंगे कभी हारेंगे। अभी भाजपा यहाँ हारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा की ताकत कम हो गई। भाजपा का जो अपना विचार है, अपना प्रयास है, वो तो जारी रहेगा। आज जो बांकीपुर में हम लोग की जीत हुई है, अगर मैं 3 साल वो प्रयास नहीं करता तो थोड़ी ना हमको आज बांकीपुर के लोगों ने जिताया होता। तो अगर आप ईमानदारी से समाज में लगकर प्रयास कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको दिखेगा, वो बांकीपुर में कल दिखा है।
1: अब आगे का एजेंडा क्या है प्रशांत किशोर का?
0: आगे का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में एक अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने, बिहार की जो सरकार है उसका मुख्य मुद्दा अपराध और अपराधी न होकर पढ़ाई शिक्षा और पढ़ाई रोजगार और पलायन को रोकना हो, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, और जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह बने, ये हमारा मुख्य मुद्दा है, इसी पर हम चुनाव लड़े हैं। इसके साथ साथ बांकीपुर में अगले 2 से 3 महीने में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार, मैंने जो वादा किया है लोगों से, विधायकी से जुड़े हुए सारे मामलों में भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको नली गली वगैरह की जो समस्या है, राशन कार्ड पेंशन की समस्या है, वो खत्म, उसमें आपको सुधार दिखेगा। एक वादा मैंने और किया है जो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना चाहता हूं कि अगले 1 साल में बांकीपुर के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा, अगर नहीं होगा तो उन इलाकों के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। ये इस पर मैं 1 साल में काम करके आपको दिखाऊंगा।
1: विपक्षी एकता के लिए भी काम करने की बात?
0: नहीं, हमारा बिहार फोकस है, मैं बिहार में हम लोग लड़ ही रहे हैं, बिहार में विपक्षी एकता की कोई जरूरत नहीं है। जो बिहार में जरूरत समाज में काम करने की है, बिहार में जरूरत पढ़ाई की है, बिहार में जरूरत रोजगार की है, विपक्षी एकता और समीकरण हम लोग बहुत देख चुके, उसका कोई महत्व नहीं है। बांकीपुर की जनता ने जो विश्वास जताया है और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनके लिए भी मिलकर उनके साथ काम करेंगे, बांकीपुर बेहतर बने, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो, कम हो, खत्म ना हो तो कम से कम हो, और साथ ही यहाँ इसको मॉडल विधानसभा के तौर पर हम लोग डेवलप करने की कोशिश करें। और उसमें एक जो पैमाना मैंने रखा है शिक्षा का, कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके, उसके लिए हर संभव अगले 1 साल में प्रयास करेंगे। एक कोई वीडियो चला रहा है कि इन्होंने कहा था कि हम अभी कह रहे हैं कि बांकीपुर बेंगलोर नहीं बन सकता है, पहले कहा था, पहले भी ये नहीं कहा था, पहले ये कहा था कि 20 वर्ष में बांकीपुर बेंगलोर से भी बेहतर बने, ऐसा एक ब्लूप्रिंट अगले 2 साल में बनाएंगे। ब्लूप्रिंट बनाने की बात है, विधायक की क्षमता ये नहीं कि हम बंगलोर बना देंगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं, राजनीतिक तौर पर झूठ नहीं बोलते हैं। हमने जो कहा है कि बिहार बांकीपुर में विधायक और विधायकी से जुड़े मामलों में कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। दूसरी बात मैंने कही है कि यहाँ पर हमारे आचार विचार व्यवहार से लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे देखकर। और तीसरी बात मैंने कही है कि 1 साल के अंदर यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय हैं, खासकर गरीब इलाकों में, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखेगा, अगर नहीं होगा तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। हर हालत में 1 साल में बांकीपुर में

0: most recently as an ode to their iconic Appadi Podu song. Trisha and Vijay danced together in a song in the now Chief Minister's last release, Goat.
1: अरे तू पागल है क्या? मिशन पर फैमिली को कौन ले जाता है? और वो भी बैंकॉक, बीवी बच्चे समय.
0: A career marked by grace, style, and unmatched commercial success. Trisha continues to be a household name in Tamil cinema. Bureau Report, NDTV.
2: And we have some breaking news coming in for you. The political war of words in Maharashtra has only intensified after the Congress referred to Deputy Chief Minister Sunetra Pawar as a mute doll. In a social media post, the remark triggered a strong backlash from the NCP, with party workers also staging a protest outside the Maharashtra Congress office and also accusing the Congress of using a derogatory term once directed at the former Prime Minister Indira Gandhi. Deputy Chief Minister Eknath Shinde also condemned the remark, calling it an insult to Maharashtra's first woman Deputy Chief Minister and to all women across the state. So what happened was that on Monday, the Maharashtra Congress posted a clip from Sunetra Pawar's press conference showing MLA Dhananjay Munde stopping her from taking questions from reporters about the law and order situation in Bheed, after which Maharashtra Congress called Sunetra Pawar a mute doll. Take a listen.
3: ये सिर्फ सुनेत्रा ताई पवार इनका अपमान नहीं है, ये महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है. और आपने देखा था जब महाराष्ट्र की माता बहनों का अपमान होता है, इसी कांग्रेस ने, यही इंडिया अलायंस ने, यही महाविकास आघाड़ी ने 2024 में हमारी माता बहनों का अपमान किया था. और उसी वक्त माता बहनों ने उनको सबक सिखाई, उनको घर पे बिठा दिया. ये इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए और मैं कहूंगा कि उनकी पूरी तरह मति भ्रष्ट हुई है, इसीलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगी चाहिए.
4: क्या बोला था कांग्रेस, क्या बोला था हमारे नेता ने? गुंगी गुड़िया बोला ना, वो इससे तो गालियां नहीं होती है. और बार बार बार बार उनके प्रेस में वो जो कोई हस्तक्षेप करते, ये ठीक नहीं है. रहा सवाल कि जब ये गुंगी गुड़िया बोली तो गुस्सा आया, और ये लोग सत्ता में बैठे है, इनको तो कोई आचार नहीं है, विचार नहीं है, कोई आइडियोलॉजी है. सत्ता के बगैर ये जी नहीं सकते, सत्ता के भूखे ही है, सत्ता के पीछे दौड़ने वाले कंगाल ही है. और ये आकर यहाँ दत्तागिरी करते, जब ये बच्चों के सर फोड़े जा रहे थे.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: POK के firing range में खड़े हैं।
4: Just few inches away is POK.
3: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: POK के firing range में खड़े हैं।
4: Just few inches away is POK.
3: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा, सबका राजा आर्टियर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
11: POK के firing range में खड़े हैं।
12: Just few inches away is POK.
11: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
14: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
15: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
16: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
17: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
18: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट।
19: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
13: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
20: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
21: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
13: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
22: Now watching NDTV 24/7, the hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
13: When stories have impact.
23: Padmasar Joshi, managing editor and prime time.
24: Good evening and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always on the day's biggest stories, the buck stops. The distance between Patna and Ranchi is just a few hundred kilometers, 326 kilometers to be precise. On an ordinary day, it would take you 6 hours and 19 minutes to travel that distance. Today, the Congress's students' wing, the NSUI, carried out a protest in Patna. As they tried to march to the Chief Minister's residence, the police turned the water cannon on them. The NSUI workers grabbed this opportunity to do an impromptu little rain dance at the spot. The NSUI's Patna march was one in a series to demand justice for students. But just 6 hours 19 minutes from that Patna rain dance sat actual students camping in an open field inside a stadium in

0: देखिए, हमारी सरकार बिल्कुल गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ पर बच्चों के लिए, आपने, आपको पता होगा कि पुलिस की जांच हो गई, गिरफ्तारी हो गई, लगातार वो चाह रहे हैं कि बच्चों के साथ न्याय हो, भविष्य में कभी भी इस तरह से पेपर लीक ना हो, और एजुकेशन को दुरुस्त करने के लिए छात्रों के हित में वो लगातार काम कर रहे हैं। पिछली सरकार की तुलना में आप देख लेंगे कि किस तरह से वो रेगुलराइज कर रहे हैं। मरंग गोमके स्कॉलरशिप योजना के तहत उनके विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 25 लाख तक हायर एजुकेशन के लिए सरकारी गारंटी पर लोन दिया जा रहा है। अभी ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग कोटा के इंस्टीट्यूट से यहाँ पर रांची में कराया जा रहा है। मेधावी छात्रों को चुनकर करीब 300 बच्चों को कोचिंग कराया जा रहा है, सरकारी खर्चे पे, रहना खाना सब कुछ। तो वो काम कर रहे हैं उनके लिए, और वो चाहते हैं कि उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं हो, सब कोई
1: बहुत मिलने गई वहाँ पर
0: हमारी सरकार। और जैसे ही पता चला
1: सरकार से कोई मिलने गया इन बच्चों से,
0: मैं तो दिल्ली में, हमारा पार्लियामेंट चल रहा है ना, उसी को, हाँ वो लोग कर रहे हैं, मैं तो पार्लियामेंट में हूँ और वहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों से बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं जी।
1: ये बताइए, राजेश और अंकित दोनों हमारे साथ हैं। आज मुख्यमंत्री ने कहा सरकार सचेत है, सरकार सब कुछ देख रही है, सरकार सब कुछ सुन रही है, न्याय होगा। अंकित, न्याय क्या है
0: जी?
1: न्याय मिला है आपको?
0: बिल्कुल
1: न्याय हो रहा है अंकित?
0: बिल्कुल न्याय होगा, न्याय यही होगा।
1: दो बच्चे हमारे साथ न्याय जिनकी बात सुन, बताइए अंकित,
2: आप उठा लीजिए। मैम, अगर हमारे साथ न्याय हो रहा होता, अगर हम लोग न्याय हम लोगों के साथ होता, तो आज हम लोग इस बारिश में क्यों भींग रहे होते? मैम देख रहे हैं, मैम बारिश से पूरा भींगे हुए हम दोनों, बारिश हो रही है मैम, हम लोग बारिश में क्यों रहते हैं? हम लोग किसान का पुत्र मैम, अभी पता है था, अभी धान रोपने का सीजन, हम लोग धान रोप रहे होते खेत में। लेकिन अगर न्याय हो रहा होता तो हम लोग यहाँ पे खाली मैदान में नहीं बैठे होते मैम, बारिश में नहीं भींग रहे होते। पिछले 4-5 साल से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए मैम, उसका रिजल्ट है ये। ऐसा नहीं है मैम कि अचानक से आकर के हम लोग बैठ गए धरने पे। मैम ये परेशानी एक दिन का नहीं है मैम, लगातार हम लोग परेशान हुए हैं। ये पिछले चार पांच साल इतना ज्यादा परेशान हुए मैम, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम लोगों को शौक थोड़ी ना मैम की बारिश में भींगते रहे। हम लोग अभी घर में होते, हम लोग किसान का बेटे, हमारे घर में खेती होता है। अभी हमें अपने घर में खेत में मजदूरी करना था, अपने माँ पिताजी को मदद करना था खेती करते समय, यहाँ पे इस बारिश में नहीं भीगना था मैम। देख रह सकते, मेरा पाल देख लीजिए आप, कहाँ न्याय हो रहा है? कुछ न्याय नहीं हो रहा है। अगर न्याय होता तो जेएसएससी सीजीएल इतना बड़ा एग्जाम था, इतना बड़ा करप्शन हुआ इसमें, नेपाल ले जाकर के प्रश्न पढ़ाया गया और 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन जो सही पाया गया, सीआईडी की रिपोर्ट कर रही है, उस रिपोर्ट को दबा करके कोर्ट में यह बोल दिया गया कि फ्री क्वेश्चन 120 आउट ऑफ 150 फ्री क्वेश्चन होते हैं। मैं पूछता हूँ, फ्री क्वेश्चन है ये? उस परीक्षा को एकदम सरकार ने एकदम दबाने का काम किया, जबकि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना चाहिए था। उसी जेएसएससी सीजीएल से सारा तार जुड़ा हुआ मैम, उसी से आज जेपीएससी तक पहुंचा। समझ रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल में अगर उस दिन उन चोरों को पकड़ लिया जाता, पेपर माफियाओं को पकड़ लिया जाता मैम, तो आज जेपीएससी का ये हश्र नहीं,
3: जेपीएससी का ये हश्र होने का जो आप देख रहे हैं। 14 जेपीएससी लोग जितने भी है,
2: सारे एग्जाम में आज धांधली हुआ है, वो एमआर को बाहर ला करके रंगा गया है। इसमें सारे के सारे अगर जिम्मेदार मेन रूप से देखा जाए तो जेएसएससी सीजीएल के आसपास इर्द गिर्द में जितना भी एग्जाम हुआ, चाहे वो जेपीएससी से, चाहे
3: पीजीटी हुआ, लैब हुआ,
2: म्यूनिसिपल हुआ, इन सारे एग्जाम में धांधली हुआ है मैम। आप समझ सकते हैं, पीजीटी के एक एक सेंटर से 500-500 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है मैम। हाउ इज इट पॉसिबल, तो बताएगा,
1: हाउ इज इट पॉसिबल महुआ जी? ये बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, सिर्फ इन दो बच्चों को बता दीजिए, ये भी किसान के बच्चे हैं, वहां पर मजदूर के बच्चे बैठे हैं, गरीब के बच्चे बैठे हैं।
0: नहीं सही नहीं, मैं इनसे,
1: ये इन्फ्लुएंसर भले से ही ना हो, ये वायरल नहीं होंगे, ये इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे, ये टिकटॉक पे नहीं होंगे।
0: मैं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई की हूँ, नेट क्वालिफाई की हूँ, मुझे इनका दर्द अच्छी तरह से पता है। कोई व्यक्ति जब महीनों की मेहनत से कोई तैयारी करता है, उसके बाद इस तरह से उनके साथ हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि इनका कितनी दुख है, कितना तकलीफ है। लेकिन सरकार अभी गंभीर है, इतना मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो दोषी है, हम लोग चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इतनी सजा मिले कि भविष्य में किसी की हिम्मत ना हो कि वो इस तरह से छात्रों के साथ खिलवाड़ कर सके और हमारी सरकार आपके साथ है, आप निश्चित रहिए। जो भी हुआ है बहुत दुखद था, बहुत दुखद है, हम लोग आपके, हमारी संवेदना आपके साथ है जी।
1: महुआ जी, ये बारिश में बैठे हैं, इनसे कोई मिलने तक नहीं आया है। मुख्यमंत्री आवास 2 किलोमीटर दूर है वहां से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, हम सब कुछ सहते हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। जा क्यों नहीं रहे मुख्यमंत्री वहां से मिलने के लिए? बारिश में ये बच्चे बैठे हुए हैं
0: जी। बिल्कुल, आज गुरु जी की पुण्यतिथि है हमारे दिशम गुरु की, और वो गांव में है माननीय, तो मैं, हम लोग चाहते हैं कि इनकी समस्या का वो जल्द से जल्द समाधान करें, कि कभी ये नौबत ही नहीं आए कि उनको इस तरह से अपना घर छोड़कर, अपना खेत छोड़कर इस तरह से धरने पर बैठना पड़े। उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, उसे और सुरक्षित बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं। हम लोगों से सबसे वो यही बोल रहे हैं कि देखिए, आपको पता होगा कि विदेशों में ये पढ़े, इसके लिए मरंग घूम के सम्मान दिया जा रहा है, गुरु जी क्रेडिट कार्ड योजना मैंने बताया, सावित्री बाई फुले, और हर तरह से इनको सुविधा देने के लिए वो बिल्कुल, और आपको पता होगा कि पिछले भाजपा के कार्यकाल में सेशन कितना लेट था और कितनी तरह के पेपर लीक और हर तरह की घटनाएं उस समय हुई थी। अंकित, धीरे धीरे जो घुन लगा हुआ था उस सिस्टम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसको सुधार रहे हैं और काफी हद तक सफलता मिली है।
1: आप ही अपने मन की बात बताइए अंकित और राजेश,
0: जो अभी वो क्लियर कर रहे हैं कि आने वाले समय
4: में। यहाँ पर बोलना चाहूंगा माननीय जो मैम बोले कि हम ये योजना लाएं, गुरुजी क्रेडिट योजना लाएं, उनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए, हम उस एजेंसी को एग्जाम लेने का दायित्व दिए जो माननीय आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, उसे हम एग्जाम लेने का प्रभार दिए। इसके अलावे मैम को ये भी बोलना चाहिए था कि हम एक ऐसे आदमी को एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर बना दिए जो रांची में होटल में लीज लेता है, होटल को लीज लेता है और वहां पर बच्चों का भविष्य के साथ खेलता है, पेपर पढ़वाता है और पैसा के आधार पर नौकरी बेचता है। ये भी माननीय जी को बोलना चाहिए। और मैम, अभी महुआ मांझी मैम
0: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
4: सरकार का संवेदना बच्चों के साथ
0: बर्दाश्त।
4: मैम बताइए, आपका संवेदना मैम, आपका, आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता। हम बीजेपी से हैं मैम, बताइए, हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम बीजेपी से हैं, हम कोई पार्टी वाला
0: छात्र हैं, नहीं आप लोग छात्र हैं,
4: सभी पार्टी का जिस दिन
0: आप लोग
4: मैम सुनिए मेरे बात सुनिए मैम
0: आप लोग छात्र हैं
4: मैम आप अगर बात सुन रहे तो मेरे बात सुनिए मैम, जिस समय हम लोगों को लगा ना कि हम लोगों को पार्टी, जरा सा भी लगा कि कोई पार्टी का मंच बन रहा है, हम लोगों ने अपना मंच अलग कर लिया। मैम पता नहीं आपको, क्या आपको नहीं पता कि जेल के मंच से हम लोग अलग हो गए?
0: बिल्कुल पता है
4: मैम, हम लोग पे एलिगेशन लगा रहे हैं
0: जी, बिल्कुल अलग,
4: कोई काम ढंग का नहीं हो रहा है।
0: आप लोग छात्र हैं, आपके भविष्य की चिंता हमें,
4: मुझे मैम राजनीतिक रूप से मुझे बात करना नहीं आता।
0: आप निश्चिंत रहिए, आपको आश्वासन देते हैं हम लोग भविष्य में।
4: आश्वासन क्या करेंगे मैम, कितना आश्वासन लें, आज से आश्वासन लें मैम, आपने जैसे सिंचन को बर्बाद कर दिया, हम लोग लाइफ को बर्बाद कर दिया,
0: इस बार हम भी आश्वासन दे सकते हैं
4: मैम। मैम हम आपका आश्वासन क्या करें बताइए?
0: देखिए, कुछ लोगों की गलती के कारण आपका भविष्य
4: पार्सल वापस आ जाएगा, आज जेपीएससी में भी वही हाल हो गया, क्या आपके आश्वासन से हमारा भविष्य वापस आ जाएगा उस समय? मैम काम कीजिए, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आप लोग राजनीति जो करना है कीजिए, हम लोग छात्रों को कोई मतलब नहीं है, परीक्षा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, विभाग होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट एजेंसी से एग्जाम लीजिए, ऐसा नहीं कि चोर चुहार एजेंसी से आप एग्जाम लेने आते हैं, भविष्य खाता है।
0: इस बार हम लोग गारंटी देते हैं, हम लोग गारंटी देते हैं,
1: बार बार गारंटी मिली है इनको, एंड अगेन एंड अगेन, एंड एटलीस्ट नाउ दीज चिल्ड्रन हैव फोर्स्ड पीपल टू सिट अप एंड लिसन अश्विनी मिश्रा, बिकॉज सो फार, एंड आई वांट टू ड्रॉ दैट डिस्टिंक्शन फॉर द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग राइट नाउ, यू've got two young men, Rajesh and Ankit, who are sitting under an open sky. क्या ये सच है अंकित कि आपका जो वहां पर जो टेंट लगाया हुआ था उसको भी हटा दिया गया? क्या बिजली, पानी, खाना कुछ मिला है क्या वहां पे?
4: मैम पहले हटाने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन हम लोग बारिश में उस दिन भीग रहे थे बहुत ज्यादा मैम, सारे लोग हम लोग गुस्सा गए थे, टेंट वाला को मंगवाए थे मैम तो पुलिस बार बार अलाउ नहीं कर रही थी, हम लोग लड़ झगड़ के टेंट लगवाए मैम, तो अभी कोई उपाय से रहने लायक का मंच बन पाया मैम, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट है मैम, चूंकि हजारों की संख्या में भीड़ है मैम, तो लगभग 1500-2000 बच्चे ही अंदर रह पाते मैम, तो हम लोग बाहर ही रह जाते हैं मैम, कि बाहर से बहुत दूर दूर से छात्र आए, हम लोग तो यहाँ तो शुरू से हैं, हम लोग भीगना मंजूर है मैम, बस हमारा मांग मान लिया जाए।
1: यू नो अश्विनी मिश्रा, व्हेन दीस पीपल वर गेटिंग वेट अंडर एन ओपन स्काई, एनएसयूआई वाज डूइंग अ रेन डांस इन पटना, व्हेन अ वाटर कैनन वाज यूज्ड ऑन देम, टुडे पटना इज बेयरली 6 6 hours drive from रांची, अगर आपकी NSUI पटना में मार्च कर सकती है, दिल्ली में मार्च कर सकती है, मुंबई में मार्च कर सकती है, भोपाल में मार्च कर सकती है, तो रांची में मार्च क्यों नहीं कर सकती सर? वहां पे तो आपको NSUI की जरूरत नहीं है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है JMM के साथ। आप वहां पटना में रेन डांस कर रहे हैं वाटर कैनन के सामने, यहां पे बच्चे ना, वहां बच्चे भीग रहे हैं बिकॉज यू कांट इवन अलाउ देम टू पुट अप अ टेंट। इफ यू कांट डू एनीथिंग एटलीस्ट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग।
5: Padmaja ji, I think you answered the question yourself that why NSU are not marching in Jharkhand, because there is our government and we are taking the matter seriously, and like Bharatiya Janata Party who did not listen to the voices of students, protest is a democratic right of everyone and students are citizen first and they have a very right to protest. And I think Rahul Gandhi has become the voice of youth. He has awakened the youth to rise every issue in the country, and it doesn't matter whether the state belongs to Congress or BJP, it is student who's raising the concern and those concerns should be addressed. I totally second that. The larger point here is we need to understand, Padmaja ji, also understand that how BJP has treated the students. How did they lathi charge the students? How did they treated the students? They used pellet guns, they used whatnot. And now Modi ji is forgiving the student. Who should be getting the forgiveness? It should be the Modi ji who should be saying sorry.
1: Mr. Mishra, right now the people who are on the streets, right now, is there any student on the streets in Patna? No. Is there any student on the streets in Delhi? No. Is there any student on the streets in Bhopal? No. Where are the students on the streets? Is there any student on the street in Prayagraj? Why is your Chhatro ki goonj headed to Prayagraj on the 8th? Why aren't they headed to Ranchi? You go to Ranchi, you hear the Chhatro ki goonj in Ranchi on tomorrow.
5: Padmaja ji, I in my starting statement itself that I said that there's a responsible government in Jharkhand and they are taking the necessary steps so that student protest is not required. Having said that, we are seeking the accountability from the every government where students are protesting. And I was trying to raise one more concern here, which allow me to raise, that media is also being very selective. When students were protesting in Jantar Mantar, media was busy trying to find out a foreign angle, foreign funding angle. When they are protesting at Jharkhand, I don't think media is trying to find any foreign
1: angle. Sir, nobody is finding any foreign angle. And if you must draw that comparison, let me also remind you that these children in Ranchi are sitting there peacefully. They are not pelting stones, and I'm not saying that students were pelting stones. Those students were overtaken by criminal elements. These young men and women in Ranchi are not allowing any criminal elements on their stage or any political elements also on their stage. But let me bring in Pradeep Bhandari, because Pradeep Bhandari, if you think that you are going to capitalize on what is happening in Ranchi, listen to these two young men. Rajesh and Ankit keh rahe hain, hame nahi chahiye bhai koi rajneeti. Hum yahan rajneeti ke liye nahi aaye, hum nyay ke liye aaye hain. To yahan pe aapke rajneeti roti नहीं सीख सकती।
6: हमें यहाँ पे राजनीतिक रोटी सेकनी भी नहीं है पद्मजा जी, पर हम यहाँ पे न्याय की बात कर रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं उनकी आवाज झारखंड के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी कब सुनेंगे? Rahul Gandhi has a time to launch a book but not call his chief minister and say that agree to the demands. They're not even asking for a resignation. They're only asking for the cancellation of the examination and CBI probe. What are they fearing for a CBI probe? Just because of some top neta of the Congress or JMM will be caught. Rahul Gandhi has a time to go to Uttar Pradesh but he does not have a time to go to Jharkhand. And is it just because they belong to the people of Bharat? They are sons and of laborers, kisan, mazdoor ke bete hain. Isliye yahan pe koi five star actress nahi aayega. Just because they do not pay 10 lakh rupees of rent in GK1, just because they do not have quote unquote Bollywood celebrities coming and celebrating and influencing and amplifying their content. That is why the Congress party will not come, or the Congress has not got funding for foreign quote unquote Akash. That's why he's not going to Jharkhand. I'm appalled that Ashwini Mishra on the show has called up them as foreign agents. अरे भैया नॉर्मल छात्र वहां पे आपसे न्याय की बात कर रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर नहीं है, वो पुलिस वालों को पीट रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं है, वो छात्र है. वेयर इज गॉड डैम राहुल गांधी? वेयर इज राहुल गांधी? And on the show, you can ask questions to BJP 344 days. But today it is your accountability. क्या करोगे आप? स्कीमें गिना रहे हो वहां पे, स्कीम गिना रहे हो. 1, 2, 3, 4 बच्चे वहां पे छात्र गर्मी वहां पे बारिश के अंदर वो भीगा हुआ है. किसान का बच्चा है वो, किसान का बच्चा, और जीके का बच्चा नहीं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है. इन्फ्लुएंसर रील नहीं डाल सकता वो. वहां पे हिंदुओं के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, भारत के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, मोदी के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, राजनीतिकरण नहीं कर रहा, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट, आई कंप्लीटली अग्री, वी डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, बट वॉट अपॉइंट्स मी एज एन इंडियन एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ दैट दीज हिपोक्रिटिकल कांग्रेसीज आर नॉट इंप्लॉइंग द मॉरल स्टैंडर्ड्स इन द स्टेट, दे आर ओनली आस्किंग फॉर कैंसिलेशन, दे आर नॉट इवन आस्किंग फॉर अ पॉलिटिकल रेजिग्नेशन एंड अ सीबीआई प्रोब, इट्स अ लिमिटेड डिमांड।

0: महुआ माझी, महुआ माझी, महुआ माझी, रिस्पॉन्ड
1: जी। देखिए ऐसा है कि आज जिस तरह से पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपको पता होगा अभी एक हफ्ता पहले।
0: एक सेकंड, राजेश और अंकित कुछ दिखा रहे हैं, राजेश और अंकित कुछ दिखा रहे हैं। महुआ जी बिफोर यू रिस्पॉन्ड, राजेश और अंकित कुछ बोल रहे हैं, बोलिए राजेश।
2: पानी भरा हुआ इसमें, पूरे मैदान में पानी भरा हुआ मैम, पूरे मैदान में पानी भरा हुआ है। ये थोड़ा सा ऊंचा वाला जगह जहाँ हम लोग बैठे हुए एकदम जमीन पे बैठे हुए मैम, देख सकते हैं, ये पूरा देख रहे हैं मैम, देख पा रहे हैं, पूरा पानी भरा हुआ मैम, पूरा पानी भरा हुआ है। और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है मैम, रात में तो खूब बारिश होती है मैम, अभी कुछ देर के लिए बारिश छुटी हुई है, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी मैम, देख सकते हैं पूरा मैदान में पानी भरा हुआ मैम, अब देख सकते हैं उस तरह से छात्र भी उधर हर जगह पे पानी भरा हुआ है मैम।
0: महुआ जी कम से कम इनके लिए एक यहाँ पर टेंट तो लगवा दीजिए,
1: ऐसा है।
0: जंतर मंतर पे सब सुविधा थी, खाना था, सब कुछ था, बहुत अच्छी बात है। फंडामेंटल राइट इज प्रोटेस्टिंग एज लॉन्ग एज इट्स पीसफुल।
1: परिस्थिति में है, मैं कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इनके साथ न्याय करेंगे।
3: कैसे न्याय करेंगी मैडम, मुख्यमंत्री को टेंट लगाने के लिए वहाँ पे आने की जरूरत नहीं है मैडम। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप हमारी जो अकाउंटेबिलिटी थी हमने एक्शन लिया, यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री के साथ मीडिया ने सवाल पूछा, वो हंस रहे बोल रहे करेंगे,
1: न्याय की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि भविष्य में कभी भी उनका पेपर
3: आर दे पेंटिंग स्टोन्स नो, आर दे बीटिंग अ पुलिसमैन नो, आर दे आस्किंग फॉर अ भारतीय जनता पार्टी और सम अदर पर्सन टू कम देयर नो, देन माय पॉइंट इज व्हाई आर स्टूडेंट्स दे आर नॉट गेटिंग जस्टिस जस्ट बिकॉज इट इज टिरनी ऑफ कन्वीनियंस ऑन दिस लॉबी, जस्ट बिकॉज दे आर पीपल हु बिलोंग टू विलेजेस ऑफ द कंट्री एंड नॉट लाइक कोट एंड कोट लैटिन प्लेसेस वेयर दीस ऑपोजिशन पीपल कैन कम।
2: जो व्यक्ति जिसने भी एग्जाम पास किया है, हमारे छात्रों की मांग है, हम सभी की मांग है, एकदम तत्काल रद्द होना चाहिए, ये न्याय होगा। हमारी मांग है कि जो भी दोषी है उन पर निष्पक्ष जांच करके उनकी सजा होनी चाहिए, हमारा न्याय होगा। क्योंकि पेपर लीक यहाँ पर एक आज की समस्या नहीं है, जड़ जमा चुका है। इससे पहले भी हम लोग सीजीएल और जेपीएससी में कई आंदोलन करके रद्द करवाते रहे हैं एग्जाम, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया। सोल्यूशन तब होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री स्तर के व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि आप चाहते हैं निष्पक्ष न्याय हो।
0: And it's a very simple demand that these young men and women have been raising. There should be a central investigation, a CBI investigation, and more importantly, this is not just about a paper leak. It is about allegations that jobs are being sold. Do you realize that you've got the futures of these young men and women which are at stake over here? I also want to bring in Devendra Nath Mehto. He's a student leader who's also parallelly been sitting on a hunger strike now. Devendra ji, hamare saath is waqt. जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रिमेंबर द स्टूडेंट सेड वी डू नॉट वॉन्ट टू हैव एनी पोलिटिकल लिंकेजेस, सो दे हैव रिमूव देयर स्टेज, दे आर सिटिंग सेपरेटली फ्रॉम देवेंद्र नाथ मेहतो। दीज पैरेलल एजिटेशंस कंप्लीटली फॉरगॉटन, कंप्लीटली अनसीन बिकॉज ऑफ द टिरनी ऑफ डिस्टेंस। देवेंद्र नाथ जी, आप क्यों अनशन पर हैं, आपकी मांग क्या है?
4: 2 अगस्त से हम जल और अन्न को त्याग दिया है, क्योंकि 21 जुलाई से जो जांच हो रही है उसे बहुत गड़बड़ी पाई गई। एल्स अंते का रिजाइन भी हुआ, कारण लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सरकार के तरफ से जो कार्रवाई अभी तक होना चाहिए सब नहीं हो पाया। हम लोग का डिमांड है जेपीएससी जेएसएससी पर कंप्लीट रिफॉर्म करें, क्योंकि यहाँ दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट और रांची का प्रोटेस्ट में अंतर है। वो मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस नीट का एग्जाम का पेपर लीक था। मैं 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी में कई बार पेपर लीक हो चुकी है, और कई कई एग्जाम का ओएमआर घर से भर करके जमा कर रहे हैं, या पूर्णांक से भी ज़्यादा मार्क्स दे करके मेरिट लिस्ट में लाया जा रहा है। क्वालिफाइंग पेपर को भी मेरिट में ऐड करके मैंने पूरा धांधली चल रहा है, जितना हो सके पूरा व्यवस्था ही बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पूरा व्यवस्था सड़ गया, चौपट हो गया है, तो इसीलिए आज हम लोग हंगर स्ट्राइक में आ गए हैं। और आज दिसम गुरु शिवु सोरेन जी का पुण्यतिथि है, और दिसम गुरु शिवु सोरेन अलग झारखंड राज्य के लिए पूरा जीवन भर संघर्ष किया, गरीब के लिए, न्याय के लिए आंदोलन किया। अगर वो गुरुजी आज होते हम लोग के बीच तो हम लोग के साथ आंदोलन कर रहे होते। आज उनके पुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है और हम लोग उनके पिताजी के रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं।

0: अगर मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी को आदर्श मानते हैं, अपने पिताजी के मार्ग पर चलते हैं, तो कृपया हमारे बातों को सुने, हमारे मांगों को पूरी करें। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये झारखंड के लाखों युवाओं की आवाज़ है, जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये उनकी आवाज़ है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और इच्छा रखते हैं ईमानदारी से परीक्षा हो। ये आवाज में कई माओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कोई पिताओं का पसीना है, कोई अभिभावक का संघर्ष है। ये लाखों लोगों की आवाज है। मैं ये
1: देवेंद्र जी,
0: बात
1: आप
0: शुरू
1: कब
0: से
1: तक
0: कह
1: इस
0: रहा हूँ।
1: अनशन पे रहेंगे? क्योंकि
0: ये जो मेरा
1: अभी तक कोई
0: चादर,
1: सरकार से अगर नहीं आया है, अगर अगला 1 हफ्ता 2 हफ्ता कोई नहीं आया, तो फिर आप कब तक रहेंगे?
0: जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, अगर नहीं आएंगे बात करने, तो मैं जो चादर ओढ़ा हूँ सफेद कलर का है, ये मेरा सफेद कलर का चादर क्यों न कफन में बदल जाए। लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मेरा झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का इतिहास रहा है, तभी भी मैं अधूरा में नहीं छोड़ा हूँ। चाहे सीजीएल को भी हमने रद्द कराया था और लाठी हम पर बरसी थी, 35 FIR है सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हमारा, और हम लोग जेल भी जा चुके हैं। तो अधूरा रास्ता में नहीं छोड़ूंगा, चाहे क्यों नहीं है मेरा सफेद चादर कफन में बदल जाए। आज मेरा हालत बहुत बुरी है, अभी मेरा सलाइन चढ़ रहा है, आप लाइव में देख रहे हैं, लाइव में ही मेरा सलाइन अभी भी चढ़ रहा है, और मेरा पूरा बदन में दर्द है, शुगर और बीपी बहुत डाउन हो चुका है। डॉक्टर बोला सलाइन नहीं लोगे तो एडमिट करेंगे, तो हम एडमिट होने से अच्छा हम सोचे आंदोलन स्थल पर ही सलाइन लेना अच्छा रहेगा, और हमने सलाइन को एक्सेप्ट किया है। बाकी जल और अन्न दोनों को त्याग किया है अभी।
1: देवेंद्र नाथ जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप झारखंड के सोनम वांगचुक हैं। अगर सोनम वांगचुक खुद आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? या जो जो सोनम वांगचुक के साथ एक मंच पर आए थे, उनको आप क्या कहेंगे?
0: जी बिल्कुल, सोनम वांगचुक सर का प्रेरणा से हमने ये बड़ा कदम उठाए हैं, क्योंकि हमको लगा सोनम वांगचुक सर का हंगर स्ट्राइक से अगर केंद्र की सरकार घुटने टेक सकती है, तो हम छात्र लोग को न्याय क्यों नहीं मिल सकता है। और सोनम सर से मेरा एक आग्रह होगा, अगर ये वीडियो हम तक तो पहुंच रही है, तो कि हम सोनम सर आपके प्रेरणा से इतना बड़ा कदम उठाए हैं, और इसका असर पूरे संपूर्ण झारखंड के साथ देश पर असरदार हुई है, देश का केंद्र बिंदु बना है यह प्रोटेस्ट। मेरा हालत भी बहुत नाजुक होती जा रही है, सरकार अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है, तो कृपया करके वीडियो कॉल में, और हो सके तो आप हमारे बीच आइए। आप देश के छात्रों को न्याय दिलाए हैं, एक बार पूरा झारखंड के लाखों युवा आपसे न्याय दिलाने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो
1: बउआ
0: आपसे
1: जी,
0: हम आग्रह कर रहे
1: एक
0: हैं
1: छोटा सा आग्रह है, बस आके बात तो
0: कि आप
1: सुनिए।
0: लोग, और आप लोग पूरा चैनल के सभी टीम से भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी पहल करिए, और सोनू मांगचंद सर से एक बार लाइव में बात करा दीजिए। हम पूरा आप लोग का चैनल की टीम से हम आग्रह करते हैं।
1: महुआ जी, एक मुख्यमंत्री गुरुजी की आज
2: जी
1: मौके पे, आज ये सब बच्चे जो महतो हैं देवेंद्र नाथ जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार आ करके मिल तो सकते हैं, बात तो सुन सकते हैं।
2: देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं, ये जितने भी छात्रों की मांगे हैं, आपकी मांगे हैं, उस पर ऑलरेडी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हर दोषी को वो सजा दिलाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई, जांच हो रही है, और इस बार वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के मूड भी नहीं है। और जो गलतियां पिछली सरकारों में हुई है, या वो जो घुन लगा हुआ था, वो सिंडिकेट जो अभी भी वो अंदर अंदर कार्य कर रहा होगा, उस सिंडिकेट को खत्म करके ही वो दम लेंगे। और मैंने तो केंद्र सरकार से भी ये आग्रह किया था राज्यसभा में कि जिस तरह से आज गुजरात में कहिए, उड़ीसा में कहिए, दिल्ली में कहिए, पूरे देश में कहिए या झारखंड में कहिए, जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हो रही है, इसके लिए केंद्र सरकार कोई कठिन कानून बनाए जो कि पूरे देश में लागू हो और इस तरह की हरकत करके भविष्य बर्बाद करने के लिए
3: झारखंड का युवा देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा। ये किसान का बेटा वहाँ पे बैठा है, आपके माखों से आंसू नहीं आ रहे, वहाँ पे मजदूर का बेटा आपके माखों से आंसू नहीं आ रहे, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ये सब करने का प्रयास कर रही है। आप लोग सब गरीब लोगों के बच्चे और बड़े बड़े अमीरों के बच्चे नहीं, इसलिए आपके मुंह से
2: मैंने भी पीएचडी किया है,
3: आपने एमबीए क्यों, कुछ नहीं किया, बच्चा न्याय मांग रहा है, वो एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की बात कर रहा है, सीबीआई प्रोब की बात कर रहा है,
2: बिल्कुल न्याय मिल रहा है, न्याय किया जा रहा है उनके साथ,
3: होगी सीबीआई प्रोब,
2: आप बात को गलत दिशा में मत छोड़िए,
3: वो भाजपा का बच्चा नहीं है, वो कोई बड़े इंसान का बच्चा नहीं है, आप लोगों के जेएमएम का बच्चा नहीं है, वो
2: हर तरह से उन पर,
3: कब होगी सीबीआई प्रोब, कब होगा एग्जामिनेशन कैंसिलेशन, वो एमआरसी शीट जो है वो
2: बेटी लगा दिया गया है,
3: खरीद फरोख्त हो रही है, वो 10-10 साल से मेहनत करते हैं डीएसपी बनने के लिए, कुछ बनने के लिए
2: ला रही है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी भविष्य में,
3: ऐसे एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन देम, दिस इज हाउ दे ट्रीट द पीपल ऑफ द कंट्री, बट दे हैव जीरो एम्पैथी, दे हैव जीरो कंसर्न, दे आर आस्किंग फॉर बेसिक डिमांड्स आउट देयर, दे हैव इवन केप्ट द बीजेपी एंड अदर पार्टीज अवे फ्रॉम देयर प्रोटेस्ट,
2: बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी,
3: मैडम दे आर सन्स ऑफ फार्मर, दे आर डॉटर्स ऑफ फार्मर्स एंड पुअर लेबरर्स, द पीपल ऑफ झारखंड एंड द यूथ ऑफ झारखंड एंड द एंटायर कंट्री सीकिंग व्हाट हैज राहुल गांधी साइलेंस एंड योर कॉम्प्लिसिटी डन।
1: Let me bring in Ankit and Rajesh back.
2: Har rajya mein jaake
1: chhap. Okay, you know what will happen is the more politicians speak, there will be more of tutu, meme and finger pointing. अंकित और राजेश, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आज जानते भी नहीं है, सच बात यह है कि हमने भी जब पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि जो जंतर मंतर में डिमांड थी और जो झारखंड में डिमांड है वो बिल्कुल ही अलग है। वहां पर लोग ये हैं जो कि कह रहे हैं कि नौकरियां बिक रही हैं, यहाँ पेपर लीक का मसला नहीं है। पहले तो लोगों को बताइए कि हुआ क्या है कि आपके 99.314% मार्क भी आते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि झारखंड में किसी को नौकरी नहीं मिलती है इतना मार्क आने के बाद?
4: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है, और झारखंड में पेपर लीक नहीं है, झारखंड में सीट बेचा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सरकार की जो जांच एजेंसी है उसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पर तो भविष्य बेचा जा रहा है, मेहनत बेचा जा रहा है, संघर्ष बेचा जा रहा है। तो माननीय मैडम से हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, नो डाउट मुख्यमंत्री जी जो भी कर रहे हैं उससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारी जो मांग है, पहले रद्द कीजिए फिर सीबीआई जांच कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, एकदम क्लियर कट सीट बेचा जा रहा है। मैम यही इसमें जानते हैं, मैम टोटल 120 क्वेश्चन मैच किया था आउट ऑफ, जैसे मैं समझा देता हूँ, तीन पेपर होते, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। पेपर वन में इंग्लिश एंड हिंदी था, क्वालिफाइंग पेपर टू लैंग्वेज पेपर था जो ओरिजिनल पेपर था, और पेपर थ्री जो जीएस पेपर था उसमें 150% का एग्जाम हुआ, उसमें से 120 क्वेश्चन मिले एकदम हूबहू, जो रटवाया गया था वही मिला, यानी 80% क्वेश्चन मिला। और जानते मैम सीआईडी ने क्या बोल दिया, क्योंकि पहले सीआईडी की टीम ने सही जांच की थी और उन्होंने बताया कि 120 क्वेश्चन मिला आउट ऑफ 150, यानी 80% क्वेश्चन, और जब जैसे सीआईडी टीम को बदला गया उन्होंने बोल दिया फ्यू क्वेश्चन। मैम मैं पूछना चाहता हूँ, आज यहाँ पे सांसद महोदया भी बैठी हुई है, मैम आप बता दीजिए क्या 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से फ्यू क्वेश्चन होते हैं? इज दिस फ्यू क्वेश्चन, इज दिस फ्यू क्वेश्चन, और ये
1: अगर
2: ऐसा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर कोई स्टेप लेंगे। नहीं जी बोलिए, अगर ऐसा है आपको संतुष्टि नहीं है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और वो आप लोग जो चाहते हैं वही
3: सब कार्यक्रम होंगे उसके बाद लेंगे। द कंट्री इज वॉचिंग how the poor kids out there are asking for a very minimal demand which is not even political, Padmaja ji, it is a basic demand for justice, and look at the hypocrisy of Rahul Gandhi and the Congress and the JMM which is governing there, that leave apart even seeking to the students, they've not even met the students once, not even provided them basic facilities where they can even protest, neither have they given cognizance to them, and the Congress spokesperson here is looking at quote unquote videshi angle. Now, how hypocritical and how much do you hate the people of the country? How much do you hate the poor people of this country? Just because they are not a part of your ecosystem, you will not even listen, Ashwini. even Hitler would have died and looking at you.

0: न्याय नहीं मिलेगा तो सिस्टम हिलाओगे। झारखंड में छात्र को न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल कैन गो टू अ जिम, राहुल कैन गो टू अ फाइव स्टार रेस्टोरेंट, राहुल कैन लॉन्च अ बुक, राहुल कैन इंसल्ट साधुस, राहुल कैन हैव हिज इकोसिस्टम गो टू जंतर मंतर। यू नो वर्ड कॉकरोच देयर हैज बिकम एन अब्यूज, द वर्ड कॉकरोच टुडे हैज बिकम एन अब्यूज बिकॉज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड इंडिविजुअल्स लाइक देम।
1: Our government is not selective.
0: Arre, your government, government is not even there. God knows where is your government. Even if government exists, that only people don't know in Jharkhand.
1: How CBI
0: are trying to even infiltrate
2: the protest. Let Ashwini finish.
1: Investigate the issue.
3: Ma'am.
2: Yes, go on, Mr. Mishra. Go on. Finish your point.
1: Yeah, so point is BJP should not speak about the moral values about the student when you have Lathi Charge.
2: Arre, sir, let the BJP not speak. Answer just these children who are sitting there. Answer Ankit. You don't owe the BJP nothing. But you at least owe an answer to the people who have voted for you. Presumably, you are in government because these kids would have voted for you. Ankit. Ankit.
3: Ma'am, main sare yahan teenon partiyan baithi hui jo kahin na main roop se Jharkhand mein hai. Main sabse puchna chahta hu, ye kiska responsibility hai? पेपर लीक होने में क्या सबकी सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ठीक हो पेपर लीक होना? क्या सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग जब भीग रहे हैं तो सब लोग साथ आए, हम लोगों को टेंट का प्रोवाइड कराए? राहुल गांधी वहां पे बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और तमाम तरह के चीजें चला रहे हैं, क्या वो झारखंड नहीं आ सकते हम बच्चों के साथ? क्या वो यहाँ पे गाइडलाइन नहीं जारी कर सकते अपने योगी गवर्नमेंट को कि बच्चों का बात को सुना जाए? लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैम, मैं बीजेपी से भी उतना ही खपा हूँ जितना कांग्रेस और जेएमएम से हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमें ठगने का काम किया। मैम, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो फेयर सिस्टम मांग करता हूँ, आप लोग राज कीजिए। हम मना किए क्या? हमें क्या चुनाव लड़ना है क्या? मैम, हमें चुनाव होना कुछ नहीं लड़ना है, बस हम लोग का जो मांग है जेएससी में जितने भी गड़बड़ियां होंगी सब में जांच कराई जाए, टीडीपीएल कंपनी ने जो भी एग्जाम कराई है सबको रद्द किया जाए, 14 JPSC और 11 to 13 JPSC को भी बढ़िया से जांच करा के उसको भी रद्द किया जाए। एकदम स्पष्ट मांग है मैम, और जब तक हमारा मांग नहीं माना जाएगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है।
1: और
3: हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं, बारिश कुछ नहीं कर पाएगी हम लोग।
4: एक
1: सीबीआई
3: और ईडी से करवाई जांच, पता चल जाएगा कौन कौन इन्वॉल्व है।
2: ओके, 30 सेकंड मिस्टर मिश्रा, देन प्रदीप भंडारी, आपसे भी उतने ही खपाएं। अश्विनी मिश्रा पहले आप बताइए, फिर प्रदीप भंडारी।
1: पद्मजा जी, चीफ मिनिस्टर हैज गिवन द एश्योरेंस अबाउट द इंक्वायरी, बेस्ड ऑन द इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, वट एवर द रिजल्ट, वट विल बी द आउटकम, दे विल कैंसिल द एग्जाम इफ रिक्वायर्ड, इफ इट कम्स अंडर द इंक्वायरी। बट आई डोंट थिंक द सीबीआई एंड ईडी इज अ जेन्युइन डिमांड, बिकॉज सीबीआई एंड ईडी हैज बीन यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल वेंडेटा बाय द बीजेपी, एंड वी हैव सीन हाउ दे हैव जेल्ड द चीफ मिनिस्टर विदाउट एक्चुअली कन्विक्टिंग ऑन एनी केस।
2: अरे आप अब ये लड़कों को आप कह रहे हैं कि जेन्युइन डिमांड नहीं है, अब आप उनको बताएंगे कि उनको क्या डिमांड रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? अंकित बताइए। बताइए अंकित, सीबीआई ही क्यों? सीआईडी की जांच चली रही है ना, क्या प्रॉब्लम है?
3: बताता हूँ मैम, सीआईडी से हम लोग पूर्वाग्रहित नहीं थे कि सीआईडी अच्छा जांच नहीं कर सकती है। सीआईडी ने अपना मुंह खुद काला किए, खुद अपना ट्रस्ट को ब्रिज किए उन्होंने। जब उन्होंने जेएससी सीजीएल के मामले में जांच किया तो उनके जांच को दबा दिया गया, क्योंकि सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाली है, उसके अंडर आने वाली है, तो इस पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर होती है मैम, जिसकी वजह से सीआईडी अच्छे से अपना जांच तो करना चाहती है लेकिन जांच नहीं कर पाती है, और इसका सारा काला चिट्ठा दिख गया जेएससी सीजीएल में मैम। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सीआईडी जांच ना करे और सीबीआई और ईडी जांच करे, और इसमें जब भी तकलीफ हो तो मैं कह रहा हूँ 5 sitting judge, कितना 5 sitting judge, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जज हो और झारखंड हाईकोर्ट के भी जज हो, उनके निगरानी में जांच करवाया जाए, और जो भी जांच हो उसका पर डे पता चलना चाहिए हम लोगों को, अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
2: क्योंकि मैं एक मंत्री हैं, एक एमएलए हैं, उनकी बात सुन रही थी अभी दिन में, दीपिका पांडे जी शायद उनका नाम है, वो कह रही थी कि सीबीआई में भी क्या ही हो जाता है, सीबीआई अगर जो सेंट्रल एजेंसी है वो जांच करेगी तो उस पर इतना भरोसा क्यों है आपको अंकित? हो सकता है वो जांच भी खराब हो जाए।
3: मैम, उसके लिए हम लोग फास्ट ट्रायल कोर्ट का भी डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ सीबीआई का डिमांड नहीं कर रहे हैं मैम, फास्ट ट्रायल कोर्ट का भी डिमांड कर रहे हैं, जिसमें 90 डे के अंदर हम लोग का सारा चीज उसमें क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं होता हम लोग फिर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे।
0: मैडम, वी ब्रॉट अ लॉ फॉर अ फास्ट ट्रैक कोर्ट इन 3 months, द एजुकेशन मिनिस्टर टुक मॉरल अकाउंटेबिलिटी एंड रिजाइंड, every action was taken in a time bound probe, there the protesters are not even asking for a resignation, and you have the Congress spokesperson here even trying to discredit the post protesters just because it does not belong to his lobby. And I question Rahul Gandhi, who speaks about the students, why is he apathetic?

0: to the students in Jharkhand just because they are laborers' son, they belong to SC community, OBC community, and poor people's community. How much do they hate the people of the country? This man Mishra, Ashwini Mishra, comes on the studios and saying BJP, Congress, not once is he saying that Rahul Gandhi will speak up on the issue and give a call to Jharkhand Chief Minister Hemant Soren and ask for a CBI probe. Agar aapko system pe hi nahi vishwas hai, to kaho desh pe vishwas nahi hai, na Supreme Court pe vishwas, na Supreme Court monitored probe pe vishwas. Kis pe vishwas hai? Sirf Congress party ke ecosystem pe vishwas hai kya? Aur ya videshi chanda nahi mila, isliye Jharkhand nahi ja rahe ho.
1: And Ashwini Mishra, I genuinely have only one question, and I think the Chhatro Ki Goonj is an excellent initiative. You want to harness the youth power, you want to have that listening post where all the youth can come and express their issues, express their fears, their hopes and dreams. Why can't the Chhatro Ki Goonj head to Ranchi next? What is so pressing in Prayagraj? I genuinely want to understand, on the 8th of this month, what is happening in Prayagraj instead of Ranchi?
2: Are you not aware of the number of paper leaks happened in Uttar Pradesh, Padmaja ji? Are you not aware of the exam?
1: Are you not aware of the jobs being sold in Ranchi?
2: So, Padmaja ji, as my chief minister from Ranchi already spoken that they are investigating the issue. If they have a problem with one agency,
1: अरे आप जाकर के investigation तो UP में भी हो रहा है ना, पर आप लोगों की बात सुनना चाहते हैं ना, बच्चों की बात सुनने के लिए आप छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तो सुनिए उनकी बात जाके।
3: अगर CID से जांच करानी है तो फाइव
0: जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा वहाँ झारखंड नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का सिंहासन जो है ना विपक्ष का वो भी हिलने वाला और नीचे चले जाओगे, इतना ज्यादा घमंड आ चुका है। शर्म आनी चाहिए, देश के नागरिकों के, देश के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझते हो, ये तुम्हारी सच्चाई है। जॉब नहीं मिलेगा तो सिस्टम मिलेगा, हाँ झारखंड में मिलेगा, हाँ हर जाके हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, शर्म आनी चाहिए। I'm ashamed that I'm doing this. I'm into this political bickering this
2: पैसा
0: नहीं मिला इसलिए बाहर से, मैसेज नहीं है बाहर से जाने के लिए, कितने बड़े शर्म मेरे भाई। आप लोग इतना इस देश से नफरत करते हो जितना कोई नहीं नफरत करता है। आप 100 लोग जिंदा में बैठकर अपने परिवार के लोगों के आजू बाजू लोगों में रहना चाहते हो और झारखंड नहीं जाना चाहते। अश्विनी आप तो कम से कम एक, आप अश्विनी मिश्रा मुझे लगता है आप तो टीयर टू टाउन से आते हो, वहाँ असली भारत है, वो दाल चावल खा रहे हो,
2: अपनी बात करो।
0: अरे मेरी बात करी, मेरे एजुकेशन में, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट हुए, अकाउंटेबिलिटी भी, सब गिरफ्तार हुए, पेपर वापस से 11 लाख 12 लाख 22 लाख बच्चों ने दिया, पेपर भी वापस से हो गया। तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। वह किसान का बच्चा सड़क पर पड़ रहा है, न्याय मांग रहा है, वो बीमार हो रहा है, पानी में भीग रहा है, शर्म आनी चाहिए।
1: When you raise issues, and I'm not saying that issues should not be raised, when you raise issues, the same finger can be pointed back at you, saying you were quiet. For the longest time, nobody in the government engaged with Sonam Wangchuk, nobody engaged with the CJP. You thought that this is something that would pass. Same thing even Hemant Soren is doing, hoping that abhi investigation chali raha hai. Aapne kya bola? Ki bhai humne re-neat kara diya, humne 13 logon ko pakad liya, investigation chal raha hai. Wahi Hemant Soren bhi kar raha hai ki humne falan logon ko pakad liya, humne CID ka probe kara liya. All of this will also blow.
0: Aap Sonam Wangchuk se samajh lijiye, pooch lijiye wo kya chahte hai. Aaj Sonam Wangchuk ki raaye kya hai? Ye to Sonam Wangchuk tak ko nahi chhod rahe. हमने चलिए बाद में प्रोटेस्ट एंगेज किया, हमने किया तो सही, हमने एक्शन तो लिया, अब तो ये सोनम वांगचुक तक को नहीं छोड़ रहे। और इनके कोट अनकोट कॉकरोचेस तो इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि इट इज बिकम अब्यूज, बिकॉज दैट कॉकरोच एवरीबॉडी हैज गॉट अ टाइफाइड एंड नॉट अ सिंगल पर्सन इज गोइंग देयर जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम फार्मर्स सर, उनको पैसा वहां से नहीं आया।
1: Okay.
0: How much hypocritical can we be in this country?
1: I want to again bring it back to Rajesh and Ankit. Rajesh, मुझे ये बताइए कि अभी अगर आपको जो लोग, और आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे थे हजारों लाखों मिलियन 150 मिलियन व्यूज जा रहे हैं एक एक रील के, जिन लोगों ने वो बनाया, जिन लोगों ने वो देखा, अगर इस वक्त वो आपको देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहेंगे रांची में बैठ के?
4: बिल्कुल मैडम, सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं जो लोग हमारे इस मुहिम को नेशनलाइज किए। आप तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि झारखंड में शायद ही कभी

0: इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के नेशनल मीडिया कवर करती थी। पहली दफा है कि छात्रों की आवाज नेशनल मीडिया बनी। मैं सभी से कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी से कहना चाहूंगा कि यदि हम लोग देश को विकसित भारत का सपना जो है हमारा वो पूरा करना है तो हम लोगों को यहाँ लड़ना छोड़ना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। मैडम बोल रही थी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं माननीय से भी पूछना चाहूंगा, अभय तिवारी जो है मैडम वो जेएसएससी सीजीएल का मास्टर माइंड है, पूरा जांच हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन मास्टर माइंड को सीआईडी नहीं गिरफ्तार कर।
1: दे डू नॉट ट्रस्ट योर प्रूफ मैम, यू नो आइदर यू कैन कीप सेइंग द सेम प्लैटिट्यूड्स ओवर एंड ओवर, जांच चल रही है, न्याय होगा, हम सुन रहे हैं न्याय होगा, वहां बच्चे बैठ के कह रहे हैं हमें नहीं भरोसा है इस जांच के ऊपर, हमें नहीं भरोसा है कि न्याय होगा, व्हाई सच एन अवर्जन टू अ सीबीआई प्रोब?
2: देखिए ये सचमुच वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हमारे राज्य में और दूसरे राज्यों में होती रही हैं, इसलिए वो किसी को विश्वास नहीं कर पा रहा है। मैं उनका दर्द समझती हूँ। देखिए एक हफ्ता पहले गुजरात में भी यही पेपर लीक हुआ, वहाँ पे तो हमारी सरकार नहीं थी। अभी उड़ीसा में हुआ, वहाँ भी हमारी सरकार नहीं थी, दिल्ली में हुआ। तो ये जो है ना, यहाँ पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है। हम लोग को सब लोग मिलकर, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, सबको मिलके अब ये करना है कि हमें कैसे छात्रों के साथ हम न्याय, छात्रों को न्याय दिलाए, ये सबसे ज़रूरी है। और हम लोग इसमें बिल्कुल तटस्थ हैं, कोई तरह का पॉलिटिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही चाह रहे। दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको रिजल्ट दें, वो चाह रहे हैं कि उनको आश्वासन देकर सिर्फ नहीं आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बीमारी, ये कीड़ा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए।
1: आई विल अगेन रिपीट माई क्वेश्चन, जिन जिन बच्चों से मैंने बात की है ओवर द लास्ट 3 days, दे हैव सेड ओनली वन थिंग, वी डू नॉट ट्रस्ट द सीआईडी इंक्वायरी, वी थिंक अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वुड बी मोर ट्रस्टवर्दी।
2: सीआईडी जांच में पूरा नजर है कि किसी के,
1: मैम सीबीआई इंक्वायरी से इतनी एलर्जी क्यों है? क्या आपको लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी में आपके साथ न्याय नहीं होगा? क्या वो बायस्ड होगी? व्हाई आर यू सो अवर्स टू अ सीबीआई इंक्वायरी?
2: नहीं, हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
1: तो आप मान कर लीजिए ना,
2: तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया होती है कि जब सीआईडी जांच कर रही है तो उसके बाद ही सीबीआई जांच हो सकती है, तो जरूर ये प्रक्रिया भी कर दी जाएगी। अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से होगा।
1: ओके, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स।
3: लॉ टेल्स यू दैट अ सीबीआई प्रोब कैन बी ऑर्डर्ड इवन व्हेन अ सीआईडी प्रोब इज ऑर्डर्ड इफ द गवर्नमेंट आस्क्स द सेंटर टू डू सो, एंड इफ नॉट इन द गवर्नमेंट द कोर्ट्स कैन ऑल्सो ऑर्डर। आई विल कम टू द फंडामेंटल पॉइंट पद्मजा जी, दे आर नॉट बीजेपी वोटर्स आउट देयर, दे आर स्टूडेंट्स एंड यूथ एंड फ्यूचर of Jharkhand, they are selling the future of Jharkhand, aap future of Jharkhand ko girvi rakh rahe ho apni rajneeti ke liye, humko to jo moral accountability leni thi hum to law tak le aaye, what have you done? Nothing, seed bechi ja rahi hai, leak to chhodiye, seed bechi ja rahi hai, jiske 40 number aa rahe hain usko aap de rahe ho, paisa deke chal raha hai, isse bada dhoka ho nahi sakta, aur Rahul Gandhi shant kar bole rajneeti mat karo, rajneeti nahi kare, chhatr ki baat kar rahe hain yahan pe।
1: Mahua ji,
2: देखिए ऐसा है ना कि सीट बेची जा रही है नहीं बेची जा रही है, अगर पूरे देश में भ्रष्टाचार है तो ये बहुत गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं।
3: मैडम आपके झारखंड की बात हो रही है, देश की बात आपने 30 दिन पहले कर ली, कानून भी आ गया,
2: कार्रवाई कर सकते हैं ना। देखिए ये आज आप यहाँ पर, इसके पहले 17-18 साल तक भाजपा की सरकार थी, आप इतिहास उठा के देखिए, ये घुन लगा हुआ है, मैं मानती हूँ, जिसे ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी साफ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटा रहे हैं, ऐसे लोगों से निपट रहे हैं, और आने वाले दिन में
1: लेगेसी प्रॉब्लम
2: इसके लिए पूरी
3: तरह। हमारी 5 साल की सरकार के पहले इनकी 5 साल की सरकार थी, तो क्या ये कह रही है जब हेमंत सोरेन पहले सरकार में थे वो भ्रष्ट थे? Is she admitting that the earlier government run by Hemant Soren was a corrupt government?
2: वो नहीं थे, वो उस समय सरकार में नहीं थे।
3: That it was a corrupt government, which is fine. भाजपा की सरकार। Past is past. Please talk about present now. Please talk about what you will do for the future now. We got a law from the parliament which was our responsibility. What have you done?
2: Hemant Soren ji is doing
3: nothing, zero. Are you in the parliament? Did you meet Rahul Gandhi and ask him to speak to Hemant Soren? She is a member of parliament, right? Can you please tell me how many meetings have the member of parliament of JMM and Congress done with Rahul Gandhi on this? Has he taken out a minute also for the people of Jharkhand and the youth of Jharkhand?
2: Every day.
3: Where, which day?
1: One at a time, please. Can you please have Mahua Maji only speaking? Yes.
2: हर दिन उनके ऑफिस में मीटिंग होती है और वहाँ पर माननीय खड़गे जी के ऑफिस में, और उसमें सब तमाम इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है और ये चर्चा माननीय

0: मुख्यमंत्री जी के साथ भी होती है हम लोगों की, और वो लगातार इस पर आश्वासन दे रहे हैं, वो बहुत दुखी है और वो
1: उसको लेकर आपका नेता खेल सकता है, आपका नेता इंस्टाग्राम रील डाल सकता है, आपका नेता ये सब इंस्टाग्राम जेंसी एक्शन कर सकता है, वो जेंसी बच्चे के नायक की बात कर सकता है।
2: ठीक है अंकित, आखिरी में आप ही को बोलना चाहिए क्योंकि आप ही की आवाज पूरे देश को सुननी चाहिए। अंकित
3: मैम, स्पष्ट रूप से सांसद महोदय जी, मैं जानता हूँ कि ये जेएमएम के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के भी जो भी पैनल से बैठे हुए चाहे बीजेपी के बैठे हुए हैं, मैं सबसे कम्युनिटी सबको एक साथ में पहले कहना चाहता हूँ कि सर जहाँ का भी मामला हो मुझे नहीं पता है ना, ठीक है झारखंड का मामला इन भी स्टेट और कंट्री का बात कर रहे हैं, पूरा ऑल कंट्री का, अब ठीक है एक रोल लू लाया सर, एक लो लाइए, बढ़िया से काम कीजिए ताकि ये फ्यूचर हम लोगों का बर्बाद ना हो, पूरा देश का फ्यूचर बर्बाद ना हो। अब मैं आता हूँ झारखंड स्टेट से। मैम महुआ मांझी मैम, आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा मैम, मैं जानता हूँ कि आपका आपका बात जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी टालेंगे नहीं, एक बार कहिए मैम जेसीसी सीजीएल को क्यों मतलब वो ईगो का प्रेस्टीज ईगो बना लिए, मैं पूछना चाहता हूँ। मैम पता है हम लोग बहुत ऐसा नहीं है मैम कि हम लोग किसी पार्टी वगैरह का और भी कुछ नहीं,
0: मैं जानती हूँ,
3: पता है हेमंत सोरेन जी जेएसएससी सीजीएल को प्रेस्टीज इशू बना लिए मैम, मैं कह रहा हूँ, वो जब सब चीज जान रहे हैं कि इतना बड़ा करप्शन हुआ और वहीं से जुड़ा हुआ तार अजय अभय तिवारी और मनोज तिवारी का आया,
0: डीपीएल कंपनी का मैम
3: मैम मैम सने करने से क्या होगा मैम, ये बारिश में देख रहे मैम इस सने से पूरा नहीं होता है मैम।
2: You know, these are just ordinary people who are sitting on the streets, who are sitting in a stadium under the sky, an open sky in the rain, asking for a very small thing. Talk to us. Listen to what we have to say. If you really care for Chhatro Ki Goonj, you know where to find it. Hope that people are listening. Thank you very much, all gentlemen, and Mahua Manji.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: rena tu sataranga
1: jo hona hai wo to hona hi hai rangile tu sada muskura sada sada sada muskura
0: rang rang rang rang rang rangine rang rangine re de kaise bhi ho din rang bana rahe
2: boje paints rang bana rahe
3: octoroma manual winding चार लोगों के पास है
4: कुछ इससे भी अनोखा
3: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
6: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं
7: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके
6: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं Is it fire?
5: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ
8: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों
9: कुछ तो बात है इस तेल में
10: Another big story today after nearly an hour of questioning at the Sengepatti police station. Udayanidhi Stalin has been released by the police now. As he stepped out, he was greeted by a large gathering of DMK supporters who welcomed him with slogans and garlanded him. His release followed a day of political drama and high drama after he was shifted to Sengepatti amid heavy security and large crowds of party workers.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर
9: मसाला। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: खास बात।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: POK के firing range में खड़े हैं।
4: Just few inches away is POK.
3: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
5: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they bring.

0: तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर
2: मसाला। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
4: so many attacks,
3: the chaos and cries of desire.

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine. In France. In Italy.
3: At Srinagar.
1: I am in France.
4: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक.
7: बैठ सकता हूँ आपके साथ? खाइए ना प्लीज. आप कहाँ से हैं?
8: हरियाणा.
7: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
8: डेढ़ महीने पे.
7: आपकी फैमिली है?
8: और
7: बच्चे हैं?
8: 3 साल.
7: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
8: बहुत.
7: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
8: श्रीनगर तक अलाउड.
7: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है.
6: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो.

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
2: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
2: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
2: INS Vikrant.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
6: बैठ सकता हूँ आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
7: और
6: बच्चे हैं?
7: तीन साल।
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
7: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
5: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
1: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
2: so many attacks,
1: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
1: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right, and Center.
1: Hard facts.
3: War-struck country.
1: Hard questions.
3: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine. In France. In Italy.
5: At Srinagar.
3: I am Srinagar.
2: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom. Only on NDTV.
0: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
7: बैठ सकता हूँ आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
8: हरियाणा।
7: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
8: डेढ़ महीने पे।
7: आपकी फैमिली है?
8: और
7: बच्चे हैं?
8: तीन साल।
7: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
8: बहुत।
7: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
8: श्रीनगर तक अलाउड।
7: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
6: See, the sacrifice is unbelievable, you know.

0: रहा है। राइट,
1: हम लोग कुछ शौक थोड़ी ना मैम की बारिश में भीगते रहे। हम लोग अभी घर में होते हैं, हम लोग किसान का बेटे हैं, हम लोग हमारे घर में खेती होता है। अभी हमें अपने घर में खेत में मजदूरी करना था।

0: उस परीक्षा को एकदम सरकार ने एकदम दबाने का काम किया, जबकि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना चाहिए था। उसी जेएसएससी सीजीएल से सारा तार जुड़ा हुआ मैम, उसी से आज जेपीएससी तक पड़ा पहुंचा, समझ रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल में अगर उस दिन उन चोरों को पकड़ लिया जाता, पेपर माफियाओं को पकड़ लिया जाता मैम, तो आज जेपीएससी का ये हश्र नहीं,
1: जेपीएससी का ये हश्र होने का जो आप देख रहे हैं। 14 जेपीएससी लोग जितने भी है
0: सारे एग्जाम में आज धांधली हुआ है, वो एमआर को बाहर ला करके रंगा गया है। इसमें सारे के सारे अगर जिम्मेदार मेन रूप से देखा जाए तो जेएसएससी सीजीएल में, जितना भी एग्जाम हुआ चाहे वो जेपीएससी से चाहे म्यूनिसिपल हुआ, इन सारे एग्जाम में धांधली हुआ है मैम। आप समझ सकते हैं पीजीटी के एक एक सेंटर से 500-500 बच्चे का सिलेक्शन हुआ मैम, हाउ इज इट पॉसिबल, तो बताएगा
2: हाउ इज इट पॉसिबल महुआ जी। ये बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, सिर्फ इन दो बच्चों को बता दीजिए, ये भी किसान के बच्चे हैं, वहां पर मजदूर के बच्चे बैठे हैं, गरीब के बच्चे बैठे हैं।
3: नहीं सही नहीं, मैं इनसे,
2: ये इन्फ्लुएंसर भले सही ना हो, ये वायरल नहीं होंगे, ये इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे, ये टिकटॉक पे नहीं होंगे।
3: मैं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई की हूँ, नेट क्वालिफाई की हूँ, मुझे इनके इनका दर्द अच्छी तरह से पता है। कोई व्यक्ति जब महीनों की मेहनत से कोई तैयारी करता है उसके बाद इस तरह से उनके साथ हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि इनका कितनी दुख है, कितना तकलीफ है। लेकिन सरकार अभी गंभीर है, इतना मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो दोषी है हम लोग चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इतनी सजा मिले कि भविष्य में किसी की हिम्मत ना हो कि वो इस तरह से छात्रों के साथ खिलवाड़ कर सके। और हमारी सरकार साथ है, आप जो भी हुआ है बहुत दुखद था, बहुत दुखद है, हम लोग आपके, हमारी संवेदना आपके साथ है जी।
2: महुआ जी ये बारिश में बैठे हैं, इनसे कोई मिलने तक नहीं आया है, मुख्यमंत्री आवास 2 किलोमीटर दूर है वहां से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, हम सब कुछ सहते हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, जा क्यों नहीं रहे मुख्यमंत्री वहां से मिलने के लिए, बारिश में ये बच्चे बैठे हुए हैं
3: जी। बिल्कुल, आज गुरु जी की पुण्यतिथि है हमारे दिशम गुरु की, और वो गांव में है माननीय, तो मैं हम लोग चाहते हैं कि इनकी समस्या का वो जल्द से जल्द समाधान करें, कि कभी ये नौबत ही नहीं आए कि उनको इस तरह से अपना घर छोड़कर, अपना खेत छोड़कर इस तरह से धरने पर बैठना पड़े। उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, उसे और सुरक्षित बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं, हम लोगों से सबसे वो यही बोल रहे हैं कि देखिए आपको पता होगा कि विदेशों में ये पढ़े इसके लिए मरंग घूम के सम्मान दिया जा रहा है, गुरु जी क्रेडिट कार्ड योजना मैंने बताया, सावित्री बाई फुले, और हर तरह से इनको सुविधा देने के लिए वो बिल्कुल, और आपको पता होगा कि पिछले भाजपा के कार्यकाल में सेशन कितना लेट था और कितनी तरह के पेपर लीक और हर तरह की घटनाएं उस समय हुई थी। अंकित धीरे धीरे जो घुन लगा हुआ था उस सिस्टम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसको सुधार रहे हैं और काफी हद तक सफलता मिली है।
2: आप ही अपने मन की बात बताइए अंकित और राजेश,
3: था जो अभी वो क्लियर कर रहे हैं कि आने
4: मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा माननीय, इतना माननीय जो मैम बोले कि हम ये योजना लाए गुरु जी क्रेडिट योजना लाए, उनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए, हम उस एजेंसी को एग्जाम लेने का दायित्व दिए जो माननीय आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, उसे हम एग्जाम लेने का प्रभार दिए। इसके अलावे मैम को ये भी बोलना चाहिए था कि हम एक ऐसे आदमी को एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर बना दिए जो रांची में होटल में लीज लेता है, होटल को लीज लेता है और वहां पर बच्चों का भविष्य के साथ खेलता है, पेपर पढ़वाता है और पैसा के आधार पर नौकरी बेचता है, ये भी माननीय जी को बोलना चाहिए। और मैम अभी अभी महुआ मांझी मैम
3: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
4: सरकार का संवेदना बच्चों के साथ
3: बर्दाश्त
4: मैम बताइए आपका संवेदना मैम आपका आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का अगर संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता, हम बीजेपी से हैं मैम, बताइए हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम बीजेपी से हैं, हम कोई पार्टी वाला
3: छात्र हैं नहीं, आप
4: हमें जरा सा भी पार्टी का चीज
3: आप लोग
4: मैम सुनिए मेरा बात सुनिए मैम
3: आप लोग छात्र
4: मैम आप अगर बात सुन रहे तो मेरी बात सुनिए मैम, जिस समय हम लोगों को लगा ना कि हम लोगों को पार्टी जरा सा भी लगा कि कोई पार्टी का मंच बन रहा है, हम लोगों ने अपना मंच अलग कर लिया मैम, पता नहीं आपको क्या, आपको नहीं पता कि जेल के मंच से हम लोग अलग हो गए,
3: बिल्कुल पता है
4: मैम, आप हम लोग पे एलिगेशन लगा रहे हैं
3: जी बिल्कुल अलग,
4: कोई काम ढंग का नहीं हो रहा है,
3: आप लोग छात्र हैं आपके भविष्य की चिंता हमें,
4: मुझे मैम राजनीतिक रूप से मुझे बात करना नहीं आता,
3: आप निश्चिंत रहिए आपको आश्वासन देते हैं हम लोग भविष्य में,
4: आश्वासन क्या करेंगे मैम, कितना आश्वासन ले आज से आश्वासन मैम, आपने जैसे सीजन को बर्बाद कर दिया, हम लोग लाइफ को बर्बाद कर दिया,
3: इस बार हम भी आश्वासन दे सकते हैं
4: मैम, हम आपका आश्वासन क्या करें।

0: चाहिए।
1: देखिए कुछ लोगों की गलती के कारण आपका भविष्य
0: पार्सल वापस आ जाएगा। आज जेपीएससी में भी वही हाल हो गया, क्या आपके आश्वासन से हमारा भविष्य वापस आ जाएगा उस समय? मैम काम कीजिए, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आप लोग राजनीति जो कर नहीं कीजिए, हम लोग छात्रों को कोई मतलब नहीं है। परीक्षा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, विभाग होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट एजेंसी से एग्जाम लीजिए। ऐसा नहीं कि चोर चुहाड़ एजेंसी से आप एग्जाम ले लिवाते हैं, भविष्य खाता है।
1: इस बार हम लोग गारंटी देते हैं, हम लोग गारंटी देते हैं,
2: बार बार गारंटी मिली है इनको, एंड अगेन एंड अगेन, एंड एटलीस्ट नाउ दीज चिल्ड्रन हैव फोर्स्ड पीपल टू सिट अप एंड लिसन, अश्विनी मिश्रा, बिकॉज सो फार, एंड आई वांट टू ड्रॉ दैट डिस्टिंक्शन फॉर द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग राइट नाउ। You've got two young men, Rajesh and Ankit, who are sitting under an open sky. क्या ये सच है अंकित कि आपका जो वहां पर जो टेंट लगाया हुआ था उसको भी हटा दिया गया? क्या बिजली पानी खाना कुछ मिला है क्या वहां पे?
0: मैम पहले हटाने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन हम लोग बारिश में उस दिन भीग रहे थे बहुत ज्यादा मैम, सारे लोग हम लोग गुस्सा गए थे, टेंट वाला को मंगवाए थे मैम तो पुलिस बार बार अलाउ नहीं कर रही थी, हम लोग लड़ झगड़ के टेंट लगवाए मैम, तो अभी कोई उपाय से रहने लायक का मंच बन पाया मैम, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट है मैम, चूंकि हजारों की संख्या में भीड़ है मैम, तो लगभग 1500-2000 बच्चे ही अंदर रह पाते मैम, तो हम लोग बाहर ही रह जाते हैं मैम, कि बाहर से बहुत दूर दूर से छात्र आए, हम लोग तो यहाँ तो शुरू से हैं, हम लोग भीगना मंजूर है मैम, बस हमारा मांग मान लिया जाए।
2: यू नो अश्विनी मिश्रा, व्हेन दीज पीपल वर गेटिंग वेट अंडर एन ओपन स्काई, NSUI वाज डूइंग अ रेन डांस इन पटना व्हेन अ वाटर कैनन वाज यूज्ड ऑन देम। टुडे पटना इज बेयरली 6 hours drive from Ranchi. अगर आपकी NSUI पटना में मार्च कर सकती है, दिल्ली में मार्च कर सकती है, मुंबई में मार्च कर सकती है, भोपाल में मार्च कर सकती है, तो रांची में मार्च क्यों नहीं कर सकती सर? वहां पे तो आपको NSUI की जरूरत नहीं है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है JMM के साथ। आप वहां पटना में रेन डांस कर रहे हैं वाटर कैनन के सामने, यहाँ पे बच्चे ना, वहां बच्चे भीग रहे हैं, बिकॉज यू कांट इवन अलाउ देम टू पुट अप अ टेंट। If you can't do anything, at least listen to what they are saying.
3: Padmajaji, I think you answered the question yourself that why NSUI are not marching in Jharkhand, because there is our government and we are taking the matter seriously, and like Bharatiya Janata Party, who did not listen to the voices of students. Protest is a democratic right of everyone, and students are citizens first and they have a very right to protest. And I think Rahul Gandhi has become the voice of youth. He has awakened the youth to rise every issue in the country. And it doesn't matter whether the state belongs to Congress or BJP. It is students who's raising the concern, and those concerns should be addressed. I totally second that. The larger point here is we need to understand, Padmajaji, also understand that how BJP has treated the students. How did they lathi charge the students? How did they treated the students? They used pellet guns. They used whatnot. And now Modi ji is forgiving the student. Who should be getting the forgiveness? It should be the Modi ji who should be saying sorry.
2: Mr. Mishra, right now the people who are on the streets, right now, is there any student on the streets in Patna? No. Is there any student on the streets in Delhi? No. Is there any student on the streets in Bhopal? No. Where are the students on the streets? Is there any student on the street in Prayagraj? Why is your Chhatro ki goonj headed to Prayagraj on the 8th? Why aren't they headed to Ranchi? You go to Ranchi, you hear the Chhatro ki goonj in Ranchi on tomorrow.
3: Padmajaji, I in my starting statement itself that I said that there's a responsible government in Jharkhand and they are taking the necessary steps so that student protest is not required. Having said that, we are seeking the accountability from the every government where students are protesting. And I was trying to raise one more concern here, which allow me to raise that media is also being very selective. When students were protesting in Jantar Mantar, media was busy trying to find out a foreign angle, foreign funding angle. When they are protesting at Jharkhand, I don't think media is trying to find any foreign
2: angle. Sir, nobody is finding any foreign angle. And if you must draw that comparison, let me also remind you that these children in Ranchi are sitting there peacefully. They are not pelting stones, and I'm not saying that students were pelting stones. Those students were overtaken by criminal elements. These young men and women in Ranchi are not allowing any criminal elements on their stage or any political elements also on their stage. But let me bring in Pradeep Bhandari, because Pradeep Bhandari, if you think that you are going to capitalize on what is happening in Ranchi, listen to these two young men. Rajesh and Ankit keh rahe hain, hame nahi chahiye bhai koi rajneeti. Hum yahan rajneeti ke liye nahi aaye, hum nyay ke liye aaye hain. To yahan pe aapke rajneeti roti nahi sik sakti.
4: हमें यहाँ पे राजनीतिक रोटी सेकनी भी नहीं है पद्मजा जी, पर हम यहाँ पे न्याय की बात कर रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं उनकी आवाज

0: झारखंड के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी कब सुनेंगे? राहुल गांधी इज अ टाइम टू लॉन्च अ बुक बट नॉट कॉल हिज चीफ मिनिस्टर एंड से दैट अग्री टू द डिमांड्स. दे नॉट इवन आस्किंग फॉर अ रेजिग्नेशन, दे आर ओनली आस्किंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सीबीआई प्रोब. व्हाट आर दे फियरिंग फॉर अ सीबीआई प्रोब? जस्ट बिकॉज ऑफ सम टॉप नेता ऑफ द कांग्रेस और जेएमएम विल बी कॉट. राहुल गांधी इज अ टाइम टू गो टू उत्तर प्रदेश बट ही डज नॉट हैव अ टाइम टू गो टू झारखंड. एंड इज इट जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू द पीपल ऑफ भारत? दे आर सन्स एंड ऑफ लेबरर्स, किसान मजदूर के बेटे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई फाइव स्टार एक्ट्रेस नहीं आएगा. जस्ट बिकॉज दे डू नॉट पे 10 lakh rupees ऑफ रेंट इन जीके वन, बिकॉज दे डू नॉट हैव quote unquote Bollywood celebrities coming and celebrating and influencing and amplifying their content, that is why the Congress party will not come, or the Congress has not got funding from it with a foreign quote unquote Akash, that's why he is not going to Jharkhand. I'm appalled that Ashwini Mishra on the show has called up them as foreign agents. अरे भैया नॉर्मल छात्र वहां पे आपसे न्याय की बात कर रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर नहीं है, वो पुलिस वालों को पीट रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं है, वो छात्र है. वेयर इज गॉड डैम राहुल गांधी? वेयर इज राहुल गांधी? And on the show, you can ask questions to BJP 344 days, but today it is your accountability. क्या करोगे आप? स्कीमें गिरा रहे हो वहां पे, स्कीम गिरा रहे हो. 1, 2, 3, 4 बच्चे वहां पे छात्र गर्मी, वहां पे बारिश के अंदर वो भीगा हुआ है, किसान का बच्चा है, वो किसान का बच्चा और जीके का बच्चा नहीं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है. इन्फ्लुएंसर रील नहीं डाल सकता वो, वहां पे हिंदुओं के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, भारत के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, मोदी के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, राजनीतिकरण नहीं कर रहा, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है. इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट, आई कंप्लीटली अग्री, वी डू नॉट वांट एनीथिंग, बट व्हाट अपॉल्स मी एज एन इंडियन एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ दैट दीज हिपोक्रिटिकल कांग्रेसीज आर नॉट एम्प्लॉइंग द मॉरल स्टैंडर्ड्स इन द स्टेट. दे आर ओनली आस्किंग फॉर कैंसिलेशन, दे आर नॉट इवन आस्किंग फॉर अ पॉलिटिकल रेजिग्नेशन एंड अ सीबीआई प्रोब. इट्स अ लिमिटेड डिमांड.
1: महुआ माजी रिस्पॉन्ड
2: जी. देखिए ऐसा है कि आज जिस तरह से पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपको पता होगा अभी एक हफ्ता पहले.
1: एक सेकंड, राजेश और अंकित कुछ दिखा रहे हैं. महुआ जी बिफोर यू रिस्पॉन्ड, राजेश और अंकित कुछ बोल रहे हैं, बोलिए राजेश.
3: पानी भरा हुआ इसमें, पूरे मैदान में पानी भरा हुआ, मैम पूरे मैदान में पानी भरा हुआ है. थोड़ा सा ऊंचा वाला जगह जहाँ हम लोग बैठे हुए, एकदम जमीन पे बैठे हुए मैम, देख सकते हैं, ये पूरा देख रहे हैं मैम, देख पा रहे हैं, पूरा पानी भरा हुआ मैम, पूरा पानी भरा हुआ है. और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है मैम, रात में तो खूब बारिश होती है मैम, अभी कुछ देर के लिए बारिश छुटी हुई है, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी मैम, देख सकते हैं पूरा मैदान में पानी भरा हुआ मैम, अब देख सकते हैं उस तरह से छात्र भी उधर, हर जगह पे पानी भरा हुआ है मैम.
1: महुआ जी कम से कम इनके लिए एक यहाँ पर टेंट तो लगवा दीजिए.
2: ऐसा
1: जंतर मंतर पे सब सुविधा थी, खाना था, सब कुछ था, बहुत अच्छी बात है. फंडामेंटल राइट इज प्रोटेस्टिंग एज लॉन्ग एज इट्स पीसफुल.
2: परिस्थिति में है, मैं कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इनके साथ न्याय करेंगे.
0: कैसे न्याय करेंगी मैडम? मुख्यमंत्री को टेंट लगाने के लिए वहाँ पे आने की जरूरत नहीं है मैडम. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी जो अकाउंटेबिलिटी थी हमने एक्शन लिया. यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री के साथ मीडिया ने सवाल पूछा, वो हंस रहे बोल रहे करेंगे
2: न्याय की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि भविष्य में कभी भी उनका पेपर
0: आर दे पेंटिंग स्टोन्स नो, आर दे बीटिंग अ पुलिसमैन नो, आर दे आस्किंग फॉर अ भारतीय जनता पार्टी और सम अदर पर्सन टू कम देयर नो, देन माय पॉइंट इज व्हाई आर स्टूडेंट्स दे आर नॉट गेटिंग जस्टिस जस्ट बिकॉज इट इज टिरनी ऑफ कन्वीनियंस ऑन दिस लॉबी, जस्ट बिकॉज दे आर पीपल हु बिलोंग टू विलेजेस ऑफ द कंट्री एंड नॉट बिलोंग टू कोट एंड कोट लटन प्लेसेस वेयर दीज ऑपोजिशन पीपल कैन कम.
3: जो व्यक्ति जिसने भी एग्जाम पास किया है, हमारे छात्रों की मांग है, हम सभी की मांग है, एकदम तत्काल रद्द होना चाहिए, ये न्याय होगा. हमारी मांग है कि जो भी दोषी है उन पर निष्पक्ष जांच करके उनकी सजा होनी चाहिए, हमारा न्याय होगा. क्योंकि पेपर लीक यहाँ पर एक आज की समस्या नहीं है, जड़ जमा चुका है. इससे पहले भी हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी में कई आंदोलन करके रद्द करवाते रहे हैं एग्जाम, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया. सॉल्यूशन तब होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री स्तर के व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि आप चाहते हैं निष्पक्ष न्याय हो.
1: And it's a very simple demand that these young men and women have been raising. There should be a central investigation, a CBI investigation, and more importantly, this is not just about a paper leak. It is about allegations that jobs are being sold. Do you realize that you've got the futures of these young men and women which are at stake over here? I also want to bring in Devendranath Mehto. He's a student leader who's also parallelly been sitting on a hunger strike now. Devendra ji, hamare saath is waqt. जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रिमेंबर द स्टूडेंट सेड वी डू नॉट वॉन्ट टू हैव एनी पोलिटिकल लिंकेजेस, सो दे हैव रिमूव देयर स्टेज, दे आर सिटिंग सेपरेटली फ्रॉम देवेंद्रनाथ मेहतो. दीज पैरेलल एजिटेशंस कंप्लीटली फॉरगॉटन, कंप्लीटली अनसीन बिकॉज ऑफ द टिरनी ऑफ डिस्टेंस. देवेंद्रनाथ जी आप क्यों अनशन पर हैं, आपकी मांग क्या है?
4: 2 अगस्त से हम जल और अन्न को त्याग दिया है, क्योंकि 21 जुलाई से जो जांच हो रही है उसे बहुत गड़बड़ी पाई गई। एल के अंत का रिजाइन भी हुआ, कारण लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सरकार के तरफ से जो कार्रवाई अभी तक होना चाहिए सब नहीं हो पाया। हम लोग का डिमांड है जेपीएससी जेएसएससी पर कंप्लीट रिफॉर्म करें, क्योंकि यहाँ दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट और रांची का प्रोटेस्ट में अंतर है। वो मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस नीट का एग्जाम का पेपर लीक था। मैं 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी में कई बार पेपर लीक हो चुकी है, और कई कई एग्जाम का ओएमआर घर से भर करके जमा कर रहे हैं या पूर्णांक से भी ज़्यादा मार्क्स दे करके मेरिट लिस्ट में लाया जा रहा है। क्वालिफाइंग पेपर को भी मेरिट में ऐड करके मैंने पूरा धांधली चल रहा है, जितना हो सके पूरा व्यवस्था ही बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पूरा व्यवस्था सड़ गया, चौपट हो गया है, तो इसीलिए आज हम लोग हंगर स्ट्राइक में आ गए हैं। और आज भीष्म गुरु शिव सोरेन जी का पुण्यतिथि है, और भीष्म गुरु शिव सोरेन अलग झारखंड राज्य के लिए पूरा जीवन भर संघर्ष किया, गरीब के लिए, न्याय के लिए आंदोलन किया। अगर वो गुरु जी आज होते हम लोग के बीच तो हम लोग के साथ आंदोलन कर रहे होते। आज उनके पुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है और हम लोग उनके पिताजी के रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी को आदर्श मानते हैं, अपने पिताजी के मार्ग पर चलते हैं, तो कृपया हमारे बातों को सुने, हमारे मांगों को पूरी करें। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये झारखंड के लाखों युवाओं की आवाज़ है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये उनकी आवाज़ है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और इच्छा रखते हैं ईमानदारी से परीक्षा हो। ये आवाज़ में कई माओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कोई पिताओं का पसीना है, कोई अभिभावक का संघर्ष है, ये लाखों लोगों की आवाज़ है।
1: देवेंद्र जी, आप कब तक इस अनशन पे रहेंगे? क्योंकि अभी तक कोई सरकार से अगर नहीं आया है, अगर अगला एक हफ्ता दो हफ्ता कोई नहीं आया, तो फिर आप कब तक रहेंगे?
4: जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, अगर नहीं आएंगे बात करने, तो मैं जो चादर ओढ़ा हूँ सफेद कलर का, ये मेरा सफेद कलर का चादर क्यों न कफन में बदल जाए, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मेरा झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का इतिहास रहा है, तभी भी मैं अधूरा में नहीं छोड़ा हूँ। चाहे सीजीएल को भी हमने रद्द कराया था और लाठी हम पर बरसी थी, इस 35 FIR है सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हमारा, और हम लोग जेल भी जा चुके हैं। तो अधूरा रास्ता में नहीं छोड़ूंगा, चाहे क्यों नहीं है मेरा सफ़ेद चादर कफन में बदल जाए। आज मेरा हालत बहुत बुरी है, अभी मेरा सलाइन चढ़ रहा है, आप लाइव में देख रहे हैं, लाइव में ही मेरा सलाइन अभी भी चढ़ रहा है, और मेरा पूरा बदन में दर्द है, शुगर और बीपी बहुत डाउन हो चुका है। डॉक्टर बोला सलाइन नहीं लोगे तो एडमिट करेंगे, तो हम एडमिट होने से अच्छा हो सोचे आंदोलन स्थल पर ही सलाइन लेना अच्छा रहेगा, और हमने सलाइन को एक्सेप्ट किया है। बाकी जल और अन्न दोनों को त्याग किया है अभी।
1: त्रिवेंद्र नाजी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप झारखंड के सोनम वांगचुक हैं। अगर सोनम वांगचुक खुद आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? या जो जो सोनम वांगचुक के साथ एक मंच पर आए थे, उनको आप क्या कहेंगे?
4: जी बिल्कुल, सोनम वांगचुक सर का प्रेरणा से हमने ये बड़ा कदम उठाए हैं, क्योंकि हमको लगा सोनम वांगचुक सर का हंगर स्ट्राइक से अगर केंद्र की सरकार घुटने टेक सकती है, तो हम छात्र लोग को न्याय क्यों नहीं मिल सकता है। और सोनम सर से मेरा एक आग्रह होगा, अगर ये वीडियो हम तक पहुंच रही है, तो कि हम सोनम सर आपके प्रेरणा से इतना बड़ा कदम उठाए हैं, और इसका असर पूरे संपूर्ण झारखंड के साथ देश पर असरदार हुई है, देश का केंद्र बिंदु बना है या प्रोटेस्ट। मेरा

0: हालत भी बहुत नाजुक होती जा रही है। सरकार अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है, तो कृपया करके वीडियो कॉल में और हो सके तो आप हमारे बीच आइए। आप देश के छात्रों को न्याय दिलाए हैं, एक बार पूरा झारखंड के लाखों युवा आपसे न्याय दिलाने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो
1: महुआ
0: आपसे
1: जी,
0: हम आग्रह कर रहे
1: एक
0: हैं
1: छोटा सा आग्रह है, बस आके बात तो
0: कि आप
1: सुनिए।
0: लोग और आप लोग पूरा चैनल के सभी टीम से भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी पहल करिए और सोनू मांगचंद सर से एक बार लाइव में बात करा दीजिए। हम पूरा आप लोग का चैनल के टीम से हम आग्रह करते हैं।
1: महुआ जी, एक मुख्यमंत्री गुरु जी की आज
2: जी
1: मौके पे आज ये सब बच्चे जो महतो हैं, देवेंद्र नाथ जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार आ करके मिल तो सकते हैं, बात तो सुन सकते हैं।
2: देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं, ये जितने भी छात्रों की मांगे हैं, आपकी मांगे हैं, उस पर ऑलरेडी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हर दोषी को वो सजा दिलाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई, जांच हो रही है, और इस बार वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के मूड भी नहीं है। और जो गलतियां पिछली सरकारों में हुई है, या वो जो घुन लगा हुआ था, वो सिंडिकेट जो अभी भी वो अंदर अंदर कार्य कर रहा होगा, उस सिंडिकेट को खत्म करके ही वो दम लेंगे। और मैंने तो केंद्र सरकार से भी ये आग्रह किया था राज्यसभा में कि जिस तरह से आज गुजरात में कहिए, उड़ीसा में कहिए, दिल्ली में कहिए, पूरे देश में कहिए या झारखंड में कहिए, जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हो रही है, इसके लिए केंद्र सरकार कोई कठिन कानून बनाए
3: केंद्र
2: जो कि
3: सरकार
2: पूरे
3: मैडम
2: देश में
3: कठिन
2: लागू हो,
3: कानून लेकर
2: और
3: आई,
2: इस तरह की
3: बिल्कुल
2: हरकत
3: शिकमत
2: करके
3: करिए
2: छात्रों का
3: मैडम।
2: भविष्य बर्बाद
3: आज
2: करने के
3: आपको
2: लिए।
3: झारखंड का
2: नहीं नहीं
3: युवा देखकर
2: सरकार
3: शर्मिंदा
2: को
3: महसूस
2: छात्रों
3: कर
2: के
3: रहा
2: साथ
3: होगा,
2: खिलवाड़
3: ये
2: करती है,
3: किसान का बेटा वहां पे
2: पेपर
3: बैठा है,
2: लीक
3: आपके
2: करने
3: आंखों से
2: सजा
3: आंसू नहीं आ
2: पूरे
3: रहे,
2: देश में
3: वहां
2: मिली
3: पे
2: है, हर
3: मजदूर
2: राज्य
3: का
2: में
3: बेटा
2: मिली
3: है, आपके आंखों से
2: है,
3: आंसू
2: को
3: नहीं आ
2: पेपर
3: रहे,
2: लीक ना
3: यहाँ पे
2: झारखंड
3: भी
2: में, ना
3: भारतीय
2: गुजरात
3: जनता
2: में, ना
3: पार्टी
2: उड़ीसा में,
3: कांग्रेस
2: ना
3: ये सब
2: पूरे
3: करने
2: देश
3: का
2: में,
3: प्रयास कर रही
2: कहीं
3: है।
2: भी किसी की
3: आप लोग
2: हिम्मत
3: सब
2: ना हो
3: युवक
2: कि
3: गरीब लोगों
2: छात्रों
3: के
2: की
3: बच्चे और
2: भविष्य
3: बड़े
2: बर्बाद
3: बड़े
2: करे।
3: अमीरों के बच्चे नहीं, इसलिए आपके मुंह से खान खुल रही है
2: मैंने
3: और
2: भी
3: आपको
2: पढ़ाई की
3: टेंशन।
2: है, मैंने भी PhD किया
3: मैडम
2: है,
3: आपने
2: और मैं
3: PhD
2: जानती
3: क्यों
2: हूँ कि
3: MBA क्यों
2: कंपटीटिव
3: कुछ नहीं किया,
2: एग्जाम्स
3: बच्चा
2: में
3: न्याय
2: कितना
3: मांग रहा है,
2: दिक्कत
3: वो
2: होता है।
3: एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की बात कर रहा है, CBI प्रोब की बात कर रहा है,
2: बिल्कुल
3: आपके
2: न्याय मिल
3: भाषण
2: रहा
3: में
2: है,
3: सुना
2: न्याय
3: उसको,
2: किया जा रहा है उनके
3: कब
2: साथ,
3: होगी CBI प्रोब,
2: आप बात
3: कब
2: को
3: होगी
2: गलत दिशा
3: CBI
2: में मत
3: प्रोब,
2: छोड़िए।
3: वो
2: छात्रों को
3: भाजपा का
2: न्याय
3: बच्चा
2: दिया जा
3: नहीं
2: रहा
3: है,
2: है,
3: वो कोई बड़े
2: माननीय
3: इंसान का
2: मुख्यमंत्री
3: बच्चा
2: जी,
3: नहीं है,
2: बहुत
3: आप
2: गंभीर है,
3: लोगों के
2: उनके
3: जेब
2: लिए
3: में
2: हर
3: का
2: तरह
3: बच्चा नहीं
2: का
3: है वो,
2: हर तरह से उन पर
3: कब होगी
2: कि आपने
3: CBI
2: बात
3: प्रोब,
2: करने
3: कब
2: की
3: होगा
2: है, आप
3: एग्जामिनेशन
2: बोल रहे हैं,
3: कैंसिलेशन,
2: तभी
3: वो
2: जितने
3: MR
2: भी
3: शीट जो है वो बेची बेची
2: CID
3: जा
2: को
3: रही है,
2: लगा दिया गया
3: पोस्ट में
2: है, हर
3: खरीद
2: दोषी को
3: फरोख्त हो रही
2: ढूंढने
3: है,
2: के
3: वो
2: लिए,
3: 10-10 साल
2: और
3: से मेहनत
2: CID
3: मेहनत
2: ढूंढ
3: करते
2: ढूंढ के एक
3: डीएसपी बनने
2: दोषी
3: के लिए, कुछ
2: को
3: बनने के लिए,
2: सामने ला
3: क्या
2: रही
3: बात
2: है,
3: कर रहे हैं
2: उन
3: आप?
2: पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी,
3: दिस
2: भविष्य
3: इज द
2: में वैसे
3: एग्जैक्ट
2: दोषी को
3: डिफरेंस बिटवीन
2: कभी
3: देम,
2: भी
3: दिस
2: पेपर
3: इज हाउ दे ट्रीट द
2: चाहिए
3: पीपल ऑफ द
2: कभी सुनने
3: कंट्री,
2: के लिए
3: बट
2: नहीं
3: दे हैव
2: दिया
3: जीरो
2: जाएगा।
3: एम्पैथी,
2: आप निश्चिंत
3: दे हैव जीरो
2: रहिए कि
3: कंसर्न,
2: जरूर
3: दे आर आस्किंग फॉर
2: इनके
3: बेसिक
2: साथ
3: डिमांड्स
2: न्याय
3: आउट
2: होगा,
3: देयर,
2: ऐसा
3: दे इवन केप्ट द
2: संकल्प मुझे
3: बीजेपी एंड
2: पूरा
3: अदर पार्टीज अवे
2: किया
3: फ्रॉम देयर
2: जाएगा, और
3: प्रोटेस्ट, स्टिल
2: बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी
3: मैडम
2: न्याय दिला
3: दे
2: के
3: आर
2: रहेंगे,
3: सन्स ऑफ
2: भविष्य में
3: फार्मर,
2: कभी
3: दे आर
2: भी
3: डॉटर्स ऑफ
2: सरकार
3: फार्मर्स
2: कभी
3: एंड पुअर
2: न्याय
3: लेबरर्स,
2: नहीं
3: द
2: होगा,
3: पीपल ऑफ
2: और जिस
3: झारखंड
2: तरह
3: एंड
2: के
3: द यूथ
2: लोग
3: ऑफ
2: हैं,
3: झारखंड
2: जिस
3: एंड द
2: तरह के
3: एंटायर
2: सरकार को
3: कंट्री
2: अंजाम देते
3: सीकिंग
2: हैं,
3: व्हाट इज राहुल
2: राज्य के
3: गांधी
2: लिए ही
3: साइलेंस
2: पूरे
3: एंड योर
2: देश में फैले हुए
3: कॉम्प्लिसिटी
2: हैं,
3: डन।
2: और ये
3: ओके
2: लोग
3: लेट मी
2: पूरे
3: ब्रिंग इन
2: देश में
3: अंकित एंड
2: नहीं है,
3: राजेश बैक,
2: हर राज्य में जाके
1: ओके, यू नो
2: छात्रों
1: व्हाट विल हैपन इज द मोर पॉलिटिशियन स्पीक देयर विल बी मोर ऑफ तूतू मेमे एंड फिंगर पॉइंटिंग। अंकित और राजेश, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आज जानते भी नहीं है, सच बात यह है कि हमने भी जब पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि जो जंतर मंतर में डिमांड थी और जो झारखंड में डिमांड है वो बिल्कुल ही अलग है। वहां पर लोग ये हैं जो कि कह रहे हैं कि नौकरियां बिक रही हैं, यहाँ पेपर लीक का मसला नहीं है। पहले तो लोगों को बताइए कि हुआ क्या है कि आपके 99.314% मार्क भी आते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि झारखंड में किसी को नौकरी नहीं मिलती है इतना मार्क आने के बाद?
4: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा प्रश्न। और झारखंड में पेपर लीक नहीं है, झारखंड में सीट बेचा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सरकार की जो जांच एजेंसी है उसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर तो भविष्य बेचा जा रहा है, मेहनत बेचा जा रहा है, संघर्ष बेचा जा रहा है मैम। तो माननीय मैडम से हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, नो डाउट मुख्यमंत्री जी जो भी कर रहे हैं उससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारी जो मांग है पहले रद्द कीजिए फिर CBI जांच कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, एकदम क्लियर कट सीट बेचा जा रहा है मैम। यही इसमें जानते हैं मैम, टोटल 120 क्वेश्चन मैच किया था आउट ऑफ, जैसे मैं समझा देता हूँ, तीन पेपर होते, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर वन में इंग्लिश एंड हिंदी था क्वालिफाइंग, पेपर टू लैंग्वेज पेपर था जो ओरिजिनल पेपर था, और पेपर 3 जो GS पेपर था उसमें 150% का एग्जाम हुआ, उसमें से 120 क्वेश्चन मिले एकदम हूबहू।

0: जो रटवाया गया था वही मिला, यानी 80% क्वेश्चन मिला। और जानते हैं मैम सीआईडी ने क्या बोल दिया, क्योंकि पहले सीआईडी की टीम ने सही जांच की थी और उन्होंने बताया कि 120 क्वेश्चन मिला आउट ऑफ 150 यानी 80% क्वेश्चन। और जब जैसे सीआईडी टीम को बदला गया उन्होंने बोल दिया फ्यू क्वेश्चन। मैम मैं पूछना चाहता हूँ, आज यहाँ पे सांसद महोदया भी बैठी हुई है, मैम आप बता दीजिए क्या 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से फ्यू क्वेश्चन होते हैं? इज दिस फ्यू क्वेश्चन? इज दिस फ्यू क्वेश्चन? और ये
1: अगर ऐसा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर कोई स्टेप लेंगे। नहीं जी अगर ऐसा है आपको संतुष्टि नहीं है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और वो आप लोग जो चाहते हैं वही
2: सब कार्यक्रम होंगे उसके बाद लेंगे। द कंट्री इज वॉचिंग हाउ द पुअर किड्स आउट देयर आर आस्किंग फॉर अ वेरी मिनिमल डिमांड विच इज नॉट इवन पॉलिटिकल। पद्मजा जी इट इज अ बेसिक डिमांड फॉर जस्टिस and look at the hypocrisy of Rahul Gandhi and the Congress and the JMM which is governing there, that leave apart even seeking to the students, they've not even met the students once, not even provided them basic facilities where they can even protest, neither have they given cognizance to them, and the Congress spokesperson here is looking at quote unquote videshi angle. Now how hypocritical and how much do you hate the people of the country? How much do you hate the poor people of this country? Just because they are not a part of your ecosystem, you will not even listen, Ashwini. Even Hitler would have died and looking at you. You are even more hypocritical than Hitler. Even Nero would be died listening and looking at you. You have crossed that limit, my dear.
1: Ashwini Mishra, by all means, you want to corner the BJP inside parliament, please be free to do it. You want to carry out marches in BJP-ruled states, by all means do it. Just send one representative to meet these kids in Jharkhand as well, because you're in government. You would actually be in a position to change something. You don't have to do marches. You can fix it.
3: I have not heard the Chief Minister of Jharkhand. He's spoken about the issue. And coming from Pradeep Bhandari, it is the height of shame that he is taking a moral ground on student
2: protest in Lawrence, Delhi. And you are speaking about छात्र को न्याय नहीं मिलेगा तो सिस्टम मिलाओगे? झारखंड में छात्र को न्याय नहीं मिल रहा है।
3: And I have question
2: for you. Go to your jail. Rahul can go to a gym. Rahul can go to a 5-star restaurant. Rahul can launch a book. Rahul can insult sadhus. Rahul can have his ecosystem go to Jantar Mantar. You know, word cockroach there has become an abuse. The word cockroach today has become an abuse because of discredited individuals like them.
3: Our government is not selective.
2: Are your government leave? Your government is not even there. God knows where is your government. Even if government exists, that only people don't know in Jharkhand.
3: How CBI
2: are trying to even
1: let Ashwini finish.
3: Investigate the issue.
0: Ma'am.
1: Yes, go on, Mr. Mishra. Go on. Finish your point.
3: Yeah, so point is BJP should not speak about the moral values about the student when you have lathi charge.
1: Arre sir, let the BJP not speak. Answer just these children who are sitting there. Answer Ankit. You don't owe the BJP nothing. But you at least owe an answer to the people who have voted for you. Presumably, you are in government because these kids would have voted for you. Ankit.
0: Ma'am, main sare yahan tino partiyan baithi hui jo kahin na main roop se Jharkhand mein hai. Main sabse puchna chahta hu, ye kiska responsibility hai? पेपर लीक होने में क्या सबकी सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ठीक हो पेपर लीक होना? क्या सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग जब भींज रहे हैं तो सब लोग साथ आए, हम लोगों को टेंट का प्रोवाइड कराए? राहुल गांधी वहां पे बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और तमाम तरह के चीजें चला रहे हैं, क्या वो झारखंड नहीं आ सकते हम बच्चों के साथ? क्या वो यहाँ पे गाइडलाइन नहीं जारी कर सकते अपने सहयोगी गवर्नमेंट को कि बच्चों का बात को सुना जाए? लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैम मैं बीजेपी से भी उतना ही खपा हूँ जितना कांग्रेस और जेएमएम से हूँ जी। उन्होंने भी हमें ठगने का काम किया। मैम मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो फेयर सिस्टम मांग करता हूँ। आप लोग राज कीजिए, हम मना किए क्या? हमें क्या चुनाव लड़ना है क्या? मैम हमें चुनाव होना कुछ नहीं लड़ना है, बस हम लोग का जो मांग है जीएसएससी में जितने भी गड़बड़ियां होंगी सब जांच कराई जाए, TDPL कंपनी ने जो भी एग्जाम कराई है सबको रद्द किया जाए, 14 JPSC और 11-13 JPSC को भी बढ़िया से जांच करा के उसको भी रद्द किया जाए। एकदम स्पष्ट मांग है मैम, और जब तक हमारा मांग नहीं माना जाएगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है।
3: और
0: हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं, बारिश कुछ नहीं कर पाएगी हम लोगों को,
3: एक शब्द नहीं निकलेगा।
0: सीबीआई और ईडी चक्रवर्ती जांच, पता चल जाएगा कौन कौन इन्वॉल्व है।
1: ओके 30 सेकंड्स मिस्टर मिश्रा, देन प्रदीप भंडारी, आपसे भी उतने ही खपाए। अश्विनी मिश्रा पहले आप बताइए, फिर प्रदीप भंडारी।
3: पद्मजा जी, चीफ मिनिस्टर हैज गिवन द एश्योरेंस अबाउट द इंक्वायरी, बेस्ड ऑन द इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, वट एवर द रिजल्ट, वट विल बी द आउटकम, दे विल कैंसिल द एग्जाम इफ रिक्वायर्ड, इफ इट कम्स अंडर द इंक्वायरी। बट आई डोंट थिंक द सीबीआई एंड ईडी इज अ जेन्युइन डिमांड, बिकॉज सीबीआई एंड ईडी हैज बीन यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल वेंडेटा बाय द बीजेपी, एंड वी हैव सीन हाउ दे हैव जेल्ड द चीफ मिनिस्टर विदाउट एक्चुअली कन्विक्टिंग ऑन एनी केस।
1: अरे आप अब ये लड़कों को आप कह रहे हैं कि जेन्युइन डिमांड नहीं है, अब आप उनको बताएंगे कि उनको क्या डिमांड रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। अंकित बताइए, एक एक करके प्लीज, लेट्स नॉट शाउट ओवर ईच अदर। एक सेकंड, कैन आई जस्ट हैव अंकित स्पीकिंग? बताइए अंकित, सीबीआई ही क्यों, सीआईडी की जांच चल ही रही है ना, क्या प्रॉब्लम है?
0: बताता हूँ मैं मैम, सीआईडी से हम लोग पूर्वाग्रहित नहीं थे कि सीआईडी अच्छा जांच नहीं कर सकती है। सीआईडी ने अपना मुंह खुद काला किए, खुद अपना ट्रस्ट को ब्रिज किए उन्होंने, जब उन्होंने जिस सीजीएल के मामले में जांच किया तो उनके जांच को दबा दिया गया, क्योंकि सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाली है, उसके अंडर आने वाली है, तो इस पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर होती है मैम, जिसकी वजह से सीआईडी अच्छे से अपना जांच तो करना चाहती है लेकिन जांच नहीं कर पाती है, और इसका सारा काला चिट्ठा दिख गया जैसे सीरियल में मैम। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सीआईडी जांच ना करे और सीबीआई और ईडी जांच करे, और इसमें जब भी तकलीफ हो तो मैं कह रहा हूँ 5 sitting judge, कितना 5 sitting judge, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जज हो और झारखंड हाईकोर्ट के भी जज हो, उनके निगरानी में जांच करवाया जाए, जो भी जांच हो उसका पर डे पता चलना चाहिए हम लोगों को, अपडेट प्रिंस के माध्यम से।
1: क्योंकि मैं एक मंत्री हैं, एक एमएलए हैं, उनकी बात सुन रही थी अभी दिन में, दीपिका पांडे जी शायद उनका नाम है, वो कह रही थी कि सीबीआई में भी क्या ही हो जाता है, सीबीआई अगर जो सेंट्रल एजेंसी है वो जांच करेगी तो उस पर इतना भरोसा क्यों है आपको अंकित? हो सकता है वो जांच भी खराब हो जाए
0: मैम, उसके लिए हम लोग फास्ट ट्रायल कोर्ट का भी डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ सीबीआई का डिमांड नहीं कर रहे हैं मैम, फास्ट ट्रायल कोर्ट का भी डिमांड कर रहे हैं, जिसमें 90 डे के अंदर हम लोग का सारा चीज उसमें क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं होता हम लोग फिर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे।
2: मैडम, वी ब्रॉट अ लॉ फॉर अ फास्ट ट्रैक कोर्ट इन 3 months, द एजुकेशन मिनिस्टर टुक मॉरल अकाउंटेबिलिटी एंड रिजाइंड, every action was taken in a time brown probe, there the protesters are not even asking for a resignation, and you have the Congress spokesperson here even trying to discredit the post protesters just because it does not belong to his lobby. And I question Rahul Gandhi, who speaks about the students, why is he apathetic to the students in Jharkhand just because they are laborers, son, they belong to SC community, OBC community and poor people's community, how much do they hate the people of the country? This man Mishra, Ashwini Mishra, comes on the studios and saying BJP, Congress, ye. Not once is he saying ki Rahul Gandhi will speak up on the issue and give a call to Jharkhand Chief Minister Hemant Soren and ask for a CBI probe. Agar aapko system pe hi nahi vishwas hai, to kaho desh pe vishwas nahi hai, na Supreme Court pe vishwas, na Supreme Court monitored probe pe vishwas, kis pe vishwas hai? Sirf Congress party ke ecosystem pe vishwas hai kya? Aur ya videshi chanda nahi mila isliye Jharkhand nahi ja rahe ho?
1: And Ashwini Mishra, I genuinely have only one question, and I think the Chhatro Ki Goonj is an excellent initiative. You want to harness the youth power, you want to have that listening post where all the youth can come and express their issues, express their fears, their hopes and dreams. Why can't the Chhatro Ki Goonj head to Ranchi next? What is so pressing in Prayagraj? I genuinely want to understand on the 8th of this month, what is happening in Prayagraj instead of Ranchi?
3: Are you not aware of the number of paper leaks happened in Uttar Pradesh, Padmaja ji? Are you not aware of the exam?
1: Are you not aware of the jobs being sold in Ranchi?
3: So, Padmaja ji, as my chief minister from Ranchi already spoken that they are investigating the issue. If they have a problem with one agency,
1: अरे आप जाकर के investigation तो यूपी में भी हो रहा है ना, पर आप लोगों की बात सुनना चाहते हैं ना, बच्चों की बात सुनने के लिए आप छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तो सुनिए उनकी बात जाके।
0: अगर सीआईडी से ही जांच करानी है तो
3: 5 sitting judge
2: जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा वहाँ झारखंड नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का सिंहासन जो है ना विपक्ष का वो भी हिलने वाला और नीचे चले जाओगे, इतना ज्यादा घमंड आ चुका है। शर्म आनी चाहिए देश के नागरिकों के, देश के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझते हो, ये तुम्हारी सच्चाई है। जॉब नहीं मिलेगा तो सिस्टम मिलेगा, हाँ झारखंड में मिलेगा, हाँ हर जाके हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, शर्म आनी चाहिए। I'm ashamed that I'm doing this political bickering this
3: time.
2: यही है कांग्रेस पार्टी है। अरे तुम्हारे तुम सरकार में झारखंड में
3: राहुल वाले
2: बोलो 10 दिन विदेशी दौरा छोड़ दे, परसों चले जाए, परसों चले जाए, वहां राजनीति बाद में कर ले, बच्चों से मिले।
3: आप भी मांगो स्टूडेंट से, आप
2: बच्चों से मिलो मेरे भाई, वहां पे वो किसान का बेटा है, वहां पे गरीब का बच्चा है, वहां पे वो आपके इकोसिस्टम का नहीं है जो इंस्टाग्राम पे आपके रील को लाइक कर दे शेयर कर दे, इसलिए नहीं जा रहे क्या? पैसा नहीं मिल रहा बाहर से इसलिए नहीं जा रहे, पैसा नहीं मिला इसलिए बाहर से, मैसेज नहीं है बाहर से जाने के लिए, कितने बड़े शर्म
3: गिरोगे
2: मेरे भाई, आप लोग इतना इस देश से नफरत करते हो जितना कोई नहीं नफरत करता है, आप 100 लोग दिल में बैठकर अपने परिवार के लोगों के आजू बाजू लोगों में रहना चाहते हो और झारखंड नहीं जाना चाहते। अश्विनी आप तो कम से कम एक, आप अश्विनी मिश्रा मुझे लगता है आप तो टीयर टू टाउन से आते हो, वहाँ अच्छी भारत है, वो दाल चावल खा रहे हो,
3: अपनी बात करो।
2: अरे मेरी बात करी, मेरे एजुकेशन में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट हुए, अकाउंटेबिलिटी भी, सब गिरफ्तार हुए, पेपर वापस से 11 लाख 12 लाख 22 लाख बच्चों ने दिया, पेपर भी वापस से हो गया, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो किसान का बच्चा सड़क पर पड़ रहा है, न्याय मांग रहा है, वो बीमार हो रहा है, पानी में भीग रहा है, शर्म आनी चाहिए।
1: When you raise issues, and I'm not saying that issues should not be raised, when you raise issues, the same finger can be pointed back at you, saying you were quiet. For the longest time, nobody in the government engaged with Sonam Wangchuk. Nobody engaged with the CJP. You thought that this is something that would pass. Same thing even Hemant Soren is doing, hoping that abhi investigation chali raha hai. Aapne kya bola? Ki bhai humne re-neat kara diya, humne 13 logon ko pakad liya, investigation chal raha hai. Wahi Hemant Soren bhi kar rahe hai ki humne falan logon ko pakad liya, humne CICID ka probe kara liya. All of this will also blow.
2: Aap Sonam Wangchuk se samajh lijiye, pooch lijiye wo kya chahte hai. Aaj Sonam Wangchuk ki raaye kya hai? Ye to Sonam Wangchuk tak ko nahi chhod rahe. हमने चलिए बाद में प्रोटेस्ट एंगेज किया, हमने किया तो सही, हमने एक्शन तो लिया, अब तो ये सोनम वांगचुक तक को नहीं छोड़ रहे, और इनके कोट अनकोट कॉकरोचेस तो इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि इट इज बिकम अब्यूज, बिकॉज दैट कॉकरोच एवरीबॉडी हैज गॉट अ टाइफाइड एंड नॉट अ सिंगल पर्सन इज गोइंग देयर जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम फार्मर्स सर, उनको पैसा वहां से नहीं आया।
1: Okay.
2: How much hypocritical can we be in this country?
1: I want to again bring it back to Rajesh and Ankit. Rajesh, मुझे ये बताइए कि अभी अगर आपको जो लोग, और आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे थे, हजारों लाखों मिलियन मिलियन 150 मिलियन व्यूज जा रहे हैं एक एक रील के, जिन लोगों ने वो बनाया, जिन लोगों ने वो देखा, अगर इस वक्त वो आपको देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहेंगे रांची में बैठ के?
0: बिल्कुल मैडम, सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं जो लोग हमारे इस मुहिम को नेशनलाइज किए, आप तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि झारखंड में शायद ही कभी इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के नेशनल मीडिया कवर करती थी, पहली दफा है छात्रों की आवाज नेशनल मीडिया बनी। मैं सभी से कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी से कहना चाहूंगा कि यदि हम लोग देश को, भारत का सपना जो है हमारा वो पूरा करना है, तो हम लोगों को यहाँ लड़ना छोड़ना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। मैडम बोल रही थी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं माननीय से भी पूछना चाहूंगा, अभय तिवारी जो है मैडम वो JSSC CGL का मास्टर माइंड है, पूरा जांच हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन मास्टरमाइंड को सीआईडी नहीं गिरफ्तार कर।
1: दे डू नॉट ट्रस्ट योर प्रूफ मैम, यू नो आइदर यू कैन कीप सेइंग द सेम प्लैटिट्यूड्स ओवर एंड ओवर, जांच चल रही है, न्याय होगा, हम सुन रहे हैं न्याय होगा, वहां बच्चे बैठ के कह रहे हैं हमें नहीं भरोसा है इस जांच के ऊपर, हमें नहीं भरोसा है कि न्याय होगा, व्हाई सच एन अवर्जन टू अ सीबीआई प्रोब?
4: देखिए ये सचमुच वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, चूँकि बार बार ऐसी घटनाएं हमारे राज्य में और दूसरे राज्यों में होती रही हैं, इसलिए वो किसी को विश्वास नहीं कर पा रहा है, मैं उनका दर्द समझती हूँ। देखिए एक हफ्ता पहले गुजरात में भी यही पेपर लीक हुआ, वहाँ पे तो हमारी सरकार नहीं थी, अभी उड़ीसा में हुआ वहाँ भी हमारी सरकार नहीं थी, दिल्ली में हुआ, तो ये जो है ना यहाँ पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है, हम लोग को सब लोग मिलकर, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, सबको मिलके अब ये करना है कि हमें कैसे छात्रों के साथ हम न्याय, छात्रों को न्याय दिलाए, ये सबसे ज़रूरी है, और हम लोग इसमें बिल्कुल तटस्थ हैं, कोई तरह का पॉलिटिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं ना ही चाह रहे, दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको रिजल्ट दें, वो चाह रहे हैं कि उनको आश्वासन देकर सिर्फ नहीं आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बीमारी ये कीड़ा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए।
1: आई विल अगेन रिपीट माई क्वेश्चन, जिन जिन बच्चों से मैंने बात की है ओवर द लास्ट 3 days, दे हैव सेड ओनली वन थिंग, वी डू नॉट ट्रस्ट द सीआईडी इंक्वायरी, we think a CBI investigation would be more trustworthy।
4: CID जांच में पूरा नजर है कि किसी के
1: मैम सीबीआई इंक्वायरी से इतनी एलर्जी क्यों है? क्या आपको लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी में आपके साथ न्याय नहीं होगा? क्या वो बायस्ड होगी? व्हाई आर यू सो अवर्स टू अ सीबीआई इंक्वायरी?
4: नहीं, हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
1: तो आप मान कर लीजिए ना,
4: तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया होती है कि जब सीआईडी जांच कर रही है तो उसके बाद ही सीबीआई जांच हो सकती है, तो जरूर ये प्रक्रिया भी कर दी जाएगी, अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से होगा।
1: ओके, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स।
2: लॉ टेल्स यू दैट अ सीबीआई प्रोब कैन बी ऑर्डर्ड इवन व्हेन अ सीआईडी प्रोब इज ऑर्डर्ड इफ द गवर्नमेंट आस्क्स द सेंटर टू डू सो, एंड इफ नॉट इन द गवर्नमेंट द कोर्ट्स कैन ऑल्सो ऑर्डर। आई विल कम टू द फंडामेंटल पॉइंट पद्मजा जी, दे आर नॉट बीजेपी वोटर्स आउट देयर, दे आर स्टूडेंट्स एंड यूथ एंड फ्यूचर of Jharkhand, they are selling the future of Jharkhand, aap future of Jharkhand ko girvi rakh rahe ho apni rajniti ke liye, humko to jo moral accountability leni thi hum to law tak le aaye, what have you done? Nothing, seed bechi ja rahi hai, leak to chhodiye, seed bechi ja rahi hai, jiske 40 number aa rahe hain usko aap de rahe ho, paisa deke chal raha hai, isse bada dhoka ho nahi sakta, aur Rahul Gandhi shant kar bole rajniti mat karo, rajniti nahi kare, chhatr ki baat kar rahe hain yahan pe।
1: Mahua ji,
4: देखिए ऐसा है ना कि सीट बेची जा रही है नहीं बेची जा रही है, अगर पूरे देश में भ्रष्टाचार है तो ये बहुत गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं।
2: मैडम आपके झारखंड की बात हो रही है, देश की बात आपने 30 दिन पहले कर ली, कानून दिया
4: और कार्रवाई कर सकते हैं ना। देखिए ये आज आप यहाँ पर, इसके पहले 17-18 साल तक भाजपा की सरकार थी, आप इतिहास उठा के देखिए, ये घुन लगा हुआ है, मैं मानती हूँ, जिसे ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी साफ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटा रहे हैं, ऐसे लोगों से निपट रहे हैं, और आने वाले दिन में
1: लेगेसी प्रॉब्लम
4: इसके लिए पूरी
2: हमारी 5 साल की सरकार के पहले इनकी 5 साल की सरकार थी, तो क्या ये कह रही है जब हेमंत सोरेन पहले सरकार में थे वो भ्रष्ट थे? Is she admitting that the earlier government run by Hemant Soren was a corrupt government?
4: वो नहीं थे, वो उस समय सरकार में नहीं थे।
2: Admitting that it was a corrupt government,
4: which is fine. सरकार
2: past is past. Please talk about present now. Please talk about what you will do for the future now. We got a law from the parliament which was our responsibility. What have you done?
4: Hemant Soren ji is doing
2: nothing, zero. Are you in the parliament? Did you meet Rahul Gandhi and ask him to speak to Hemant Soren? She is a member of parliament, right? Can you please tell me how many meetings have the member of parliament of JMM and Congress done with Rahul Gandhi on this? Has he taken out a minute also for the people of Jharkhand and the youth of Jharkhand?
4: Every day.
2: Where, which day?
1: One at a time, please. Can you please have Mahua Maji only speaking? Yes.
4: हर दिन उनके ऑफिस में मीटिंग होती है और वहाँ पर माननीय खड़गे जी के ऑफिस में, और उसमें सब तमाम इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है, और ये चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी होती है हम लोगों की, और वो लगातार इस पर आश्वासन दे रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं, और वो
2: उसको लेकर आपका नेता खेल सकता है, आपका नेता इंस्टाग्राम रील डाल सकता है, आपका नेता ये सब इंस्टाग्राम कर सकता है, वो जेंसी बच्चे के लायक नहीं बात कर सकता।
1: ठीक है अंकित, आखिरी में आप ही को बोलना चाहिए क्योंकि आप ही की आवाज पूरे देश को सुननी चाहिए। अंकित
0: मैम, स्पष्ट रूप से सांसद महोदय जी, मैं जानता हूँ कि जेएमएम के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के भी जो भी पैनल से बैठे हुए हैं, चाहे बीजेपी के बैठे हुए हैं, मैं संसद कम्युनिटी सबको एक साथ में पहले कहना चाहता हूँ कि सर जहाँ का भी मामला हो, मुझे नहीं पता है ना, ठीक है झारखंड का मामला इन भी स्टेट और कंट्री का बात कर रहे हैं, पूरा ऑल कंट्री का, अब ठीक है एक रोल लाया सब, एक लो लाइए, बढ़िया से काम कीजिए ताकि ये फ्यूचर हम लोगों का बर्बाद ना हो, पूरा देश का फ्यूचर बर्बाद ना हो। अब मैं आता हूँ झारखंड स्टेट से। मैम महुआ मांझी मैम, आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा मैम, मैं जानता हूँ कि आपका बात जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी टालेंगे नहीं, एक बार कहिए मैम जेसीसी सीजीएल को क्यों मतलब वो ईगो का प्रेस्टीज ईगो बना लिए, मैं पूछना चाहता हूँ। मैम पता है हम लोग बहुत ऐसा नहीं है मैम कि हम लोग किसी पार्टी वगैरह का और भी कुछ नहीं,
4: मैं जानती हूँ,
0: पता है हेमंत सोरेन जी जेएसएससी सीजीएल को प्रेस्टीज इशू बना लिए मैम, मैं कह रहा हूँ, वो जब सब चीज जान रहे हैं कि इतना बड़ा करप्शन हुआ और वहीं से जुड़ा हुआ तार अजय तिवारी मनोज तिवारी का आया,
4: डीपीएल कंपनी का
0: मैम, मैम मैम सने करने से क्या होगा मैम, ये बारिश में देख रहे मैम, इस सने से पूरा नहीं होता है मैम।
1: यू नो दीज आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल हु आर सिटिंग ऑन द स्ट्रीट्स, हु आर सिटिंग इन अ स्टेडियम अंडर द स्काई एंड ओपन स्काई इन द रेन, आस्किंग फॉर अ वेरी स्मॉल थिंग, टॉक टू अस, लिसन टू व्हाट वी हैव टू से। इफ यू रियली केयर फॉर छात्रों की गूंज, यू नो वेयर टू फाइंड इट। होप दैट पीपल आर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच ऑल जेंटलमैन एंड महुआ मांझी।
5: From the newsroom to the studio, to the thick of political action.
6: Now watching NDTV 24/7, the hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially